आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहाने की। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:34 और 58 सेकेंड। मैं हूं आपके साथ फिरोज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक नए दिन में हम सब कदम बढ़ा चुके हैं और एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई रोशनी के साथ। मगर इन तमाम चीज़ों में एक बेहद परेशान करने वाली भी चीज़ होती है जो हमारे जहन में कई बार ये बात आती है, और वो होता है किसी भी हार का। हार एक ऐसा शब्द है जिससे सिर्फ इंसान ही नहीं टूटता बल्कि उसके हौसले भी टूट जाते हैं, उसके इरादे भी टूट जाते हैं। मगर ये हमेशा के लिए नहीं होता। हार सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन जब हार हमारे सामने खड़ी होती है तो दिल थोड़ा मायूस जरूर होता है। लगता है शायद हमसे नहीं हो पाएगा, शायद हमारी कोशिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और ऐसे ख्यालात जब बार बार आने लगे तो फिर आप पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें उसमें कामयाबी मिले। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर कोशिश पहली बार में कामयाब हो जाती तो शायद हमें सब्र, हौसले और मेहनत की असली कीमत कभी समझ में ही नहीं आती। इसलिए हार भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी अहमियत को समझ पाते हैं, उस जीत की अहमियत को समझ पाते हैं। हार हमारी मंजिल नहीं है, वो तो रास्ते का एक पड़ाव है। वो हमें बताती है कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ फिर कोशिश करनी है और कहाँ अपने सपनों पर थोड़ा और यकीन रखना है। आज की सुबह अगर आपके सामने कोई मुश्किल है तो उससे घबराइए मत, उसे देखकर बस इतना कहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। याद रखिए, गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठने की कोशिश छोड़ देना जरूर हमें रोक देता है। तो आज अपने दिल में उम्मीद रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और कदमों में हौसला, क्योंकि जिंदगी का फलसफा बहुत सीधा है। हर हार अपने भीतर एक नई जीत का रास्ता छुपाए बैठी है इस नगमे की तरह।

जी हाँ, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गिरना, संभलना, हारना, जीतना, ये हमें रोकता नहीं बल्कि हमें नए हौसले के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मुझे रुकना नहीं है, बस यही याद रखना है। जिंदगी में ऐसे मकाम जरूर आते हैं जब मेहनत के बाद भी नतीजा हमारे मुताबिक नहीं मिलता। मन मायूस होता है, लगता है शायद अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों याद रखिए, हार हमारी जिंदगी के सफर का एक मोड़ है जो हमें रोकता नहीं बल्कि एक दूसरा रास्ता दिखाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। इसलिए कभी भी उस मोड़ से, उस रुकावट से घबराएं नहीं। कभी कभी वक्त हमें रोकता नहीं बल्कि हमें तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है। वो हमें इस बात के लिए तैयार करा रहा होता है कि आप सफलता के लिए तैयार रहिए, कोशिश कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। एक असफल कोशिश हमें बताती है कि अगली कोशिश में क्या बेहतर करना है। इसलिए गिरिए तो उठिए, थकिए तो थोड़ा ठहरिए, लेकिन अपने ख्वाबों से रिश्ता मत तोड़िए। आज अगर आपके सामने कोई इम्तहान है, कोई परीक्षा है, चाहे वो जिंदगी का हो या रिश्तों का हो या आपके सपनों का हो, तो पूरे हौसले के साथ उसका सामना कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए और इसी जज्बे को बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ाते हैं ये, क्योंकि जिंदगी हार मान जाने का नाम नहीं, रुक जाने का नाम नहीं। रुकना तो कतई नहीं है, बस चलते रहना है इस नगमे की तरह।

किशोर कुमार साहब के गाए इसी गीत के साथ आज के भोर सुहानी को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हैं इस वक्त आप। और अब वक्त है कि हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आज के इस प्रातःकालीन सभा में आप हमारे साथ कौन कौन से कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप ठीक 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। छह बजकर 10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आपके साथ रहेंगी, आपके बीच रहेंगी सुनीता चौहान। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान, जिसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 72, और इसे लेकर हाजिर रहेंगे आपके बीच एक बार फिर से सुनीता चौहान। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और

7 बजे आप हिंदी में समाचार सुन सकते हैं। और 7:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचारों का।

7:10 का समय होता है गोल्ड सुप्रभात का और 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे। 8:00 का समय होगा समाचार प्रभात का और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय होगा उर्दू में खबरों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. The group of seven G7 nations have agreed to release 100 million barrels of oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. Mr. Trump said that European countries had agreed to release large quantities of diesel from their stocks and that the process would begin immediately. The announcement followed an overnight conversation between Trump and French President Emmanuel Macron. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the Global Horticulture Hub will strengthen the horticulture sector and create better opportunities for farmers in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Ms. Sitharaman laid the foundation stone for the Rayalaseema Global Horticulture Hub project and the Indian School of Agriculture at Madanapalle in Annamaya district yesterday. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that robotics is set to become an important tool across medical specialties covering diagnostics, treatment and therapy. Addressing the International Conference of the Society of Robotic Surgery, he said that robotics, artificial intelligence and nanoscience will create an ecosystem for precision and personalized healthcare. Mr. Singh said that the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology and robotic cardiology, just as AI is finding applications across different medical specialties. Union Minister for Port, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has called on the Shipping Corporation of India (SCI) to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operations yesterday, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. He said a stronger national fleet is central to India's ambition to becoming a leading shipbuilding and ship-owning nation by 2047 under Maritime Amrit Kaal Vision 2047. Founded in 1961 with 19 vessels, SCI now operates 58 vessels with a total capacity of 5.26 million deadweight tons. The second edition of the biannual Naval Commanders Conference 2026 concluded in New Delhi after 3 days' deliberations on operational preparedness and logistics against the backdrop of the evolving global security environment, rapid advances in technology, including the absorption of AI. The conference, held from September 29 to October 1, will also focus on the evolving global security environment and the growing role of artificial intelligence and autonomous and uncrewed systems. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 6 gold medals in hockey, boxing, wrestling and archery in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence. Indian women's hockey team clinched the gold medal, defeating China 1-0 in the closely fought final. With these impressive performances, India has climbed to 5th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 76, including 16 gold, 25 silver and 35 bronze medals. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated medal winners. And that is the end of this news bulletin.

6:12:03 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शनिवार की सुबह भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ मैं हूं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

भगवान बुद्ध ने कहा, चाहे आप कितने ही पवित्र वचन पढ़ लें, चाहे कितने ही बोल लें, अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो उनका क्या लाभ होगा।

रहीम ने कहा, यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, बाटन बारे के लगे जो मेहंदी के रंग। अर्थात जो उपकार करता है वो सदा सुखी रहता है। जैसे मेहंदी बांटने वाले को खुद ही मेहंदी का रंग लग जाता है, वैसे ही परोपकारी का स्वयं भला हो जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड पर। समय नोट कर लें 6:35 और 48 सेकंड। और आज साथ हूं मैं आपके सुनीता।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, और अब समय है कि हम सुने श्री रामचरित मानस गान। तो आइए अयोध्या कांड से सुनते हैं ये अंश।

पृथ्वीराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, और चाहे तो आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं। सुबह के 6:53 और 57 सेकंड हो चुके हैं, और अगर आप रेगुलर लिसनर हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड के, तो आप जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे समाचार, और समाचार के बाद फिर से होगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात ठीक 7:10 पर। और जब समाचारों की हम बात करते हैं, देश दुनिया के हाल जानने की बात करते हैं, तो इस सेगमेंट में आप सुन पाएंगे सबसे पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। तो चलिए समाचार सुनते हैं एक बार फिर। सुनीता लौट कर आएगी ठीक 7:10 पर यही आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मित मछार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। सह चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् अशीत्यधिकैकशतं यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृत विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमन्त्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमन्त्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाषसंवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से और मेरे को इसे कॉल करके मेरी ऑफिसर कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।

0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलम्बीकर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुम् आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। बीएसएफ इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि षट् पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्वसनीय रूप से डिजाइन और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन समारोह में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने रोबोटिक सर्जरी समिति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक तथा जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का नया तंत्र विकसित होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नौवहन निगम से देश को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री सोनोवाल कल निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा में भारतीय नौवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाते हुए सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्ध पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि 90% से अधिक महिला श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह

अक्टूबर महीने का पहला शनिवार बदली सी सुबह प्लेजेंट सी शाम यानी परफेक्ट मौसम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाने का। इस सफर में आपका हम सफर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत फिल्म प्यार ही प्यार के इस गाने के साथ, ओपन जीप में धर्मेंद्र और वैजयंती माला। ये है गोल्ड सुप्रभात, मैं हूँ सुनीता।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था ये सॉन्ग। वैसे हिंदी फिल्मों के बहुत से गाने, स्पेशली 60s और 70s के दौर के जो सॉन्ग्स हैं, वो फिल्माए गए ओपन जीप में, या फिर शुरुआत हुई गाने की ओपन जीप में, और बाद में हीरो हीरोइन उतरे और उन्होंने ये गाना गाया इधर उधर घूम फिर के। अच्छा, आप भी याद कीजिए वो कौन कौन से गाने हैं। फिलहाल एक सॉन्ग जो मुझे याद आ रहा है, 1965 की फिल्म मेरे सनम, ओपी नैयर का म्यूजिक, प्लेबैक मोहम्मद रफी।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें

0: इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: गोल्ड सुप्रभात का संगीत में सफर आज हम ओपन जीप में एंजॉय कर रहे हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है FM गोल्ड। 7:20 और 35 सेकेंड। मैक्सिमम टेम्परेचर आज 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। यह है आज के मौसम का हाल। मैं हूं सुनीता और नेक्स्ट सॉन्ग फिल्म आराधना से किशोर दा की आवाज में।

0: चलिया।
1: जी हाँ, चले आते हैं गीत एक के बाद एक उन प्रोग्राम्स के माध्यम से जिन्हें आप सुनते हैं एफएम गोल्ड पर। रिक्वेस्ट बेस्ड शो दिल का मेल बॉक्स आज सुबह 10:30 बजे गया जी बिहार की झलक तस्वीर में 11:10 पर, और दोपहर 12:10 पर घर आंगन और निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता की बातें प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में 1:10 पर। अब जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो 1964 की फिल्म हकीकत से है, कैफी आजमी साहब ने लिखा, संगीत मदन मोहन जी का, और ओपन जीप में इस बार है जाने माने निर्माता निर्देशक और एक्टर भी विजय गोल्डी आनंद।

जी हाँ, ये सॉन्ग आपने एंजॉय किया है, ये आपका चेहरा बता रहा है। तो अगर आपको ये सॉन्ग्स पसंद आते हैं, थीम बेस्ड कोई अगर हम प्रोग्राम करते हैं आपको अच्छा लगता है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी आपको मालूम ही है, fmgoldair@gmail.com। तो सुनीता को अब लेनी होगी थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत, क्योंकि समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का समय हो चला है। म्यूजिकल दिल्ली की मैं आपसे फिर मिलती हूँ 8:00।

0: 45 मिनट पर। आइए सुनते हैं आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार। आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रेणु कटारिया के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। नई उम्मीदों और नई खबरों के साथ आप सबका स्वागत, जहां देश दुनिया की बड़ी खबरें होंगी, मौसम का ताजा हाल होगा, इतिहास के पन्नों से निकलकर आएंगी कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियां जो आपको बताएंगी कि आज की तारीख कभी अतीत में कितनी खास रही थी। लेकिन इन सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत है रेनू का। नमस्कार रेनू।
1: नमस्कार नवीन। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे ऑन दिस ब्यूटिफुल सैटरडे मॉर्निंग, वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे।
0: रेनू, कहते हैं ना कि हर सुबह के साथ एक नई कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन आज की सुबह थोड़ी खास है क्योंकि आज हम कैलेंडर के एक पैसे पन्ने को पलटेंगे और देखेंगे कि 3 अक्टूबर के साथ इतिहास में कौन सी कहानियां जुड़ी हैं। जानती हैं, कहीं संगीत होगा, कहीं साहित्य होगा, खेल का रोमांच, सिनेमा की यादें और इतिहास के ऐसे मोड़ जिन्होंने आने वाले समय की दिशा बदल दी। अब जब ये सब कुछ होगा तो फिर क्यों ना इस गीत के साथ तो हम शुरुआत करें आज के इस आज सवेरे की।
1: जी,

0: रेनू दिल की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता और हर दिन अपने आप में कहता है कि आज फिर से जीने की तमन्ना है।
1: बिल्कुल, और आज सच में फिर से जीने की तमन्ना है और उसी के साथ लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ फर्स्ट।
0: तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री उपहार ई नीलामी। ये बहुत अच्छी खबर है, इट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों की 8वीं ई नीलामी की अवधि बढ़ाकर इसे इस महीने की 31 तारीख तक कर दिया है। इस बार की ई नीलामी में दिल्ली की विविधता और विरासत को दर्शाने वाले 30 अलग अलग स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। और इन्हें जानते हैं, इनमें 9 फोटो फ्रेम, 9 स्मृति चिन्ह, 6 मूर्तियां, प्रतिमाएं और स्टैचू शामिल है। और इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी एक स्मृति वस्तु, धार्मिक वस्तुएं, पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प से जुड़े वो तमाम सामान नीलामी का हिस्सा है। और इससे मिलने वाली जो राशि है वो जाएगी नमामि गंगे परियोजना में। और पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, आधिकारिक पोर्टल है pmmementos.gov.in.
1: That's very nice. India has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration is of production is driven by hidden subsidies and support. Mr. Goyal said that India is the fastest growing large economy in the world, with a domestic demand driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. We have a report.
2: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: अब बात हरित ऊर्जा की। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण GEC-3 को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। इस योजना का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा को बढ़ाना है।
1: Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that robotics is set to become an important tool across medical specialties covering diagnostics, treatment and therapy. Addressing the International Conference of the Society of Robotic Surgery, SRS, he said that robotics, artificial intelligence and nanoscience will create an ecosystem for precision and personalized healthcare. Dr. Singh said that the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology and robotic cardiology, just as AI is finding applications across different medical specialties. Dr. Singh also congratulated the organizers of SRS India 2026 for bringing robotic surgery into the domain of institutional learning, academics and professional conference platforms.
0: Renu, artificial intelligence ka istemal sirf galat tareekon ke liye nahi hota hai. Artificial intelligence ka istemal isliye hota hai ki किस तरह से हम अपने जीवन को सुगम बनाएं। और जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को बताया कि रोबोटिक्स में भी अब AI जो है कितनी खूबसूरती से आगे आ रहा है, और खासकर मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में।
1: जी बिल्कुल। And moving on to some oil crisis news, Naveen. The group of seven G7 nations have agreed to release 100 million barrels of oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. Mr. Trump said that European countries had agreed to release large quantities of diesel from their stocks and that the process would begin immediately. The announcement followed an overnight conversation between Trump and French President Emmanuel Macron.
0: और अब बात खेलों की, मैं और रेनु आपको सीधे जापान लिए चलते हैं, जहां पर भारत का स्वर्णिम युग, या यूं कहें कि भारत का स्वर्णिम दिन जारी है। सीधे चलते हैं श्रीराम के पास और जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आज और कैसा रहा कल का दिन। श्रीराम, कहां से शुरू कर रखे हैं?
3: नवीन, जापान में एशियाई खेलों में आज क्रिकेट में स्वर्ण पदक की दावेदारी के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच सुबह 10 बजे से खेला जाएगा और वहीं पुरुष हॉकी में आज 3:30 बजे भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, गोल्फ और नौकायन में भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल भारत का स्वर्णिम अभियान जारी रहा। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा और चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। उधर भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया।
4: किताबों में लिखा जाएगा सुजीत कलकल के नाम के साथ चलता रहेगा। किस तरह से ट्रेल कर रहे थे लेकिन कैसी वापसी की और एक गोल्ड मेडल भारत के लिए दिलवा दिया। सुजीत कलकल, असंभव वापसी को उन्होंने यहां पर साकार किया है।
3: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। नवीन, अब तक पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है।
5: मन जाए ऐसी होती, रग रग मचल के बोली, टस है ना मस है जी, जिद है ता जिद है जी।
0: रेनू, इस बीच जब हम अपने लिसनर्स को बता रहे थे कि भारत का कल का दिन कैसा रहा, आज सुबह सुबह भारत ने फिर से अपने दिन की शुरुआत स्वर्ण पदक के साथ कर दी है। तीरंदाजी में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल चुका है और वो मिला है कुमकुम।

0: माहौल को, तो यानी दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत है ना,
1: और दिन की शुरुआत के साथ साथ सारा दिन ही बहुत खूबसूरत जाने वाला है। वी आर विशिंग ऑल आवर प्लेयर्स ऑल द बेस्ट, प्लीज डू योर बेस्ट और इंडिया का नाम रोशन करिए।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं और खिलाड़ियों को खूब बधाई दी है और अब पदक तालिका में भारत के 17 स्वर्ण हो चुके हैं, 25 रजत हो चुके हैं, 35 कांस्य पदक हो चुके हैं, यानी कुल 77 पदक इस समय भारत की झोली में है। और अब रुख करते हैं आपके शहरों का और जानते हैं कि आपके शहर की खबरें आपको क्या बताती हैं।
1: Beginning with Chennai Metro, IIT Madras and Human Welfare Association have launched an initiative to empower artisans and producer communities through technology-enabled authentication and traceability of geographical indication tagged products. The institutions will develop practical solutions for digital authentication, product traceability, documentation and tech-based interventions. The initiative aims to help artisans to establish the authenticity and origin of their products, strengthen consumer confidence, protect cultural identity and create sustainable livelihood opportunities. The initiative will be supported by the Artisan Empowerment Lab at IITM, which is developing scalable solutions for challenges in the GI ecosystem. Moving on to another news from Tamil Nadu, Export Inspection Agency in association with the Department of Fisheries and Fishermen Welfare Government of Tamil Nadu, the Export Inspection Agency Chennai organized a hygiene awareness program for the fishermen community in Kasimedu Fishing Harbour, Chennai as part of the celebration of Swachh Bharat Divas on 2nd October 2026 under the Swachhata Hi Seva 2026 campaign of the Government of India. The officials from both the office and other members of Seafood Exporter Association of India, Tamil Nadu chapter, students from Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences, Dr. MGR Fisheries College and Research Institute and fishermen of Kasimedu Fishing Harbour, around 100 personnel participated in this fishermen's awareness program. Aur Swachhata Abhiyan to chalta hi ja raha hai aur 2nd October is for Swachhata, so there is the last metro news from Chennai on the same Swachhata pe. The Regional Passport Office Chennai actively participated in the Swachh Bharat 2026 campaign led by Regional Passport Officer S. Vijaya Kumar. The officers and staff conducted a cleanliness drive on 2nd October 2026 at Royal Ottawa's compound Anasalai Chennai, a human chain to raise awareness among the public about the importance of cleanliness.
0: स्वच्छता ही सेवा है और इस अभियान को आपने सफल बनाना है। कम्युनिटी यानी सामुदायिक या समाज के साथ मिलकर अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें और हाँ, सिर्फ आसपास के क्षेत्र को ही साफ नहीं रखें, मन को भी स्वच्छ रखें, मन को भी साफ रखें। दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास सभी द्वार खुल गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज की सुविधा भी शुरू हो चुकी है और अगर आप खादी के शौकीन हैं तो आपके लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है। गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन समेत पूरे देश में विशेष छूट अभियान की शुरुआत की गई है। ये छूट 16 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट मिलेगी। तो आज का दिन आप बिता सकते हैं खादी के शोरूम पर, जहां से आपको बहुत खूबसूरत खादी मिलेगी और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छे है ना।
1: तो हम चल रहे हैं शॉपिंग करने।
0: बिल्कुल, रेनू ने ऑफर दिया है। ठीक प्रोग्राम के बाद जैसे ही शोरूम खुलेगा हम खादी उद्योग वहां पर हम आपको नजर आएंगे, मिल सकते हैं आप हमें
1: जी।
0: अगली खबर, दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत उत्तरी रिज के लिए फेज 1 अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। तो ये थी दिल्ली की खबरें।
1: एंड मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, इन द 52nd गांधी मेमोरियल लेक्चर एट रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट एंड पार्टनर एट अंतल डिजाइन ऑफ अहमदाबाद रियाज तैयब जी डिटेल्ड गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ही इन्फॉर्म्ड दैट अंडर द गांधी हेरिटेज मिशन दे हैव डॉक्यूमेंटेड 20 साइट्स विद गांधी हेरिटेज। दिस 10-year प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज कम आउट एज अ बुक टाइटल्ड Gandhi Places and Architectural Documentation. The study report in the book form documents the Sabarmati Ashram in Ahmedabad and also the Sevagram Ashram in Wardha. In his explanation, Riyaz Tayyibji said that the Sevagram Ashram is one of the most modern buildings of the time. The Magan Sangrahalaya in Wardha, he added, is the place where Gandhi had organized the first international design competition to develop portable working charkhas in 1919.
0: बात मुंबई की। मुंबई में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों से निपटने के लिए 2026 वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशासनिक वार्ड में कम से कम 10 वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान होगी। वहीं बृहन मुंबई नगर निगम ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कल मुंबई के कई स्थानों पर इस अभियान का आयोजन किया और इसमें समाज के कई वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। अगली खबर, पालघर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आदि कर्मयोगी फेलोशिप सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। जिला प्रशासन और सोनोपंत दांडेकर कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस फेलोशिप में 12 युवा प्रतिभागियों को आदिवासी और विकासोन्मुख क्षेत्रों में विकास कार्यों का अनुभव प्राप्त हुआ। एक खास खबर, 25 अक्टूबर से मुंबई हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 के पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में अस्थायी रूप से हर सप्ताह 265 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम कर दी जाएंगी। मुंबई के टर्मिनल 1 के नवीनीकरण के दौरान टर्मिनल 2 पर खाली हुए स्लॉट का उपयोग घरेलू उड़ानों के लिए किया जाएगा। पुनर्निर्माण की अवधि के दौरान ये बदलाव लागू रहने की उम्मीद है।
1: एंड न्यूज फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो, तेलंगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का हैज लॉन्च द कॉमन पास फॉर हैदराबाद मेट्रो एंड आरटीसी सर्विसेज। The common pass was launched at a program held at Praja Bhavan in Hyderabad. Transport Minister Purnam Prabhakar, Chief Secretary Sanjay Jaju, public representatives and senior officials attended the program. The government has introduced daily and monthly common passes for the people over there. The daily common pass has been fixed at 400 rupees while the monthly pass will cost 8,500 रुपीस।
0: बात कोलकाता की। पूर्वी भारत के पहले गामा नाइफ केंद्र का उद्घाटन कल कोलकाता के इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूरोसाइंस में किया गया। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। तो ये थी आपके शहर की खबरें और अब रुख करते हैं मौसम का। तो कहां से शुरू करें?
1: लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। Chennai is likely to have a generally cloudy sky with light rain. Temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. Moving on to Bengaluru, it is forecast to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees while the maximum may reach 31 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to have a partly cloudy sky with the possibility of thunder and lightning. Temperatures are expected to range between 23 and 34 degrees Celsius.
0: बात दिल्ली की। दिल्ली में अक्टूबर की शुरुआत के साथ गर्मी ने अभी पूरी तरह विदाई नहीं ली है और रेनू आज भी लगभग अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा, न्यूनतम 28 डिग्री के आसपास आप महसूस करेंगे। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी लगभग इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है और कोलकाता में भी आज बारिश का मूड बना हुआ है। हाल के दिनों में शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन आज छिटपुट बारिश रह सकती है। तो दिल्ली धूप का अंदाज, मुंबई बारिश का मिजाज और कोलकाता बादलों का राज।
1: जी,
0: ये थी मौसम की जानकारी और अब ढूंढते हैं आज के दिन का इतिहास।
1: यस, इन द ईयर 1863 ऑन दिस डे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इश्यूड अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग अ नेशनल डे ऑफ थैंक्सगिविंग।
0: 1880, रुख करते हैं पुणे का। यही मंचित हुआ था पहला मराठी नाटक संगीत शाकुंताल और यह संगीत नाटक था और यहीं से शुरू होती है ऐतिहासिक यात्रा। उस समय मनोरंजन के जो साधन थे वो बहुत कम थे, टेलीविजन था नहीं, मोबाइल था नहीं, सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रंगमंच पर कलाकारों की आवाज जो थी वही अपने आप में बहुत ही रेणु, और संगीत नाटक जो था ये संगीत शाकुंतल, ये उसी की याद दिलाता है
1: जी। एंड नॉट वेरी ग्रेट इवेंट, बट बिकॉज इट इज एन इवेंट वी हैव टू मेंशन दैट इन द ईयर 1952 ऑन दिस डे, दैट इज 3rd of October, द यूके टेस्टेड इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। द टेस्ट कॉल्ड ऑपरेशन हरिकेन टुक प्लेस एट द मोंटेबेलो आइलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। विद दिस ब्रिटेन बिकेम द 3rd नेशन टू

0: join the nuclear club. It marked the start of its nuclear weapons program. And in 1955, on this day, the first Guinness Book of Records was released in Britain.
1: अब चलते हैं 1984 की ओर. रेनू, जानते हैं आज ही के दिन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना हुई थी. रेल का सफ़र हम सबने किया है, बहुत खूबसूरत सफ़र होता है. और जो हिमसागर जो ट्रेन है, एक तरफ समुद्र से घिरा कन्याकुमारी तो दूसरी तरफ हिमालय की ओर बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र. और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक जिसने यात्रा की होगी ना, उसने पूरा भारत देख लिया होगा. भाषाएँ, संस्कृतियाँ, जीवन शैली. एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, जानते हैं कि ट्रेन क्या कहती है.
0: जी.

0: नवीन, आप हमें अपने बचपन की यादों में ले गए हैं. इट्स इज सो नॉस्टैल्जिक टू लिसन टू दिस सॉन्ग. एंड टिल टुडे यू नो आई स्टिल प्रिफर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन रादर देन द एरोप्लेन मोड.
1: रेनू, ट्रेन का सफर जो है ना, एक सफर नहीं होता, एक पूरी संस्कृति दिखाता है. कई तरह के लोग मिलते हैं और सबसे खूबसूरत बात तो होती है जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है तो वहाँ जो तरह तरह की आवाज़ें आती हैं ना, वो आपको उस क्षेत्र की याद दिलाती हैं. वो वहाँ की बोली कैसी है, वहाँ की भाषा कैसी है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और ये बायर तो नहीं देख सकते ना,
0: बिल्कुल भी नहीं. स्पेशली द लैंडस्केप्स जो आप इतनी सुंदर ब्यूटीफुल जो आप लैंडस्केप्स देखते हैं, वो प्लेन में कहाँ देखने को मिलता है.
1: बादलों से घिरा प्लेन एक या दो घंटे बाद आपको जमीन पे उतार देता है, लेकिन जमीन की खूबसूरती सिर्फ ट्रेन से.
0: जी,
1: रुक करते हैं खेलों की दुनिया का. 1992 में वो आज का दिन था जब भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी गीत सेठी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती थी. और अब उन व्यक्तियों को याद करते हैं जो जुड़े हैं आज के दिन से.
0: Yes, so today we are paying tributes to Woodrow Wilson Guthrie, who was an American singer-songwriter, one of the most significant figures in American folk music. His music, including songs such as "This Land Is Your Land," has inspired several generations, both politically and musically. And this is his favorite song. So let's listen into "This Land Is Your Land."

0: आज जन्म हुआ था निषाद कुमार का। 1999 में भारत के प्रमुख पैरा हाईजंप एथलीटों में वो शामिल हैं और खेल हमें बार बार यही सिखाता है कि असली जीत केवल पदक नहीं होती बल्कि बड़ी जीत वो होती है जो अपने सामने खड़ी चुनौतियों को पार करती है। निषाद कुमार, आज उनका जन्म हुआ था।
1: Yes, and today is the birthday of Gwen Stefani, who is an American singer, songwriter, actress and record producer. She is also the co-founder and lead vocalist of the band No Doubt. Her third solo album, This Is What The Truth Feels Like, was her first solo album to reach number one on the Billboard 200 chart. And Stefani has won 3 Grammy Awards. So here, we are going to listen to the song Truth, sung by Gwen Stefani.

0: और अब उस कलाकार को याद करते हैं जिसे टीवी के दर्शक शायद ही भूल पाए। आज के दिन 2021 में उनका निधन हुआ था। नाम घनश्याम नायक, शायद इस नाम से आप बिल्कुल परिचित नहीं हो, लेकिन तारक मेहता के उल्टा चश्मा के नट्टू काका से आप जरूर परिचित होंगे। उनका अंदाज, उनकी आवाज, उनका कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को हमेशा हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। आज उनका निधन हुआ था, सुनते हैं उन्हीं को।
1: हाँ नट्टू काका, अभी मैं आपको फोन करने वाला था।
2: थैंक यू वेरी मच सेठ जी।
1: थैंक यू
2: मेरी उम्र लंबी करने के लिए।
1: हा?
2: आपने मुझे फोन करके याद किया, मतलब मेरी उम्र लंबी हो गई ना।
1: अरे भाई ये सब फालतू बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, आज आप दुकान जल्दी आ जाना।
2: सॉरी सेठ जी, पर आज आप दुकान वक्त पर पहुँच जाना।
1: क्यों?
2: क्योंकि मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ, मुझे अर्जेंट गाँव जाना पड़ रहा है।
1: क्या, क्यों?
2: आई एक्सप्लेन सेठ जी, वो क्या है कि हमारे उड़ाई गांव के बाजू के वडनगर में कुछ फॉरेनर्स घूमने आए, तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए गांव वालों ने खास मुझे बुलाया है।
1: अरे तो फिर दुकान में?
2: अरे दुकान में बागा है ना सेठ जी।
1: अरे भाई बागा तो है, लेकिन ऐसे अचानक आप कैसे जा सकते हैं?
2: आई नो सेठ जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने देश के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा।
1: अरे इसमें देश बीच में कहाँ से आया?
0: तो ये थे तारक मेहता के नट्टू काका। और अब एक प्रेरणादायक कहानी। रेणु जानती हैं कादंबिनी गांगुली भारत की शुरुआती महिला चिकित्सकों में थी और महिलाओं की उच्च शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राह बनाने वाली अग्रणी हस्तियों में उनका नाम लिया जाता है। 3 अक्टूबर 1923 को उनका निधन हुआ था। और उनकी कहानी याद दिलाती है कि बदलाव अचानक नहीं होता। बात उस समय की है जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर से नहीं निकलने दिया जाता था, उसके बावजूद भी उन्होंने रास्ता बनाया और पहली महिला चिकित्सक बनी। तो उनके लिए तो हम कुछ यूं कहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे।

0: The elevator's broken down, so I walk one, flight three, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag.
1: And today is also the birthday of Rangaraj Subbaiah, professionally known as Satyaraj, who's an Indian actor, producer, director, media personality, who has appeared in Tamil cinema alongside a few Malayalam, Telugu and Hindi features. Or agar hum unki Hindi movie ki baat karein, to bataiye hum kiski baat kar rahe honge, Naveen?
2: बात हम कटप्पा की कर रहे हैं.
1: जी बिल्कुल. ही प्लेड द रोल ऑफ करिकला कटप्पा इन द टू पार्ट एपिक बाहुबली. सो लेट्स लिसन इनटू दिस डायलॉग बिटवीन शिवगामी देवी रियलाइजिंग हर मिस्टेक.
3: इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे माँ?
4: कटप्पा,
5: गलत किया तुमने शिवगामी.
3: बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने. बाहुबली पर तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड था कि अपने ही बेटे का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं देख पाई.
2: और रेनु, अब बात हिंदी सिनेमा के उस चर्चित निदेशक की जिसने करगिल, रिफ्यूजी, बॉर्डर, क्षत्रिय बंटवारा, हथियार, यतीम और बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाई हैं. फिल्में थोड़ी सी कम थी लेकिन पॉपुलर उनका नाम ज्यादा था. नाम जेपी दत्ता. आज उनका जन्मदिन है. लेकिन 1985 में बनी खूबसूरत फिल्म गुलामी है, उसको हम अब सुनेंगे. बहुत ही खूबसूरत गीत है.

0: तो आज की सुबह इन कहानियों से एक छोटा सा संदेश इतिहास हमें पीछे देखने के लिए नहीं आगे बढ़ने के लिए आईना देता है। अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे नवीन और रेणु को दे इजाजत
1: एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमरीका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
6: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
7: मेरा नाम पूजा जागा, मैं ग्राम पंचायत शामपुरा डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूँ में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रूपए तक की इनकम कर ली।
6: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
8: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शैक्यों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: For precision and personalized healthcare, Dr. Singh said the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology, and robotic cardiology, just as AI is finding applications across different medical specialities. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and marked by an unwavering commitment to serving the nation. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving Viksit Bharat by 2047. Rural women in India are no longer confined to traditional farm work. They are increasingly becoming operators and service providers of modern agricultural technology. Today, in our special series, we bring you a story that highlights how the Namo Drone Didi scheme is playing an important role in this transformation. Here is a report by our correspondent.
1: The scheme was approved by the Union Cabinet in November 2023 with the objective of connecting women with the drone technology in agriculture. An outlay of 1,261 crore rupees was provided for the scheme in the last 3 years. Under the scheme, the government aims to provide 15,000 agricultural drones to selected women. The scheme seeks to create new livelihood opportunities for women by enabling them to work as drone service providers. They are offering drone-based services for spraying liquid fertilizers and pesticides on rental basis to farmers. Under the scheme, selected women are eligible for central financial assistance up to 80% of the cost of the drone and associated equipments. Loans are also available to meet the remaining cost along with interest support. The drone package also includes training for the beneficiaries. In Rajasthan, 50 women have been provided drones. Pooja, a Namo Drone Didi from Sawai Madhopur district of Rajasthan, says that the training brought a positive change in her life and has also provided financial support to her family.
2: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ. मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था. जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है. उससे मैंने गेहूँ में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है.
1: Namo Drone Didi scheme is thus not only promoting the use of technology in agriculture but also helping rural women acquire new skills, take on new responsibilities and explore new avenues of livelihood and income. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
0: This is Akashwani giving you the news.
3: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashwani News.
0: Welcome back to Morning News on Akashwani. Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav will attend the Gopalak Sammelan in Bhopal.
4: A state-level Gopalak Sammelan is being held today at the Bhel Dashara Maidan in Bhopal. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will address the gathering. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will also attend the event. Amit Shah will honor women cattle farmers who have done good work in the field of animal husbandry. He will also distribute approval letters to beneficiaries of the Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana. More than 35,000 cattle farmers and members of dairy cooperatives are expected to attend the event. Cattle farmers from Bhopal, Sihor, Betul, Rajgarh, Harda, Guna, Ashoknagar, Vidisha and several other districts will take part in the program. Milk producers associated with the Bhopal and Indore milk unions will also receive bonus payment. Several dairy projects will also be launched, including a dairy plant worth 255 crore rupees in Ujjain and a facility related to milk products in Bhopal. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
0: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the Global Horticulture Hub will strengthen the horticulture sector and create better opportunities for farmers in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Ms. Sitharaman laid the foundation stone for the Rayalaseema Global Horticulture Hub project and the Indian School of Agriculture at Madanpally in Ananmaya district. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and Deputy Chief Minister Pavan Kalyan were present on the occasion. Speaking at the event, the Finance Minister said the centre and the state are working together to develop Andhra Pradesh as a major horticulture centre. She stressed the need for better water management, modern technology and infrastructure to support farmers and improve their incomes. The 8th edition of e-auction of gifts presented to the Prime Minister has been extended until the 31st of this month. Culture Ministry said this edition features 30 different mementos, showcasing the diverse dimensions of Delhi. The 30 mementos include 9 photo frames, 9 mementos and 6 idols, sculptures and statues. The Ministry further noted that for auction dates and other details, visit the official PM Mementos e-auction portal, pmmementos.gov.in. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has called on the Shipping Corporation of India SCI to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operations yesterday, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. On to sports. In the Asian Games 2026, India began day 14 with a historic gold in archery as teenager Kumkum Mohor defeated South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off in Aichi, Nagoya, Japan this morning. After the final was tied 5-5, Kumkum shot a perfect 10, while Oh managed an 8, securing the gold for India. With the victory, Kumkum became the first Indian woman to win an Asian Games medal in the individual recurve event. Earlier, Kumkum defeated China's Jing Yizhu 6-2 in the semi-final, securing a quota place for India at the 2028 Los Angeles Olympics. With this victory, India's medal tally rose to 77, including 17 gold, 25 silver and 35 bronze medals. In hockey, defending champions India will take on against Malaysia, with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold medal and an LA 2028 Olympics quota. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
5: Thank you, Anuja. The front page news of all the dailies today is on the historic hockey and archery wins in the Asian Games in Japan, with Indian hockey team celebrating the win to qualify for the Los Angeles Olympics. The Times of India headline says, "Poor gold, India equals its best day at any Asiad with haul of 6. Recounting the mid-air incident, PM Modi shares unforgettable conversation filled with pride and emotion with hero pilot who saved lives on social media platform X, cites the statesman. Hindustan Times refers to the Russian President Putin hailing Prime Minister Modi having very good ideas aimed at mutually acceptable solution for ending Ukraine war. In a move to standardize official cartography and enhance public awareness of the sensitive border region, India adds 28 sites in Ladakh to official map, states the Asian Age. And finally, the Pioneer writes, Vande Bharat Express sets 100 km per hour record over the highest and first cable stayed Chenab Railway Bridge. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for WTO-compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today, with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mohor clinches gold in recurve event, Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने तिजारत में बिगड़े हुए तौर तरीकों, अशिया की भरमार और इनकी इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने से निमटने के मकसद से WTO के उसूलों पर अमल दरामद के लिए कहा है। G7 मुल्कों में 10 करोड़ बैरल्स डीजल और खाम तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है क्योंकि अमरीका में इनकी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा ने माहौल के लिए साजगार तवानाई की भारत की राहदारी के तीसरे मरहले का खैर मकदम किया है। उसने कहा है कि इससे शमसी तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर भारत की साख को मजबूती हासिल होगी। इमदाद महामी के मरकजी वजीर अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे जिसमें रोजाना 3 लाख लीटर दूध की सलाहियत होगी। और एशियन गेम्स में भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहद ने रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला फाइनल में मलेशिया से होगा। अब खबरें। भारत ने अमेरिका के शहर मिलवॉकी में G20 के वज़रा तिजारत की मीटिंग के आखिरी दिन आलमी सतह पर तिजारत में बिगड़े हुए तौर तरीकों की तस्हीह के मकसद से WTO के उसूलों पर अमल करने के लिए कहा है। तिजारत और सनत के वजीर ने मांग में कमी की वजह से सलाहियत के बावजूद अशिया को मुनज़्ज़म तरीके से कम तादाद में तैयार करने के बारे में कहा कि कई रुकन मुल्कों की तरह भारत को भी यही तशवीश लाहक है कि कुछ मईशतों में तिजारत के बिगड़े हुए तौर तरीकों से अशिया की भरमार और इनकी कीमत इंतहाई कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तशवीश WTO के लगातार इकदाम से दूर की जा सकती है जिनमें अशिया की भरमार की रोकथाम और दरामदात पर टैक्स लगाना भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने खास तौर पर कहा है कि G20 रुकन मुल्कों के साथ भारत की तिजारत का इन्हिसार एक शफाफ बिला तफरीक और उसूलों पर मबनी तिजारती निजाम पर है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क का तरीका इस निजाम की जमानत है। उन्होंने यकीन दिलाया कि यही शर्तें सबसे छोटे कारोबारी और सबसे बड़े कारोबारी पर भी लागू होती हैं। आलमी सप्लाई चेन में लोगों से जबरदस्ती काम लिए जाने के बारे में जनाब गोयल ने कहा कि इस बुराई के खात्मे के तहत भारत का अज़्म कतई और गैर मशरूत है। वज़ीर मौसूफ ने उसूलों पर मबनी मुनसिफाना, मुसावियाना, बिला तफरीक, शफाफ, खुले, सबकी शमूलियत वाले और एक ऐसे कसीर मुल्की तजारती निज़ाम के तई भारत के अज़्म को दोहराया जिसमें WTO को मरकजी हैसियत हासिल हो। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए पॉलिसी साजी की गुंजाइश की अहमियत पर जोर दिया ताकि वो इत्तेफाक राय के साथ किए गए फैसलों को बरकरार रखते हुए तरक्की कर सकें और आवाम की फलाह कर सकें। जनाब गोयल ने इससे अलग ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया और दीगर मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मीटिंग्स की। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
6: 7 मुल्कों के ग्रुप G7 ने 4 महीने में 10 करोड़ बैरल्स तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है जो ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने की एक कोशिश है जिसके तहत इब्तदाई 20 दिन के दौरान डीजल की खातिर खास सप्लाई की जाएगी। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं जिससे नवम्बर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया पर दबाव में मजीद इजाफा हो गया है। जनाब ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों ने अपने जखीरों से बड़े पैमाने पर डीजल जारी करने और इस अमल को जल्द शुरू करने से इत्तेफाक किया था। यह ऐलान ट्रंप और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के दरमियान रात भर की गुफ्तगू के बाद किया गया है। मीटिंग के बाद फ्रांस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बैनुल अक्वामी तवानाई एजेंसी IEA तेल जारी करने के अमल में तालमेल रखेगी। अक़्वामे मुत्तहिदा ने माहौल के लिए साजगार राहदारी के तीसरे मरहले GEC-SOM के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपए की भारत की तरफ से दी गई मंजूरी का खैर मकदम किया है। उसने कहा है कि ग्रिड को मजबूत बनाना और बैटरी स्टोरेज एक बड़ा कदम है जिससे मुल्क के अवाम और मईशत को बड़ा फायदा फराहम होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
8: आबोहवा की तब्दीली के उमूर से मुंसलिक अक़्वामे मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील ने कहा कि माहौल के लिए साजगार तवानाई की राहदारी के तीसरे मरहले से भारत को बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की अपनी बढ़ती हुई सलाहियत में इजाफा करने, बिजली की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने और तवानाई के शोबे में खुद की एक आलमी रहनुमा के तौर पर शनाख्त कायम करने में मजीद मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई को भारत के बिजली के निजाम से मरबूत करने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ इक्तसादी तरक्की को भी मदद हासिल होगी। جناب اسٹیل نے خاص طور پر توانائی کی یقینی فراہمی اور اقتصادی ترقی کے ضمن میں بھارت جیسی بڑی معیشتوں کے لیے بیٹری اسٹوریج کی دفاعی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ مرکزی

0: काबीना ने जीईसी सोयम को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1,86,405 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें 54,082 करोड़ रुपए मरकज की तरफ से हैं, जिसका मकसद बैन रियासती तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम बनाना और बैटरी तवानाई स्टोरेज निज़ाम की तैयारी में मदद फराहम करना है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स सभी तरह के तिब्बी इलाज में एक अहम आलाकार बन सकती है, जिसे तशखीस, इलाज मुआलजे और थेरेपी में इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक सर्जरी की सोसाइटी की बैन अलावामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स, मसनू जहानत, AI और नैनो साइंस से इंतहाई एहतियात से की जाने वाली सर्जरी और किसी एक शख्स के लिए खसूसी तौर पर किए जाने वाले इलाज मुआलजे का एक इको निज़ाम फराहम हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुस्तकबिल में रोबोटिक दवा, रोबोटिक एंडोक्रिनोलॉजी और दिल का रोबोटिक तरीके से इलाज किया जा सकेगा, जैसा कि AI मुख्तलिफ तरह के इलाज मुआलजे में अपनी अफादियत के मौके तलाश कर रही है। भारत की देही खवातीन अब महज रिवायती काश्तकारी के काम तक महदूद नहीं रह गई हैं, बल्कि वो तेजी से जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खिदमात फराहम कुनंदा बन रही हैं। नमो ड्रोन दीदी स्कीम इस तब्दीली में अहम रोल अदा कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नवंबर 2023 में मरकजी काबीना की मंजूरी से शुरू की गई इस स्कीम का मकसद खवातीन को ड्रोन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। गुज़िश्ता 3 बरस में इस स्कीम के तहत 1,261 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इस स्कीम के तहत हुकूमत का मुंतखब खवातीन को 15,000 ज़रई ड्रोन फराहम करने का इरादा है। इसका मकसद खवातीन को ड्रोन सर्विस का हामिल बनाकर उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। पूजा, जो राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर की एक नमो ड्रोन दीदी हैं, कहती हैं कि इस तरबियत की वजह से उनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आई है।
3: मेरा नाम पूजा जागा, मैं ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है, उससे मैंने गेहूँ में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हज़ार रुपए तक इनकम कर ली।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज दूध की पैदावार और डेयरी के शोबे के फरोग के लिए एक अहम प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह और वजीर आला डॉ मोहन यादव गौ पालक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज रियासती सतह पर गौ पालक सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है, जहां उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इज्तम से खिताब करेंगे। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जनाब अमित शाह मवेशी परवरी के शोबे में नुमाया कारकर्दगी करने वाली खवातीन के इज्जत अफजाई करेंगे, जहां जनाब शाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के मुस्तफिदीन को मंजूरी नामे भी तकसीम करेंगे। उम्मीद है कि इस तकरीब में 35,000 से ज्यादा मवेशी परवर और डेयरी की इमदाद बाहमी अंजुमनों के अरकान शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, विदिशा और दीगर जिलों के मवेशी परवरी से वाबस्ता काश्तकार शिरकत करेंगे। भोपाल और इंदौर की दूध की यूनिटों से वाबस्ता दूध की पैदावार करने वाले किसानों को बोनस रकम की अदायगी भी की जाएगी। इस मौके पर उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से एक डेयरी प्लांट और भोपाल में दूध की पैदावार से मुतालिक एक मरकज समेत कई डेयरी प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा खित्ते में बागबानी के आलमी मरकज से बागबानी के शोबे को इस्तेहकाम हासिल होगा और किसानों के लिए बेहतर मौके पैदा होंगे। मोहतरमा सीतारमन ने कल अन्नामैया जिले के मदनापल्ले इलाके में रायलसीमा आलमी बागबानी मरकज के प्रोजेक्ट और जरात के भारतीय स्कूल का संग बुनियाद रखा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और नायब वजीर आला पवन कल्याण भी इस मौके पर मौजूद थे। وزیر خزانہ نے کہا کہ مرکز اور ریاست آندھرا پردیش کو باغبانی کے ایک بڑے مرکز کے طور پر تیار کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کے بہتر بندوبست، جدید ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے اور ان کی آمدنی کو بہتر بنایا جا سکے۔

0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय जहाजरानी की कॉरपोरेशन से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क को जहाज साजी और बहरी सलाहियत में आलमी मुसाबिकत पैदा करने और खुद कफील बनाने में कायदाना रोल अदा करे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फाल होने के 65 बरस मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने भारत के तवानाई और तिजारती सिक्योरिटी, खासतौर पर आबनाए हुरमुस के हालिया बहरान के हवाले से कॉरपोरेशन के नुमाया रोल को उजागर किया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत भारत के 2047 तक जहाज साजी और जहाजरानी में नुमाया ताकत बनने के लिए एक मजबूत तर कौमी बहरी बेड़ा मरकजी अहमियत का हामिल है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियाती महकमे ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक के साथ आंधी चलने के इम्कान जाहिर किए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और सेली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। IMD ने कोंकण और गोवा में आज गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। नौ उम्र भारतीय तीरंदाज कुमकुम मोहद ने एशियाई खेलों में खवातीन के इन्फरादी रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने जनूबी कोरिया की ओ ये जिन को एक सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला 5-5 से बराबर रहा और कुमकुम ने शूट ऑफ में बेहतरीन 10 पॉइंट्स का निशाना हासिल किया, जबकि ओ ये जिन महज 8 पॉइंट हासिल कर सकें। इस कामयाबी के साथ कुमकुम इन्फरादी रिकर्व मुकाबले में एशियन गेम्स का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई हैं। इससे कबल कुमकुम ने सेमीफाइनल में चीन की जिंगजी जू को 6-2 से शिकस्त देकर 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स कोटा भी यकीनी बना लिया है। हॉकी में दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। दोनों टीमें गिफो पर प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में सोने का तमगा जीतने और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स कोटा हासिल करने के मकसद से मैदान में उतरेंगी। इन शानदार कारकर्दगियों के साथ तमगों की मजमू फहरिस्त में भारत 5वीं पोजिशन पर पहुंच गया है। मुल्क के तमगों की तादाद बढ़कर 77 हो गई है, जिनमें सोने के 17, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद शहजाद।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर ममनून कौम के जरिए उन्हें खराज अकीदत पेश किए जाने को अखबारात ने अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने इस खबर की सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया, वजीर आजम और कांग्रेस लीडरों ने राजघाट पर बाबू को श्रद्धांजलि दी। इसी अखबार ने दिवाली और छठ के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर खसूसी ट्रेनें चलाए जाने को भी अहमियत के साथ शाये किया है। वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR के अमल में छूट गए वोटरों के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से खसूसी मुहिम चलाने के फैसले को भी अखबारात ने सफे अव्वल पर जगह दी है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने इलेक्शन कमीशन 20 रियासतों में खसूसी मुहिम चलाएगा की सुर्खी के साथ शाये किया है। इसके अलावा अखबारात ने वजीर आजम मोदी की 174 जाने बचाने वाले भारतीय पायलट स्मित मछार से वीडियो कॉल के जरिए बात किए जाने को भी अहमियत के साथ शाये किया है। एशियन गेम्स में जुमा के रोज मुक्केबाजी में सोने के तमगों की हैट्रिक समेत अलग अलग खेल मुकाबलों में कुल 6 सोने के तमगे जीतने की खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने तिजारत में बिगड़े हुए तौर तरीकों, अशिया की भरमार और इनकी इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने से निमटने के मकसद से WTO के उसूलों पर अमल दरामद के लिए कहा है। G7 मुल्कों ने 10 करोड़ बैरल्स डीजल और खाम तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है, क्योंकि अमरीका में इनकी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा ने माहौल के लिए साजगार तवानाई की भारत की राहदारी के तीसरे मरहले का खैर मकदम किया है। उसने कहा है कि इससे शमसी तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर भारत की साख को मजबूती हासिल होगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी प्लांट का संगे बुनियाद रखेंगे, जिसमें रोजाना 3 लाख लीटर दूध की सलाहियत होगी। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। 8:45 और 57 सेकंड म्यूजिकल दिल्ली की शुरुआत जनाब मोहसिन भोपाली की गजल के चंद अशार के साथ कि यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग ज्यादा जिया नहीं करते। जो आने वाले हैं मौसम उन्हें शुमार में रख, जो आने वाले हैं मौसम उन्हें शुमार में रख, जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते। न देखा जान के उसने कोई सबब होगा, न देखा जान के उसने कोई सबब होगा, इसी ख्याल से हम दिल बुरा नहीं करते। वो मिल गया है तो क्या किस्साए फिराक कहें, खुशी के लम्हों को यूं बेमजा नहीं करते। हमारे कत्ल पे मोहसिन ये पेशोपस कैसी, हम ऐसे लोग तलब खूं वहा नहीं करते। मैं हूं सुनीता, ये है म्यूजिकल दिल लगी।

0: कुमार लता मंगेशकर जी का डुएट फिल्म दूसरा आदमी से मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा, संगीतकार थे राजेश रोशन। वैसे मौसम सच में बहुत हसीन होता जा रहा है, अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे इस खूबसूरत मौसम के साथ हम बढ़ रहे हैं त्योहारों के मौसम की तरफ। तो मौसम की इस खुशबू का मजा लेते रहे FM गोल्ड के साथ।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

प्यार के इसी नोट पर सुनीता लेगी अब आपसे इजाजत। अगले सैटरडे तक आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जज्बा है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार

0: संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
1: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण GEC-3 को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीनों में 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। जापान के आईजी नागोया में एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहत ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर बना हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has called for WTO complaint approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
1: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
3: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है, हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फोन हमेशा इम्पोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं। तो एमएसएमईज हैं तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रांग करें। तो चाहे आप डिजाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिजाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के, जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में, यूपी फॉर एग्जाम्पल, लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगते हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है,

0: पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा। और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहाँ बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक न केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज। तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में। और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है। और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग गिन के अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहां पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहां कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था। आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया। मैं नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है। और वो युवा आज जो जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना। तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है, कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल में एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं। और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए, तो बड़ा आसान है, मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी। और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको, निहारिका, आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है। और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
2: जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम

0: सिस्टम है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 200,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम एक चली है मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है लोग हैं इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और चाहे गांव में आप चाहे विलेजेस में उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल एक पोटैटो है, अगर आप आलू का अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा, बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव-गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरह माइग्रेट ना करना पड़े, वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के रोड्स को बना के और जो ट्रेन से और शिपिंग सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके के देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल कंपेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है, तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें।
2: देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है। एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको दो शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है। और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है जब हम जीडीपी की बात करते हैं जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई की ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें। तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है। और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखी ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है। आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल, और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के जमाने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है आज के जमाने में? सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों हैं, और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
0: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन। क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट आज ये हुआ है। कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी ले लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है। तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना रखा है। तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है
1: जी।
0: इस युग में आज हम जी रहे हैं, तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए। और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसकी अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है, जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज देश हमारे जुड़ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफी साइंस है, मैथ्स है, एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे, तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के बराबर का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है, और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि TSMC जो ताइवान की कंपनी है जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है। उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट हैं, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर। अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए। तो मुझे प्रधानमंत्री जी का बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन्स के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें, हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी।
1: बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में। जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस में हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
2: बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोकल की, ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में, मशीन गन्स में लगते थे, वो भी बाहर से आया करते थे, और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेकर आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है, उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे, उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजिशन में, वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है, तो डिफेंस में दूसरे नंबर पे डालूंगा, जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही हैं, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका, ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
0: देखिए डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे कई आप देश आज चाहे आप चांद में देख लीजिए, वहां जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिस

0: कि डिफेंस में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम वो हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाल्स हैं ये सब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
1: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें, या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन।
0: जी
1: अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है,
0: जी
1: लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
0: देखिए, वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहां पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती हैं, वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफर करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
1: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के
2: मुझे
1: बारे
2: मुझे
1: में?
2: लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है वहां जाके जब ट्रेन में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन भारत में ऑपरेशनल हैं, और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है, और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसमें स्पीड आई है, कंफर्ट आया है, क्लेनलीनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे, उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका, मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के एमएसएमईज के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एमएसएमईज की भी बहुत अहम भूमिका है।
0: बिल्कुल। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड एमएसएमईज हुआ करते थे, करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड एमएसएमईज हमारे देश में हैं।
1: जी,
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया, और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक एमएसएमईज को पूरा उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से एमएसएमईज को सपोर्ट किया, उसके बाद जो एमएसएमईज की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन उसमें एमएसएमईज की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो हमारे देश के एमएसएमईज उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है, और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
2: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है, कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है, और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है, हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, ये तो मैं, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग या भारत में जीडीपी में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां दूं। बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात

0: हर का तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे, पर मुख्य मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका
1: जी किया। बिल्कुल बिल्कुल।
2: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत। जो नया भारत आज भारत की पहचान है, भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं, और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रेटजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की। और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल, यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया,
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी चीयरफुल रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज़।

लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट मॉर्निंग शो म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ बातों की चाशनी होगी, यादों के पन्ने होंगे और होंगे कुछ एनर्जेटिक गाने जो इस खूबसूरत सुबह में चार चांद लगा देंगे। तो बस अपनी चाय या कॉफी का कप थामे रखिए, चेहरे पर लाइए एक प्यारी सी स्माइल और दिन की शुरुआत कीजिए इस ट्रैक के साथ।

अच्छा ठीक ऐसे ही मुलाकात और बात हो नहीं जाती, की जाती है। अक्टूबर महीने की हो चुकी है शुरुआत और हवा में जो हल्की सी ठंडक खुलने लगी है ना, ये अपने आप में मैजिकल है। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उन चीजों के लिए उदास हो जाते हैं जो हमें नहीं मिली? मशहूर शायर निदा फाजली साहब इस पर कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता।

इसलिए जो नहीं है उसका अफसोस करने के बजाय जो हमारे पास है उसका जश्न मनाइए। छोटी छोटी कामयाबियों को कीजिए सेलिब्रेट और बड़ी कामयाबियों के लिए कीजिए मेहनत। और साथ में याद रखिए अल्लामा इकबाल का ये मशहूर शेर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।

यूनिटी यानी एकता और उर्दू में इत्तेहाद। आज के दिन का इस शब्द के साथ बड़ा गहरा नाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि आज ही के दिन साल 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हुए थे। दशकों तक जो दीवार लोगों के दिलों और जमीनों को बांट रही थी वो आखिरकार आज ही के दिन गिरा दी गई थी। और भारत में आज का दिन साल 1992 में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ था जब हमारे दिग्गज खिलाड़ी गीत सेठी ने वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और पूरी दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाई। और हाँ, सिनेमा लवर्स के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। 1949 में आज ही के दिन जन्म हुआ था बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता साहब का, जिन्होंने बॉर्डर और एलओसी कारगिल जैसी शानदार और रोंगटे खड़ी कर देने वाली फिल्में हमें दी। और स्पेशली बॉर्डर का ये वाला गाना, उफ, शायद ही कोई होगा जिसे इस गाने से

देखिए जनाब, बात कुछ ऐसी है कि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से ही होती है ना। और बिल्कुल इसी हौसले और नई उड़ान की कहानी लिख रहे हैं हम और हमारा देश भारत। तकनीक और इनोवेशन की दुनिया में उठाया है हमने वो कदम जो हमारे कल को पूरी तरह बदल कर रख देगा और जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। साल 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये मिशन सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी नींव है। आसान शब्दों में समझाऊं तो हम सब जो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो लैपटॉप चला रहे हैं या फिर जो स्मार्ट कारें आज सड़कों पर दौड़ रही हैं, इन सब की जान होती है एक छोटी सी चिप जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब तक हम इन चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन इस मिशन के तहत अब भारत खुद इन सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। ये नए दौर का वो इंकलाब है जो यकीनन हमें दुनिया में सबसे आगे ले जाकर खड़ा करेगा। इसलिए बदलाव से डरना नहीं है बल्कि नई तकनीक को गले लगाना है और जुड़े रहना है एफएम गोल्ड के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अब ठीक 10:30 पर विद दिल का मेल बॉक्स। उससे पहले सुनिएगा देश और दुनिया से जुड़े समाचार हिंदी और अंग्रेजी में, और उससे भी पहले ये वाला गाना विद किशोर दा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत

0: जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के 3रे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: जापान के आईची नायोगया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनु कटारिया। India has called for WTO complaint approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. We have a report.
3: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor,

0: भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संगठन के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि ज्यादा उत्पादन अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या तब है जब छिपी हुई सरकारी मदद या सब्सिडी के कारण किसी देश में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन और सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में फैलाना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर WTA के नियमों से बाहर जाकर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो अर्केंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीनों में 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने रोबोटिक सर्जरी समिति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोकाइनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नौसेना कमांडर सम्मेलन कल नई दिल्ली में

0: दुबई उड़ान की घटना से जुड़े हालात की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले इस घटना को बहुत आसान न समझा जाए, न ही कोई अंदाजा लगाया जाए या जल्दबाजी में कोई नतीजा निकाला जाए। साथ ही घटना के दौरान कैप्टन स्मिथ मच्छर की हिम्मत और तुरंत की गई कार्रवाई की पूरे यूएई में तारीफ हो रही है। एशियाई खेलों में प्रणवी उर्स ने गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। प्रणवी का ये पदक 2002 में शिव कपूर के पुरुषों के व्यक्तिगत पदक के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक है। और एशियाई खेलों की अन्य खबरों के साथ हैं फरहत नाज।
1: जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहोद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वर्ष 28 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उधर कुश्ती में सुजीत कलकल ने पुरुषों के 65 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग में परवीन हुडा, अंकुश पंघाल और लवलीना बोरगोहन ने भी स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। भारत के अब कुल 77 पदक हो गए हैं, जिनमें 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट फाइनल में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 43 रन बना लिए थे। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील आज शाम कोलकाता में भारत के साथ मैत्री मैच खेलेगी। ये मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच को लेकर फुटबॉल प्रशंसकों में काफी उत्साह है। फ्रांस में शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने 700 से अधिक स्कूलों को बाधित कर दिया और इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। सड़कों पर आगजनी की गई। छात्रों और अन्य लोगों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी, खचाखच भरे क्लासरूम और जर्जर इमारतों का विरोध किया। ये प्रदर्शन पिछले सप्ताह राजधानी पेरिस में शुरू हुए थे और अब पूरे देश में फैल गए हैं। कई फ्रांसीसी यूनियनों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत का वैश्विक नेतृत्व मजबूत होगा। जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मैच जारी और भारत की प्रणवी उर्स ने गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कुछ अनकहे अल्फाज, कुछ अनसुने किस्से आपके खतों में धड़कते हैं, आपकी जिंदगी के हिस्से।

और उन्हीं हिस्सों में अपनी हिस्सेदारी निभाने आ गई हूँ मैं नाज, एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ दिल का मेल बॉक्स। तो आप भी नहीं कीजिएगा देर, जल्दी से लिख भेजिएगा ईमेल fmgoldairdelhi@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजिएगा 9868686753 पर। अपना नाम, अपने शहर का नाम और उस गाने के बोल जो आप आज सुनना चाहते हैं, ये तो आप लिखेंगे ही, लेकिन साथ में कुछ शेरो शायरी या कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसी बात जो आप सबसे बांटना चाहते हैं, वो भी जरूर जरूर लिख भेजिएगा। और फिलहाल मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा ये पहला गाना जिसकी फरमाइश किसने भेजी है, ये भी सुन लीजिए। सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने इस गाने की फरमाइश की है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से, बहुत ही खूबसूरत गाना है।

जिहाल मिस्किन मकुन बरंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। हालांकि गाने में मस्किन सुनाई दे रहा होगा आपको, जो कि लय और धुन के हिसाब से यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा इस गाने के बारे में जरूर आपको बताऊंगी। जिहाल मिस्किन मतलब गरीब बेचारा दिल, उसकी हालत। मकुन मत करो, बरंजिश नाराजगी गुस्सा दुश्मनी, बेहाल हिजरा जुदाई हिज्र और उसकी वजह से बुरी हालत। बेचारा दिल जो कि पहले से ही टूटा और सताया हुआ है। तो गुलजार साहब यहां कह रहे हैं कि ये बेचारा दिल है, इसे ना तोड़ो। शायर अपने महबूब से मिन्नत कर रहा है कि अपनी बेरुखी और नाराजगी से उसके पहले से ही जुदाई के दर्द में टूटे हुए लाचार दिल को और ना तड़पाएं।

और देखिए भाई, हम किसी गीत की फरमाइश नहीं लिख रहे हैं, बस हमारा नाम पढ़ दीजिएगा, यही काफी है। शबाना भारती, नवाब अहमद भारती, सूफिया नवाब और अरहान का ये मैसेज आया है बल्ली मारन से। उम्मीद है आप खुश हो गए होंगे और आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी। एसपी गोयल जी भी हमें सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी बात इन्होंने हमें लिखकर भेजी है अभी अभी कि स्नेह माने प्यार जगत को अपना बनाता, घृणा यानी नफरत हेट, घृणा अपनों में भेद बढ़ाता। तो लिखा है कि स्नेह जगत को अपना बनाता, घृणा अपनों में भेद बढ़ाता। स्नेह अमृत की पावन धारा, घृणा बनाती मन को अंगारा। स्नेह झुकाता नफरत का सर, घृणा बनाती खुशियां खंडहर। स्नेह चुनो तो जीवन महके, घृणा राह में राही बहके। क्या बात है, बड़ी अच्छी तुलना और बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है। सत प्रकाश सनोठिया जी इनका नाम है और रोहिणी से ये मैसेज आया है। और इसी के साथ अहमद फूल वाले जी का भी मैसेज आ गया है, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से आया है। दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी और आशु अहमद भी इनके साथ शामिल हैं और अपना फरमाइशी गीत भी इन्होंने लिखकर भेज दिया है। बोधराज खोरवाल जी का मैसेज भी शामिल कर लेते हैं चलिए। और इन्होंने भी बड़े ही खूबसूरत गीत की हमें फरमाइश लिखकर भेजी है। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इनके साथ शामिल हैं और हमें इस वक्त सुन रहे हैं। गिरीश बाम जी का भी अभी मैसेज आया हुआ है और रिक्वेस्ट इन्होंने एक बड़े ही खूबसूरत गीत की भेजी है लिखकर, जिसे हम पूरा करने की जरूर जरूर जरूर कोशिश करेंगे। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं अंकित कांगड़ा जी का, हरियाणा से आया है। मोनी कांगड़ा, प्रिंस बॉट, सीताराम और साहिल इनके साथ शामिल हैं और इन्होंने भी अपना फरमाइशी गीत हमें लिखकर भेज दिया है। चलिए बिट्टू भाटिया जी का भी मैसेज पढ़ लेते हैं। झज्जर हरियाणा से आया है। रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया इनके साथ इस मैसेज में शामिल हैं। और इसी के साथ अगला व्हाट्सएप मैसेज अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, लालगिरी गोस्वामी जी का। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत गीत ये सुनना चाहते हैं और प्रोग्राम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये भी इन्होंने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। इसी के साथ अगला मैसेज जो मुझे नज़र आ रहा है, उसमें थोड़ी सी नाराज़गी भी नज़र आ रही है। बबलेश पवार जी का मैसेज है। डैनी पवार इसमें शामिल हैं और कौन कौन शामिल है, मनीष शामिल हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा शामिल है, रामदेवरा से दिनेश चौहान शामिल हैं और आप सभी का स्वागत है एफएम गोल्ड पर और बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम कह रहे हैं इस मैसेज के लिए, साथ ही इस अच्छी सी बात के लिए जो आपने हमें लिख कर भेजी है कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, हार कर न बैठ ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। क्या बात है,

और चलिए फिर इसी के साथ एक और गाना सुन लिया जाए। फिल्म है जान तेरे नाम, कुमार सानू जी की आवाज है और बहुत ही प्यारा गाना है जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है दिग्दर्शन गौड़ ने। कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया, दर्शन भाई इनके

0: सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

उम्मीद की एक किरण अंधेरों को मिटा देती है, छोटी सी कोशिश भी राह नई बना देती है। हार से घबराकर कभी रुकना नहीं, क्योंकि मेहनत ही मंजिल की पहचान बना देती है। और ये 100% सही बात पते की बात लिखकर भेजी है हमें जगदीश चंद्र पांडे जी ने, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादराबाद हरिद्वार से। और इसी के साथ अगला मैसेज भारत भूषण जी का अंजू श्रीवास्तव।

दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरोशिन के साथ शामिल हैं। और वाइट फील्ड बेंगलुरु से भेजा है इन्होंने मैसेज और ये भी लिखा है कि लगता है मैडम नाज आज खफा हैं। चलिए छोड़िए, ये कौन सी पहली दफा है, क्या बात है, नाराजगी भी शायरी के अंदाज में, बहुत बढ़िया। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं, योगेश शर्मा जी का, फरीदाबाद से हमें सुन रहे हैं इस वक्त और कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं जिनके नाम है कुंजमणि प्रसाद, पंकज और कल्याण। हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्ते और सुनते रहिए, अपनी फरमाइश भेजते रहिए और अच्छी अच्छी बातें भी हमें लिखकर भेजते रहिए, मैं तो हाजिर हूँ ही पढ़ने के लिए। नेक्स्ट मैसेज आया है मॉडल टाउन बहादुरगढ़ हरियाणा से, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी नाइस गुड प्रोग्राम। और अनिल आनंद अरविंद चौधरी ने भेजा है ये मैसेज, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अगला मैसेज तुलसी मस्कीन साहब का गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आया है, वीना आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन इनके साथ शामिल है, चंडीगढ़ से शामिल है राहुल खुराना रचिता खुराना केशु और रिधान खुराना। और चलिए इसी के साथ अब अगला गाना भी सुन लेते हैं जिसकी फरमाइश हमें किसने भेजी है, महाराष्ट्र पुणे से आई है फरमाइश, सुनील गायकवाड़ सुषमा अनन्या राजीव इस गाने को सुनना चाहते हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी बात भी इन्होंने लिखकर भेजी है हमें कि जहां समर्पण हो वहां त्याग यानी सेक्रिफाइस बोझ नहीं रहता, बल्कि वही तो सफलता की कीमत

0: ये छांव है।
1: और चलिए अब जल्दी से कुछ और मैसेजेस भी मैं शामिल कर लेती हूँ जो लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। बजरंग लाल जी का मैसेज आया है फतेहाबाद हरियाणा से। पूनम, संदीप, पिंकी, गोपाल और चीकू इस वक्त हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु, अदनान, फैजान और आबाद ने भी मैसेज किया है। लिखा है कि प्यार कहो तो दो लफ्ज, सोचो तो गहरा सागर, मानो तो एक इबादत और डूबो तो जिंदगी। क्या बात है। जिंदगी जीने का हुनर उन फूलों से सीखो जो हजार कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। गंज डुंडवारा से भेजा ये मैसेज और एक बेहद ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश भी हमें लिखकर भेज दी है। और इसी के साथ अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं सुदर्शन मुखी जी का। अनीता, सिमरन हमें सुन रही हैं इनके साथ शांतिनगर सोनीपत से। इन्होंने मैसेज भेजा है और आज का विचार भी लिखकर भेजा है। जिंदगी में कभी भी किसी को दोष ना दे, अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं, यानी एक्सपीरियंस दे जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात। और इसी के साथ अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं सलीम अख्तर जी का। रेशमा बेगम अलीगढ़ से आया है मैसेज और लिखा है कि लगता है आज हमारा मैसेज शामिल नहीं होगा। हाजी ऐसे कैसे, देखिए शामिल तो हो गया। और अगला मैसेज भी शामिल हो रहा है राम नरेश चिक जी का है। रेखा, करण, अल्पेश, सृष्टि, संगम विहार, हनुमान मंदिर, दिल्ली से आया है ये मैसेज और ये भी एक बड़ा ही प्यारा गाना सुनना चाहते हैं। और चलिए अब ईमेल का भी रुख कर लेते हैं। ये तो बात हो गई व्हाट्सएप मैसेजेस की, वहाँ भी मैसेजेस का अंबार है। राजेंद्र कुमार जी का अभी अभी मैसेज आया है। राजेंद्र जटोलिया इनका पूरा नाम है, उषा जटोलिया इनके साथ शामिल है। दिल्ली नागलोई से इन्होंने हमें ईमेल किया है बस कुछ ही देर पहले। इसी के साथ अगला मैसेज ओम जी का शामिल कर रहे हैं। ओम बगड़िया इनका नाम है। क्रियांश, रजत और बेबी गरिमा इनके साथ शामिल है। और कहाँ से भेजा है मैसेज, पंजाब से भेजा है। गांव का नाम है बांडी वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और दोस्तों जिस तरह से घड़ी भाग रही है ना, वक्त बहुत कम बाकी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुछ और मैसेजेस भी मैं ज़रूर शामिल करूंगी। जॉन डिकेस्ट्रो साहब का मैसेज मुझे दिख गया है। रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो इनके साथ शामिल हैं और कह रहे हैं कि या तो हमारा गाना सुना दीजिए या फिर किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। तो जनाब सारे गीतों में आज आप शामिल हैं। जनकपुरी सहारनपुर से भेजा है मैसेज और हम कह रहे हैं आपको बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर नज़र घुमा रही हूँ मैं व्हाट्सएप पर। नरेंद्र जी का मुझे मैसेज नज़र आ गया है, कलानौर से आया है। नरेंद्र शर्मा इनका नाम है। किरण, नितिन और मयंक शर्मा इनके साथ शामिल हैं और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, मतलब कोई भी गीत चलेगा। क्या बात है, कोई भी गीत, क्या हर गीत सदाबहार है जी। ये FM गोल्ड है और यहाँ प्ले होने वाला हर गीत आपके दिल के तार छेड़ जाएगा, इस बात की गारंटी है। मोहम्मद फरमान भी हमें सुन रहे हैं। सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून इनके साथ शामिल हैं। मुरादाबाद से सुन रहे हैं हमें। ग्राम दूल्हापुर है और उत्तर प्रदेश है ये स्टेट जहां से इन्होंने हमें मैसेज किया है। चलिए अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं अब किसका, ईमेल शामिल कर लेते हैं चलिए। और राजेंद्र कुमार जी का तो हम मैसेज शामिल कर चुके हैं। एक तो समस्या ये है जनाब कि एक मैसेज से काम नहीं चलता है ना, कई मैसेजेस जब लगातार आ जाते हैं ना तो उसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन से नाम अभी शामिल नहीं हुए हैं और आप हो जाते हैं हमसे नाराज। बताइए क्या किया जाए। सलीम अख्तर जी का मैसेज आ गया है जिसे भी मैं शामिल कर चुकी हूँ, माफ कीजिएगा। और धर्मेंद्र छीपा जी का मैसेज मुझे नजर आ गया है, ये भी नाराज है, कह रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, आधे घंटे से कार्यक्रम सुन रहे हैं और बड़ा ही मुश्किल है इंतजार करना। आप क्या है ना, ना तो फरमाइश का गीत आप बजाएंगी ना ही मैसेज शामिल करेंगी, समय बहुत कीमती होता है। देखिए और समय बहुत कम है कार्यक्रम का, और हमारे पास भी समय कम है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं। अरे बाबा इतनी नाराजगी। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार इनके साथ शामिल हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, और मैंने देखिए पूरी कोशिश की है आपकी नाराजगी को दूर करने की। गीत मैं नहीं प्ले कर पाऊंगी, उसके लिए माफी मांग रही हूं, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बाकी है। एक फरमाइश जरूर पूरी होगी प्रोग्राम के खत्म होने से पहले, लेकिन आपके लिए अगली बार, ठीक है ना। चलिए अगला मैसेज जल्दी से पढ़ देती हूँ। मास्टर खिल्लू जी का है, और ये कहाँ से आया है? लखनऊ से आया है, उत्तर प्रदेश। बेगम इमराना नाज, नवाजिश, दानिश, अमन और राधा इसमें शामिल हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ईमेल भेजने के लिए। और इसी के साथ चलिए धर्मपाल जी का भी मैसेज मैंने खोल लिया है। बबलू कश्यप जी इनके साथ शामिल है, मंगोलपुरी से आया है ये मैसेज। और दोस्तों चलिए आप सुन लेते हैं अगला गाना, वरना जिनकी ये फरमाइश है वो भी हमसे नाराज हो जाएंगे। कमल बालूजा, मधु सागर, मजनू का टिल्ला से, सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक ने ये गाना सुनना चाहा है, हमें फरमाइश लिखकर भेजी है। बहुत ही प्यारा गाना है, किशोरदा की आवाज है। सुनिए, इंजॉय कीजिए और बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। मैं मिलूंगी आपसे ठीक 11:10।

और सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या ने भी इसी गाने की फरमाइश लिखकर भेजी है। गाओ खारिया ढाणी से, सिरसा हरियाणा से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की सहायता से जरूरत से अधिक उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के अंतर्गत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह

0: को तुर्की से भारत वापस लाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब ब्रिक के नाम से तुर्की की नागरिकता लेकर अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित करवाया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रणवी ने देश के लिए गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वे भारतीय महिला भी बन गई हैं। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहोद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वर्ष 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। उधर कुश्ती में सुजीत कलकल ने पुरुषों के 65 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और लवलीना बोरगोहेन ने भी स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वहीं क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। भारत पदक तालिका में 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 77 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah has said that the government has achieved a historic milestone by securing the deportation of hardened narco-trafficking kingpin Navpreet Singh from Turkey. In a social media post, Mr. Shah said that Navpreet Singh continued to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nawab Virk. Congratulating all the agencies for the success, he said that Prime Minister Narendra Modi's government is committed to destroying every narco cartel before December 2029. Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policymakers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves

सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में हम भी कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से उसकी फूल झड़ते हैं। अगर है ऐसा ही तो चलो उससे कुछ बात

और इसी ख्याल के साथ कीजिए स्वीकार एक बार फिर मेरा यानी नाज का नमस्कार। समय हो चला है 11:11 और 50 सेकंड और जैसा कि है दस्तूर, प्रोग्राम शुरू हो चुका है तस्वीर, जहां आज चले चलते हैं एक ऐसे शहर जिसे जाना जाता है न सिर्फ मोक्ष नगरी के रूप में बल्कि ज्ञान नगरी, विष्णु नगरी, गायत्री क्षेत्र, विष्णु नगरी या फिर पितृ तीर्थ के नाम से भी ये जगह जानी जाती है। हर नाम से जुड़ी है एक अलग कहानी जिसे जानेंगे बारी बारी। फिलहाल जो नाम सबसे ज्यादा मशहूर है और इस जगह की पहचान है वो है गया जी, बिहार राज्य का बेहद पवित्र और ऐतिहासिक शहर जो कि फल्गु नदी के तट पर मौजूद है। और हिंदू धर्म में जिसकी मान्यता मोक्ष और पिंडदान की नगरी के रूप में है, पलटेंगे और पढ़ेंगे भी इस शहर की खासियतों से भरा हर पन्ना। पर अभी सुनेंगे ये खूबसूरत सा गाना मन्ना डे जी की आवाज में। संगीत है शंकर जयकिशन का, बोल है शैलेंद्र के और फिल्म है तीसरी।

किसी ने क्या खूब कहा है ना कि सुकून की तलाश में कहां कहां भटका, फल्गु के किनारे बैठा तो जैसे खुद से मिल गया। माने चैन और सुकून अगर आप ढूंढ रहे हैं तो बिना देर किए गया जी आइए, फल्गु नदी के घाटों पर बैठिए, क्योंकि जो इत्मीनान यहां पर है ना वो और कहीं नहीं है, और यहां पहुंचना भी बहुत आसान है। फ्लाइट से सीधा गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, या फिर ट्रेन से अगर आप आते हैं तो गया जंक्शन पर ट्रेन का साथ छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर रोड ट्रिप का है प्लान आपका तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का शानदार रास्ता आपको बहुत ही रास आने वाला है। तीन तरफ से छोटी छोटी खूबसूरत

0: और दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और इन दिनों गया जी में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला यानी पितृपक्ष मेला पूरे शबाब पर है। देश और दुनिया से लाखों लोग यहाँ अपने पितरों को मोक्ष दिलाने फल्गु नदी में पवित्र स्नान और पिंड दान करने आते हैं। आज यानी 3 अक्टूबर की इस विशेष तिथि और शाही स्नान को लेकर शहर की तैयारियां कैसी हैं, क्या कुछ खास इंतजाम है यहाँ, आइए जानते हैं गया जी के वर्तमान नगर आयुक्त डॉक्टर गगन कुमार जी से।
1: नगर आयुक्त गया जी की मोक्ष दायनी धरती पर पितृपक्ष मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 25 सितंबर 2026 से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस महासंगम के अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, अध्यात्म को पूर्ण रूप से फलीभूत करने के लिए जिन चीजों की व्यवस्थाएं हैं वो सब गया जी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 54 सेक्टरों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक जोन के लिए एक वार्ड सहायक, एक निगरानी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी, पर्यवेक्षक आदि की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुल मिलाकर लगभग 2000 से अधिक सफाई कर्मी पूरे क्षेत्र में प्रतिनियुक्त है। पहली बार नगर निगम क्षेत्र में 16 वाटर एटीएम लगाया गया है ताकि यात्रियों को पेयजल, शुद्ध पेयजल हमेशा उपलब्ध होता रहे। स्वच्छता के दृष्टिकोण से हमारे पास पिंक टॉयलेट, नॉर्मल टॉयलेट्स अवेलेबल है जिसकी प्रतिनियुक्ति की जाती है। आवासन स्थलों पर जहां यात्री ठहरते हैं, पुलिस बल ठहरता है, वहां पर हमारे सफाई कर्मी प्रतिनियुक्त होते हैं। प्रकाश के दृष्टिकोण से पूर्व से ही मेला क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट, मिनी हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापित है और उनको लगातार देखभाल उनकी की जाती है। इसके अतिरिक्त 4000 से अधिक स्ट्रीट लाइट भी अधिष्ठापित किया गया है। इस बार पिंडदानियों के लिए, यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए विशेष रूप से वाटर लेजर लाइट को भी अधिष्ठापित किया गया जो सायंकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच गया जी के इतिहास और इसके पौराणिक महत्व को लेकर के एक फिल्मांकन किया जाता है, फिल्म दिखाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग उसे लाभान्वित हो रहे हैं। पितृपक्ष मेला क्षेत्र में ही एक सेल्फी पॉइंट जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक पदचिन्ह को बनाया गया है जो कहा जाता है कि गयासुर के छाती पर भगवान विष्णु का दाहिना पांव रखा गया था, उस दाहिने

0: के चिन्ह को बड़े भव्य तरीके से बनाया गया, जहाँ पर लोग आकर के, और वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। पितृ वाटिका का भी स्थापन किया गया है। एक पेड़ पितरों के नाम से एक योजना है, जिसके अंतर्गत जो श्रद्धालु हैं अपने पितरों के नाम से एक वृक्ष का रोपण करते हैं, जिसका देखभाल किया जाएगा। गया जी नगर निगम सुसज्जित है, तैयार है, सज्ज है और कृत संकल्पित है। हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए निर्भीक होकर गया जी पधारें। हम आपके स्वागत के लिए सदैव तैयार हैं।
1: तो भाई प्रशासन तो पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन खुद से भी कई बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। मसलन खाने पीने से जुड़ी हाइजीन का ध्यान रखना है, जरूरी दवाइयां जरूर साथ रखनी है, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने हैं और कीमती सामान आपके पास ना हो इस दौरान, ये ही बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, प्रशासन द्वारा तय की गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाई गई हैं, है ना। और फिलहाल क्या करना है, एंजॉय करना है मेरे साथ ये अगला ट्रैक।

सफर जारी है मोक्ष नगरी गया जी का, जहां आने के बाद आप विष्णु पद मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। काले कसौटी पत्थर से बना ये विशाल और भव्य मंदिर 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहां मौजूद भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे चरण चिन्ह, जो एक ठोस चट्टान पर उभरे हुए हैं। फिर जब आप यहाँ के गर्भ गृह में खड़े होते हैं तो वहां जो शांति और डिवाइन एनर्जी आप महसूस करते हैं ना, उसके बारे में मैं क्या ही कहूं, कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जहां बोधि वृक्ष की छांव में मिटा दुनिया का अंधकार, बुद्ध की उस पावन धरा को करते हुए नमस्कार। चलिए अब ये रंग भी जान लेते हैं जिसकी अहमियत गया जी की तस्वीर में बहुत ज्यादा है।

गया जी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुंचेंगे बोध गया, जो कि पावन धरती है जहां बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां का महाबोधि मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहां की साफ सुथरी सड़कों पर जब आप घूमेंगे और अलग अलग देशों की मोनेस्ट्रीज यानी मठों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपको पूरी दुनिया की शांति मिल गई हो और यहीं आकर सिमट गई हो। और बिल्कुल यही वाली फीलिंग आती है मुझे जब मैं सुनती हूं आंखें बंद करके ये वाला गाना।

हो रहा हो और इस बीच पेट पूजा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और बात जब गया जी के जायके की हो तो सब कुछ बहुत अलग और टेस्टी आपको मिलने वाला है। मीठे के शौकीन है तो सर्दियों के दिनों में रामना रोड का कुरकुरा, तिलकुट, देसी घी में सना हुआ अनरसा और रामदाने की लाई जरूर टेस्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर कुछ चटपटा खाने का मन करे आपका तो यहाँ के चौक चौराहों पर मिलने वाला ऑथेंटिक लिट्टी चोखा और खस्तेदार कचौड़ी जलेबी आपका दिन बना देंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। साची कहूं तो घूमने फिरने की बात हो या फिर खाने पीने की, बिहार और फिर यहाँ के गया जी में हर तरफ बहार ही बहार है।

0: तो कुल मिलाकर गया जी शहर में आपको मिलेगा एक बहुत ही खास तरह का अपनापन। यहाँ की लोकल बोली मगही इतनी मीठी और प्यारी है कि जब भी कोई प्यार से पूछता है, का हाल बा भैया, सब ठीक ठाक ना, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। प्राचीन मगध साम्राज्य के दिल में बसा ये शहर अपने अंदर ज्ञान, धर्म और इतिहास की अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। और जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ के लोगों का जमीन से जुड़ा होना।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा

और अगर आपको लोकल चीजें एक्सप्लोर करने और शॉपिंग का भी शौक है तो इस मामले में भी गया जी आपको निराश नहीं करेगा। जीबी रोड और धामी टोला के बाजारों में आप आराम से अपना वक्त बिता सकते हैं, जहां से आप पत्थर कट्टी गांव के कारीगरों द्वारा बनाई गई खूबसूरत बुद्ध भगवान की मूर्तियां और काले पत्थर के शानदार शोपीस खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के हैंडलूम और सूती कपड़े भी बहुत मशहूर हैं। तो वापसी के लिए बैग में थोड़ी एक्स्ट्रा जगह जरूर बचा कर रखिएगा। और फिलहाल जरा झूम के सुनिएगा ये अगला वाला गाना।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना।

0: संवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ संवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ संवरिया।
2: तो सवरिया और गुजरिया दोनों ही इसमें किशोरदा हैं, यानी मेल और फीमेल वॉइसेस जो अभी आपने सुनी इस गाने में, दोनों ही किशोरदा ने दी थी। बहुत ही कमाल का गाना है ये, और फिल्म थी हाफ टिकट, साल 1962 में आई थी। बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत था सलिल चौधरी का, और कमाल, जबरदस्त कमाल कर दिखाया था किशोरदा ने। चलिए वापस लौटते हैं गया जी, जहाँ जैसे जैसे शाम ढलेगी तो फल्गु नदी के घाटों पर दीपकों की झिलमिलाहट आपके सामने।

जादुई नजारा पेश करेगी। पितृपक्ष के इस मौसम में एक तरफ मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं यहाँ, तो दूसरी तरफ नदी का शांत किनारा होता है, और इस सब के बीच आप पाते हैं एक अलग सा सुकून। सच कहूं तो गया जी सिर्फ एक शहर है ही नहीं, बल्कि ये अतीत और आज के बीच का वो पुल है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। तो जुड़े रहिए आप भी अपने जड़ों से भी और एफएम गोल्ड से भी। फिलहाल मुझे यानी नाज को लेनी होगी आपसे विदा, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द ढेर सारी बातों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज विद प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार

0: कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policy makers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President noted that India's ongoing economic reforms are rooted in the country's democratic traditions and the process of consensus building. He said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
1: Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav will attend the Gaur Palak Sammelan in Bhopal. Mr. Shah will also address the gathering. A state-level Gaur Palak Sammelan is being held at the Bhel Dashehra Maidan in Bhopal. Mr. Shah will honour women cattle farmers who have done good work in the field of animal husbandry. He will also distribute approval letters to beneficiaries of Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana. The United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader in solar energy. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that chartered accountants have a pivotal role in strengthening India-US economic partnership by helping businesses navigate cross-border taxation, regulatory compliance and financial governance while making Indian enterprises investment ready for global capital. He said this during an interaction with the leadership and members of the Institute of Chartered Accountants of India from Chicago, Michigan and Ohio chapters. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, expanding opportunities in the India-US economic partnership were deliberated. Five Indian nationals were rescued after a Kuwait-flagged tanker was struck by a projectile in the Strait of Hormuz. The Indian embassy in Oman said in a post on X today that it coordinated the rescue of the five Indians on board the MT Kazima 3, who were safely brought ashore. The mission thanked Omani authorities for their continued support and assistance during the rescue operation. An earthquake measuring 4.5 on the Richter scale was recorded at around 9:43 a.m. today in Pangra Shinde area of Vasmat Taluka in Hingoli district. According to preliminary information, the first tremor measuring 3.3 magnitude was recorded at around 7:47 a.m. A stronger tremor of 4.5 magnitude followed at 9:43 a.m., after which a series of smaller tremors were reported. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh. The weather agency has predicted thunderstorm accompanied with lightning over Assam, Meghalaya, Nagaland and Tripura. In Asian Games cricket, India set a 212-run target against Pakistan in the gold medal clash at Nishin, Japan. In reply, Pakistan were 23-0 in 2.2 overs when reports last came in. Earlier, India posted a strong 211-6 in their 20 overs after winning the toss and opting to bat first. In men's ODI cricket, India will look to complete a series whitewash against the West Indies when the two sides meet in the third ODI at Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium in New Chandigarh at 2 p.m. India lead the three-match series 2-0 after comfortable wins in the first two games. And that is the end of this news bulletin.

0: घर आंगन
1: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
2: मंजुला का प्यार भरा
1: नमस्कार।
2: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: बिल्कुल। और देखो मंजुला, सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, क्योंकि सकारात्मकता हमें उस ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति से भर देती है जो जीवन के हर पथ पर हमें आगे बढ़ाता है। तो इसी विचार के साथ कि हम जीवन में हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और जीवन के हर पड़ाव को सहजता से पार करते चलेंगे।
2: बहुत ही खूबसूरत बात। और प्रतिभा, आज है जितिया पर्व, माँ के प्रेम, त्याग और संतान की लंबी उम्र की कामना का पर्व। कहते हैं माँ की ममता से बड़ा कोई आशीर्वाद।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी आराधना।
1: और प्रतिभा कुछ रिकॉर्ड समय नहीं बताते, वे बताते हैं कि एक पीढ़ी ने जहां अपनी सीमा खींची थी, अगली पीढ़ी ने वहीं से दौड़ना शुरू किया। और 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, भारत की पीटी उषा ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 55.42 सेकेंड का समय दर्ज किया।
0: और फिर इस जो ये आंकड़ा था सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं रहा, भारतीय एथलेटिक्स की एक ऐसी दीवार बन गया जिसे अगली कई पीढ़ियां छूती रहीं लेकिन पार नहीं कर पाई। फिर आई कोयंबटूर की विद्या रामराज,
1: और 2023 के एशियन गेम्स में उन्होंने 55.42 सेकंड का समय निकालकर पीटी उषा के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन शायद बराबरी उनकी मंजिल नहीं थी।
0: 2026 के एशियन गेम्स में नागोया में विद्या ने वही दौड़ फिर से दौड़ी और इस बार घड़ी रुकी 54.75 सेकंड पर,
1: यानी 42 साल पुराने रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड से

0: चक दे इंडिया भी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आवाज थी हेमा सरदेसाई की।
1: और प्रतिभा, कभी सोचा है यात्रा से लौटकर हम वही इंसान क्यों नहीं रहते जो घर से निकले थे? दरअसल यात्रा सिर्फ नए शहर, पहाड़, समुद्र या खूबसूरत नजारे देखने का नाम नहीं है दोस्तों। यात्रा हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारा व्यक्तित्व भी बदलती है। हर यात्रा शुरुआत होती है जिज्ञासा से। मन में सवाल उठता है, आखिर उस पहाड़ के पार क्या है, उस शहर के लोग कैसे रहते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली कैसी है। यही जिज्ञासा हमें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाती है।
0: बिल्कुल। और देखो, फिर आता है रोमांच, अनजान रास्ते, अचानक बदलता मौसम और नई भाषा और कभी कभी मुश्किल परिस्थितियां। यही हम सीखते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। यात्रा हमें डर से ज्यादा साहस पर भरोसा करना सिखाती है।
1: और धीरे धीरे यात्रा शौक से जुनून बन जाती है। अब सिर्फ जगह देखना पर्याप्त नहीं लगता, हम उसे समझना चाहते हैं, स्थानीय लोगों से मिलना, उनका

0: आना चखना, उनकी कहानियां सुनना, उनकी संस्कृति को महसूस करना, और यही यात्रा का असली आनंद है।
1: और फिर बनता है जुड़ाव,
0: कनेक्शन,
1: है ना। और अजनबी लोग दोस्त बन जाते हैं, अलग संस्कृतियां अपनी सी लगने लगती हैं, और हमें एहसास होता है कि दुनिया भले ही अलग अलग दिखती हो, इंसानी भावनाएं लगभग एक जैसी हैं।
0: यात्रा हमें भीतर से गहरा भी बनाती है। हम अपनी सुविधाओं, पूर्वाग्रहों और छोटी छोटी शिकायतों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। हमें समझ आता है कि दुनिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं बड़ी है।
1: और आखिर में आता है सबसे खूबसूरत पड़ाव, परिवर्तन। यात्रा से बिल्कुल यात्रा से लौटकर हमारा सामान भले ही वही हो, लेकिन हमारी सोच बदल चुकी होती है। हम थोड़ा अधिक आत्मनिर्भर, थोड़ा अधिक सहनशील, थोड़ा अधिक आत्मविश्वासी और सबसे बढ़कर थोड़ा बेहतर इंसान बन चुके होते हैं।
0: क्या बात है। तो अगली बार जब मौका मिले, सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए नहीं, खुद को थोड़ा और जानने के लिए भी यात्रा पर निकल पड़िए।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी अभिलाषा। और प्रतिभा त्योहारों का मौसम है तो साड़ी के साथ इस बार जरा आभूषणों का अंदाज भी बदलिए, क्योंकि हर साड़ी के साथ सोने का हार ही

0: जरूरी नहीं है, भारत के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला को मिलाकर भी बेहद खूबसूरत आपका लुक तैयार हो सकता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला तुमने। जैसे कलमकारी साड़ी की बात करें तो इसके साथ दक्षिण भारत के टेंपल ज्वेलरी, लक्ष्मी हार, पारंपरिक झुमके या पुराने सोने जैसी नक्काशी वाले गहने, अजरक के साथ, हाँ अजरक के साथ चांदी का बड़ा हार गले में पहने और बड़े चांदी के झुमके या जनजातीय शैली के आभूषण बहुत सुंदर लगेंगे।
0: बिल्कुल सही। और कांथा के साथ बंगाल की तारकशी, डोकरा आभूषण, बनारसी के साथ कुंदन, जड़ाऊ, पोलकी या मीनाकारी के आभूषण बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर साड़ी बहुत हेवी है तो आभूषणों में से किसी एक को हाईलाइट कीजिए।
1: और देखो चिकनकारी की बात करें तो चिकनकारी की जो साड़ी होती है उसके साथ मोती, नाजुक कुंदन या छोटे पारंपरिक झुमके बेहद सलीकेदार रूप
0: आपको मतलब देंगे,
1: बिल्कुल हाँ। देंगे है ना। और पैठनी के साथ ठुसी, कोल्हापुरी साज या पारंपरिक नथ और आपका पूरा रूप जो है वो महाराष्ट्र की खूबसूरत झलक बन जाएगा।
0: हाँ, और बंधनी या लहरिया के साथ राजस्थानी बोरला, लाख की चूड़ियां, मीनाकारी के आभूषण उसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। संबलपुरी के साथ ओडिशा की तारकशी वाले चांदी के ज्वेलरी और कांजीवरम के साथ टेम्पल ज्वेलरी बहुत ही अच्छे लगेंगे।
1: और देखो एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगी कि आभूषण और साड़ी का बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी नहीं है, है ना। और कभी कभी अलग अलग राज्यों की दो कलाएं जब साथ आती हैं तो एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रूप बनता है।
0: बिल्कुल। तो इस फेस्टिवल आप प्रतिभा के इस टिप को जरूर याद रखिए। तो इस त्योहार सिर्फ सजिए नहीं, भारत की कला पहनिए, भारत की कारीगरी पहनिए और हमारे कारीगरों के मेहनत को भी अपने उत्सव का हिस्सा बनाइए।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म अभिमान से।
1: और देखो मंजुला, अब बात करते हैं शुरू से अपनी पहचान बनाने वाली एक प्रेरक आवाज की। जी हाँ, वाइकोम विजय लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। केरल की रहने वाली वाइकोम विजय लक्ष्मी जन्म से दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें देश भर में एक नई पहचान दिलाई है।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत सीखना शुरू किया और गायन के साथ साथ वीणा वादन में भी दक्षता हासिल की। वो गायत्री वीणा नामक एक दुर्लभ वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है।
1: मलयालम सहित कई भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी विजय लक्ष्मी को उनके संगीत के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। और विजय लक्ष्मी को मंजुला देखो हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और उन्हें ये सम्मान मलयालम फिल्म के गीत के लिए मिला है।
0: और उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, आत्मविश्वास और संगीत के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण मानी जाती है। उनकी कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें अपनी कमियों पर नहीं अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने हुनर और उसको अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि आत्मविश्वास, मेहनत और अपने हुनर पर विश्वास हो तो हर चुनौती को पार कर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

0: अभी हम सुन रहे थे वाणी जयराम को फिल्म गुड्डी से।
1: और मंजुला देखो, हमारे देश के पास अपनी एक विरासत है और ये विरासत ना जाने कितनी कलाओं, परंपरा, संस्कृति और रिवाजों का बेजोड़ संगम है। और देखो, जब हम बात कला की करते हैं तो हर राज्य, हर क्षेत्र किसी ना किसी कला को संजोए हुए है।
0: बिल्कुल सही। और ऐसी ही एक प्राचीन हस्तशिल्प कला है बंगाल बाटिक। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को बाटिक कला का मुख्य केंद्र माना जाता है।
1: और देखो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस कला को इंडोनेशिया से भारत लेकर आए थे। इसमें कपड़ों के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता वहां पिघला हुआ मोम लगाया जाता है और इसके बाद कपड़े को रंगा जाता है और मोम लगने से उस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ता।
0: बिल्कुल। और कारीगर इस कला का उपयोग करके खूबसूरत साड़ियां, दुपट्टा और फैब्रिक तैयार करते हैं। यकीन मानो, हर एक पीस अपने आप में अनूठा होता है क्योंकि मोम लगाने से कपड़ा रंग के ने मतलब मोम को हटाने तक का काम हाथ से किया जाता है। ये सारा का सारा हैंडवर्क होता है।
1: बिल्कुल। और देखो, हर एक कपड़ा कारीगर की कारीगरी की अनूठी मिसाल पेश करता है। बाटिक सिर्फ कला नहीं बल्कि बंगाल के कारीगरों की रचनात्मक परंपरा और हस्तशिल्प कला की पहचान भी है। तो अगर आप कभी बाटिक की साड़ी या दुपट्टा देखें तो उसे अपने वार्डरोब में जगह जरूर दें।
0: बिल्कुल देंगे।
1: और देखो, ये कलाकारों की मेहनत के लिए हमारी तरफ से, आपकी तरफ से एक सम्मान होगा, है ना?

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

0: बहारों के सपने। अभी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की।
1: तो सपनों की दुनिया से रियलिटी वर्ल्ड में आते हैं, और जीवन में संवाद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संवाद यानी आपसी जो कम्युनिकेशन होता है उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संवाद बोलकर, इशारों से हो या फिर लिखकर हो, ये प्रभावी होने चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला तुमने। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब हम लोगों के बीच होते हैं ना, तब संवाद बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में संवाद सार्थक हो, स्पष्ट हो और सम्मान पूर्वक हो तो संवाद प्रभावी के साथ साथ सफल संवाद माना जाता है।
1: क्या बात है। और एक बेहतरीन संवाद केवल बोलने के बारे में नहीं होता है, बल्कि सामने वाले को समझने और अपनी बात को सही ढंग से पहुंचने की कला है।
0: बिल्कुल। और देखो, अपने संवाद के दौरान हमें सक्रिय श्रवण रखने की जरूरत है, यानी एक्टिव लिसनर हमें बने रहना चाहिए। साथ ही बात को घुमावदार तरीके की बजाय स्पष्ट और सीधे शब्दों में ही कहा जाए तो संवाद बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल सही। और बातचीत के दौरान सामने वाले की भावनाओं और परिस्थिति का सम्मान करना ना भूले, क्योंकि उनका जो नजरिया वो भी मायने रखता है, जिसका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल ठीक मंजुला। और देखो, संवाद की एक और शर्त होती है, जो होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। बात करते समय आंखों से संपर्क, चेहरे पे मुस्कुराहट और आपकी सकारात्मक मुद्रा भी संवाद को प्रभावी और सफल बनाती है।
1: और एक जरूरी बात कि ये संवेदनशील या गंभीर विषयों पर बात करने के लिए गुस्से या तनाव की स्थिति में संवाद से बचें, यानी मूड खराब हो तो बातचीत थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो, ये छोटी सकारात्मक आदतें अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा संवाद प्रभावी तो होगा ही, साथ ही आपको एक सौम्य और प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी बनाएगा। तो क्यों ना आज से ही पहल करें एक सफल और सार्थक संवाद की।
2: सुनो,
3: कहो,
2: कहा,
3: सुना।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी आपकी कसम।
1: और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं, बस अपने मन से बात कहने के तरीके को बदलने की जरूरत होती है। जापान के कुछ बेहद खूबसूरत विचार जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान उसे बदल देना नहीं होता है, कभी कभी उसे स्वीकार करने, उसे थोड़ा सा पीछे हटना और अपने अगले कदम, छोटे कदम पर ध्यान देना उसका समाधान होता है।
0: बिल्कुल, देखो कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जो हो चुका है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे बार बार सोचकर हम अतीत नहीं बदल सकते। इसलिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को जाने देना भी जरूरी।
1: बिल्कुल। और दूसरा, कितनी बार हम थकान को, चिंता, भूख को, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी को जिंदगी की समस्या समझ लेते हैं। कभी कभी मन को सलाह नहीं, बस खाना और नींद चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो, हर संदेश का तुरंत जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, हर खामोशी को भरना जरूरी नहीं है, जिंदगी में कुछ खाली जगह भी रहने देनी चाहिए, क्योंकि हर खालीपन को तुरंत किसी जवाब, किसी व्यक्ति या किसी शोर से भरना जरूरी नहीं है।
1: और ना कहना भी सेल्फ केयर है, हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर जिम्मेदारी उठा लेना और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना आपकी अच्छाई का प्रमाण नहीं है दोस्तों। कभी कभी एक बिल्कुल क्लियर नहीं आपके समय, ऊर्जा और मन की रक्षा करता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला तुमने। और शिनरिन योकु, जब मन बहुत शोर करने लगे, कुछ पेड़ों के बीच जाइए और उसे देखिए। प्रकृति हमेशा हमारे सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन वो हमारे भीतर का जो शोर है वो थोड़ा कम जरूर कर देती है।
1: बिल्कुल। और वाबी साबी तो सबने सुना है, एक गलती ये तय नहीं करती है कि आप कौन है। आपका कोई असफल निर्णय या कोई टूटा रिश्ता, कोई अधूरा सपना आपकी पूरी पहचान नहीं है दोस्तों। अपूर्णता भी जीवन का हिस्सा है और कई बार उसी में हमारी सबसे सच्ची खूबसूरती छिपी होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला तुमने। देखो, और काइजेन की बात करें तो पूरी सीढ़ी को मत देखिए, बस एक कदम उठाइए। जब मंजिल बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी पतंग। और कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है, जाते जाते आज की छोटी सी टिप, हर दिन अपने लिए कम से कम 15 मिनट जरूर निकालिए, फोन से दूर, शोर से दूर, बस अपने साथ, क्योंकि दूसरे का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना ना भूलें।
1: और देखो मंजुला, अभी हम अपने श्रोताओं को आज की प्रस्तुति का आखिरी गीत सुनवाएंगे फिल्म बातों बातों से, जिसमें आवाजें हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की।
0: तो फिर मिलेंगे एक नई बातचीत, नए विषय और नई ऊर्जा के साथ।
1: तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। दीजिए प्रतिभा को
0: और मंजुला को इजाजत।
1: नमस्कार।
2: उठ सबके कदम, देखो रंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy.

0: From there, we are moving towards the developed economy.
1: We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone.
0: That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan made these remarks during the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi today. The Vice President said, democracy and development can advance together with consensus, inclusion and responsive policy making, providing the foundation for sustainable growth. He stressed that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047.
0: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
3: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Mr. Shah said that Navpreet Singh used to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nabav Virk. He added that the agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said that Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75% to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the US Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years with several more talks underway. He said the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market. Mr. Goyal said that before 2014, India had free trade agreements with economies representing around $10 trillion in GDP. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completed 12 years today. The first episode of the program was broadcast on this day in 2014 on the occasion of Vijay Dashami. The 138th episode of Mann Ki Baat was broadcast recently. Over the past 20

वक्त हो चला है 1:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम किसको याद कर रहे हैं आप भी ज़रा गेस करने की कोशिश करिए। और आप बस ज़रा कल्पना करिए कि जब पर्दे पर हम कोई फिल्म देखते हैं, जब पर्दे पर तिरंगा लहराता है और बैकग्राउंड में फौजी बूटों की आवाज़ आती है, और सामने खड़ा जवान जब कहता है मुल्क पहले बाकी सब बाद में, तो किसका नाम जहन में आता है? जाहिर है जेपी दत्ता का। गुलामी हो, बॉर्डर हो, एलओसी कारगिल हो या फिर पलटन जैसी फिल्में, जेपी दत्ता ने हिंदी सिनेमा में देशभक्ति की कहानियों को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। तो आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और वो एक ऐसे फिल्मकार हैं जिसने सरहद की कहानियों को सिर्फ पर्दे तक ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें दर्शकों के दिलों तक पहुंचाने का काम किया। तो हम एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर कोई अच्छी सी फिल्म ज़रूर पर्दे पर आप लेकर आएंगे।

दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए सिनेमा एक सपना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिनेमा उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर आता है। जेपी दत्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 अक्टूबर 1949 को मुंबई में जन्मे ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का रिश्ता फिल्मों से बचपन से ही जुड़ा था। उनके पिता ओपी दत्ता खुद फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, यानी घर में फिल्मों की बातें होती थीं, शूटिंग के किस्से थे और सिनेमा का माहौल सब कुछ मौजूद था। शायद इसी माहौल ने जेपी दत्ता के मन में भी एक सपना जगाया, कैमरे के पीछे खड़े होकर अपनी कहानी कहने का।

मैंने आपको बोला था कि बॉर्डर सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, गोलियों के बीच दोस्ती की कहानी है, घर से दूर जवानों की बेचैनी की कहानी है, परिवार के याद की कहानी है और देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान देने कर देने का जज्बा है इस फिल्म में। यही वजह रही कि बॉर्डर दर्शकों के बीच खास जगह बनाने में कामयाब रही और जेपी दत्ता का नाम देशभक्ति वाली फिल्मों के एक अहम फिल्मकार के तौर पर पहचान बनाने लगा।

साल 1985 में आई थी जेपी दत्ता की पहली फिल्म गुलामी और उसके बाद बॉर्डर। बॉर्डर के बाद ऐसा लगा जैसे जेपी दत्ता ने अपनी फिल्मों के लिए एक खास दुनिया चुन ली है, एक ऐसी दुनिया जहां सरहद हैं, सैनिक हैं और उनके पीछे छोटे परिवार हैं। इसके बाद उन्होंने रिफ्यूजी, एलओसी कारगिल और पलटन जैसी फिल्में बनाई। इन फिल्मों में सिर्फ जंग के मैदान को नहीं दिखाया गया बल्कि उन जवानों की जिंदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई जो अपने घर परिवार से दूर देश की हिफाजत में खड़े रहते हैं। यानी जेपी दत्ता के सिनेमा में सरहद सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं थी, वो एक कहानी थी, जज्बात की कहानी।

जीपी दत्ता ने युद्ध पर आधारित फिल्में जरूर बनाई, लेकिन उन फिल्मों में मोहब्बत को डालना नहीं भूले, जज्बात को डालना बिल्कुल नहीं भूले। और शायद इसकी वजह ये रही कि उनके अपनी निजी ज़िंदगी में भी एक प्रेम कहानी चल रही थी जो उस समय बहुत चर्चा का विषय रही। अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी के साथ जेपी दत्ता का रिश्ता प्यार में बदला और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बताया जाता है कि परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था, लेकिन दोनों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद शादी की और आज इस जोड़ी की दो बेटियां हैं, निधि दत्ता और सिद्धि दत्ता। और यहां कहानी एक बार फिर फिल्मों से जुड़ जाती है, क्योंकि बेटी निधि दत्ता अब अपने पिता की फिल्मी विरासत को आगे बढ़ाने की राह पर हैं।

आज जेपी दत्ता का जन्मदिन है तो हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बॉर्डर ने एक अलग पहचान दी जेपी दत्ता को और फिर उन्होंने उसकी कहानी को नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ाया। बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ नजर आए, वरुण धवन नजर आए और सबसे प्यारी बात कि इस फिल्म से जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता भी जुड़ गई। तो सरहद की कहानियों को पर्दे पर कितनी खूबसूरती से उन्होंने उतारा और हम इसको महसूस कर सकते हैं कि उन फिल्मों को देखते हुए सच में एक अजीब अलग तरह का जोश और जुनून हमारे भीतर पैदा होता है। और सिर्फ जोश और जुनून नहीं, एक अलग तरह का जज्बात पैदा होता है और हम बहुत भावुक हो जाते हैं उनकी फिल्मों को देखते हुए। अभी हम आपको सुनाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत।

वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो संगीता को इजाजत दीजिए और आपसे कहना ये, आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि कार्यक्रमों का सिलसिला तो अभी यहाँ पर चलता रहेगा। और अभी आप सुनेंगे उर्दू में समाचार 2:30 पर। एक बार फिर से मैं आऊंगी लेकर कार्यक्रम संगीत.com। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आजादाना तिजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का इहाता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज अपने 12 साल मुकम्मल कर रहा है। आबनाए हुरमुज में कुवैत के परचमबरदार बहरी जहाज पर हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बहिफाजत बचा लिया गया है। और एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं परनवी शरत उर्स गोल्फ में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। तिजारत सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज़ाद तिजारती ताल्लुकात का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसमें दुनिया भर की मईशतों का तकरीबन 75% से 80% हिस्सा शामिल किया जा सकता है। शिकागो में अमरीकी भारतीय कम्युनिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने बताया कि भारत ने हालिया बरसों में अपने तिजारती मुज़ाकरात में खातिरख्वाह औसत पैदा की है और कई मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि इस बढ़ते हुए नेटवर्क से भारत में मौजूद कंपनियों वसी बैनुल अक्वामी बाजार तक रसाई फराहम होगी। जनाब गोयल ने कहा कि 2014 से पहले भारत का दुनिया की मईशतों के साथ आज़ादाना तजारती माहदे थे जिनकी मजमूई घरेलू पैदावार तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात कि आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड आज ही के दिन साल 2014 में विजयदशमी के मौके पर नशर किया गया था। हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड नशर किया गया। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मन की बात ने मुल्क भर में रोनुमा होने वाली मुसबत यकसर तब्दीली को उजागर करने और भारत के तरक्की के सफर में लोगों की सरगर्म शिरकत की हौसला अफजाई के लिए एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस माहाना प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म मुल्क भर के ऐसे लोगों की मुतासिर कुन कहानियाँ शेयर करते हैं जो तालीम, हिफ्जान सेहत, माहौलियाती तहफ्फुज़, इख्तरा और समाजी खिदमात के शोबों में इम्तियाजी काम अंजाम दे रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क्स पर नशर किया जाता है और ये AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब रहता है। ये प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी लाइव नशर किया जाता है। मरकजी वज़ीर दाखला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में गौपालक सम्मेलन में शिरकत करेंगे जो कि दूध की पैदावार और डेयरी के शोबे की बड़ी तकरीब होगी। इस मौके पर जनाब शाह तकरीब से खिताब भी करेंगे। रियासती सतह का ये गौपालक सम्मेलन भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। इस दौरान जनाब शाह मवेशी परवरी के शोबे से वाबस्ता और बेहतरीन काम करने वाली किसान खवातीन की हौसला अफजाई करेंगे। आबनाए हुरमुज़ में कुवैत के परचमबरदार टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। ओमान में भारतीय सफारतखाने ने आज एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय शहरियों को बहिफाजत निकालने में मदद की। मिशन ने इस बचाव कार्रवाई में ओमान के हुक्काम की लगातार मदद और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा है कि इक्तसादी मुज़ाहमत को समाजी मुज़ाहमत से अलग नहीं किया जा सकता और यही शमूलियत तेजी से बदलती दुनिया में मुज़ाहमत की बुनियाद है। जनाब राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वीं कौटल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए यह बात कही। कॉन्क्लेव का मौजू है तेजी से बदलती दुनिया में मज़ाहमत। नायब सदर ने कहा है कि इत्तफाक़ राय, शमूलियत और जिम्मेदारी पॉलिसी साजी से ही जमहूरियत और तरक्की साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और पायदार तरक्की की बुनियाद फराहम करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि असल मुज़ाहमत इस बात में पिन्हा होती है कि कोई भी शहरी, कंपनी या खित्ता पीछे न रहे। नायब सदर ने साल 2047 तक विकसित भारत के लिए तामीर के लिए इज्तमाही कोशिशों की अपील की।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, from there we moved on to the developing economy From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: जनाब राधाकृष्णन ने तेजी से बदलती आलमी तरजीहात, बदलती टेक्नोलॉजी और उभरते हुए माहौलियाती चैलेंजों के दरमियान इत्तेफाक राय के जरिए फैसला साजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहरान के दौरान इत्तेफाक राय पर मबनी फैसलों की बहुत जरूरत होती है। नायब सदर ने मजीद कहा कि चूंकि बहसो मुबाहसे जरूरी हैं, लेकिन उनका सभी के लिए काबिल कबूल और आखिरी नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत मुनशियात की स्मगलिंग के एक बड़े मुलजिम नवप्रीत सिंह को तुर्किया से कामयाबी के साथ भारत ले आई है। मुल्क की नफाज़े कानून की एजेंसियों की इस कामयाबी का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह ने जाली शनाख्त नवाब विर्क के नाम से तुर्किया की शहरियत हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मैथम फेटामाइन गैर कानूनी तरीके से भारत भेजता था। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका एजेंसियों ने मुलजिम का सुराग लगाया, इसकी असल शनाख्त बेनकाब की और उसे भारत लाने में कामयाबी हासिल की। वजीर मौसूफ ने बताया कि नवप्रीत सिंह को मुनशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम से मुतल्लिक कई मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। वस्मत तालुका के पांगरा शिंदे इलाके में सुबह तकरीबन 9:43 पर 4.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इससे कबल सुबह 7:47 पर 3.3 शिद्दत का जलजला आया था। इसके बाद 4.5 शिद्दत का निस्बतन ताकतवर झटका महसूस किया गया, जिसके बाद जलजले के कई हल्के झटके भी महसूस किए गए। हिंगोली शहर और जिले के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कुछ लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले मकामात पर जमा हो गए। नेपाल में आज गंडकी सूबे में एक बस पलटने के वाकये में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 10 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक काठमांडू जाने वाली इस बस में 18 मुसाफिर सवार थे और ये वाकया नवलपरासी जिले के दून इलाके में पेश आया। जख्मी मुसाफिरों को इलाज मुआलजे के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया। एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के T20 फाइनल में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को 19 रन से हराते हुए सोने का तमगा जीता। यह मैच आज जापान के निशहिन में खेला गया। भारत की जानिब से दिए गए 212 रन के जवाब में पाकिस्तानी की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 22 गेंदों में 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज ने 96 रन बनाए, वहीं बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अरफात मिनहाज और तेज गेंदबाज अहमद दालिया ने 2-2 विकेट लिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स 2026 में खवातीन के इन्फरादी स्ट्रोक प्ले में सोने

0: सोने का तमगा जीतने और गोल्फ इंफरादी तौर पर पहला सोने का तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बनने पर परनवी शरत उर्स को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि परनवी शरत उर्स ने भारतीय गोल्फ की तारीख में यह कारनामा अंजाम दिया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि सोने का यह तमगा भारतीय खवातीन के गोल्फ में संगे मील की हैसियत रखता है। सदर जमहूरिया ने परनवी शरत उर्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में आज भारतीय तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इंफरादी रिकर्व जुमरे में हमवतन धीरज बोम्मा देवरा को 4-6 से हराकर कांसे का तमगा जीता। मर्दों के क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में महाराजा देवेंद्र सिंह बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच खेला जाएगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आजादाना तजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का इहाता करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज अपने 12 साल मुकम्मल कर रहा है। आपनाए हुरमुज में कुवैत के परचमबरदार बहरी जहाज पर हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बहफाजत बचा लिया गया है। और एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं परनवी शरत उर्स गोल्फ में सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait-flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. Now the news in detail. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation.
2: हमने श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत की है।
3: We have launched White Revolution 2.0. Under this initiative, we will establish 75,000 new cooperative dairy in villages and strengthen 46,000 existing dairies. Of the 75,000 new dairies, the largest number will be established in my state of Madhya Pradesh.
2: मेरे मध्य प्रदेश में बनने वाली है।
1: On criminal justice reforms, Mr. Shah said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases should be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75% to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the US Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years, with several more talks underway. He said the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market. Mr. Goyal said that before 2014, India had free trade agreements with economies representing around $10 trillion in GDP.
4: Before 2014, our free trade agreements were mostly with smaller countries whose combined GDP was around $10 trillion. In the last 4 to 4.5 years, we have decided to enter into FTAs with 38 more developed countries with a combined GDP of around $60 trillion.
1: Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completed 12 years today. The first episode of the program was broadcast on

0: bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। होर्मूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।

0: भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर की। गत चार साढ़े चार वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थी को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा।

0: कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
2: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाईपास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:30 और 58 सेकेंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है संगीत.com और संगीत.com में मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ, लेकर कुछ बड़े शानदार से कमाल के गाने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए, एक वो भी ज़माना था जब कैसेट का दौर था, जब सीडी का दौर था और EPLP का दौर था। ज़माना बदल गया है लेकिन दिल कहीं वहीं पुराने समय में अटका हुआ है। इस खूबसूरत गाने से हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की और आपको पता है कि इसमें जो है जो गाना है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इसमें निर्देशक राजीव राय ने ख़ास तौर पे ये जोर दिया था कि एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट किया जाए। और आनंद बख्शी ने जब इस गाने को लिखा तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा उनको इस गीत को लिखने के लिए। और जब ये रिकॉर्ड किया गया ना तो कविता कृष्णमूर्ति ने कहा कि मुझे उसी समय पता चल गया था कि ये गाना हिट नहीं सुपर डुपर हिट होने वाला है।

अच्छा, कुछ गाने या फिल्मों के कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं ना कि जो बड़े हिट हो जाते हैं और उस समय खूब चलते हैं, जैसे कुछ कुछ होता का डायलॉग जो था पलट पलट, और ये कितना हिट हुआ था ये डायलॉग, या फिर ये गाना लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, ये क्या कमाल के गाने थे। ऐसे एक गाना मुझे याद आ रहा है, कौन सा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अक्षय कुमार और नगमा। नगमा जो बॉलीवुड के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी लगातार काम कर रही थी, और आनंद मिलन ने संगीत दिया था, समीर के बोल थे, और क्या जबरदस्त गाना था ये। चलिए सुनते हैं इसी गीत को।

और अब एक ऐसे गीत की बात करते हैं जिसने ट्रेन को ही डांस फ्लोर बना दिया। जी हाँ, छैया छैया के धुन के पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है। सुखविंदर सिंह ने एआर रहमान को सूफी रंग की एक धुन सुझाई थी जिसकी जड़ें बुल्ले शाह की रचना तेरे इश्क नचाया तक जाती थी। बाद में गुलजार ने उसके लिए नए बोल लिखे और वो बना चल छैया छैया छैया छैया। और फिर जब आया शूटिंग का समय तो फराह खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो जिस ट्रेन पर शूट किया था उन लोगों ने, वो ट्रेन 5 दिन तक उनके पास रही और शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा ने इस फिल्म में काम किया। इस गाने में जो शूटिंग हुई उनके ऊपर हुई और ये कमाल का अनुभव था और पूरी टीम को इस बात का यकीन था कि कुछ बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है और कुछ ज़बरदस्त पर्दे पर दिखाई देने वाला है। सुनते हैं इस गीत को।

अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, क्या आपने सिनेमा का वो दौर देखा है जब लोग सिनेमा हॉल में जाते थे और उसके बाद गाने पर झूमना शुरू कर देते थे, नाचना शुरू कर देते थे और सिक्के उछालना शुरू कर देते थे। अभी जो अगला गाना हम सुनाने जा रहे हैं ना आपको, उस गाने में कुछ ऐसा ही है कि आप झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। और उसको याद करते हुए, उस गाने को याद करते हुए रवीना टंडन ने कहा था कि जब सिनेमा हॉल में लोग जाते थे ना, तो इस गाने को सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि इस गाने के साथ झूमते थे, नाचते थे और सिक्के उछालना शुरू कर देते थे। आपने वो दौर देखा है क्या, सिक्के उछालने वाला? हाँ, फिलहाल ये गीत आपके लिए।

और अब चलते चलते एक और शानदार गाना आपको सुनवाऊंगी। हुआ क्या कि अनु मलिक ना गोवा छुट्टी मनाने के लिए गए थे और वहाँ पर अचानक से उनके दिमाग में एक धुन आई, लेकिन उनके पास रिकॉर्डिंग के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी को ना अनमोल जिसका नाम है उसको वो धुन याद करा दी और उससे ये कहा कि मुंबई जाने तक ना इस धुन को याद रखना। और जब वो लौट कर आए तो और डेविड धवन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हाँ एक धुन बनाई तो थी मैंने, और फिर बेटी को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें बोला था ना उस धुन को याद रखना, मुझे वो धुन सुनाओ। और जब बेटी ने वो धुन सुनाई तो फिर पता है आपको कौन सा गाना बना? वो बना ये खूबसूरत सा गीत।

और अब वक्त तो चला है आपसे इजाज़त लेने का, तो संगीता को इजाज़त दीजिए और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। सीमा वर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं और आपसे कहना ये है जाते जाते कि बने रहिए, जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर गैस से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। भारतीय दूतावास ने अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। और खेलों में 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मुकाबले में चंडीगढ़ में वेस्टइंडीज के साथ भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। अंशुल कंबोज इस मैच से एक दिवसीय क्रिकेट में अपना पदार्पण कर रहे हैं, जबकि नीतीश रेड्डी को टीम में वापस शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज भी इस श्रृंखला का अपना पहला मैच खेल रहे हैं। पहले 2 मैच आसानी से जीतने के बाद भारत इस श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम करने की कोशिश करेगा। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
0: श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कार्यक्रम में सिक्किम के एक युवा साइबर शोधकर्ता और एक बहुत बड़े तकनीकी विशेषज्ञ से, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी नामित किया है और विभिन्न बड़ी संस्थाओं जैसे माइक्रोसॉफ्ट और तमाम ऐसी तकनीकी दुनिया की संस्थाओं ने उन्हें उनके काम को उन्होंने पहचान दी है। करीब दुनिया की 328 संस्थाओं ने उनकी उपलब्धि को पहचाना है। विवेक राज तमांग का काम साइबर सुरक्षा को लेकर है। साइबर सुरक्षा की खामियों को लेकर उन्होंने कई शोध किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी उपलब्धि और सफलता की कहानी।
2: पश्चिम सिक्किम के रहने वाले विवेक राज तमांग को दुनिया भर की 328 संस्था से मान्यता और सराहना मिली है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार इस उपलब्धि की पुष्टि 25 जुलाई 2026 को हुई। विवेक ने अलग अलग संस्थाओं की वेबसाइट और डिजिटल सिस्टम में मौजूद सुरक्षा खामियों की पहचान की और उनकी जानकारी संबंधित संस्थाओं को दी, ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इसे सुरक्षा खामियों की जिम्मेदारी से जानकारी देना कहा जाता है। विवेक को उनके काम के लिए बग बाउंटी प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और सम्मान सूची में जगह सहित कई तरह की मान्यताएं मिली हैं। उनकी 328 मान्यताओं में नासा, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पांस सेंटर और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी CERT इन जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं।
3: I explored and learned about different areas of computer science, but when I discovered cybersecurity and ethical hacking, I finally found something that I could truly see myself enjoying every single day. My journey was also not entirely traditional. Of course, I have my degree, certification. Courses can give you a strong foundation, but I believe ethical hacking is something you really learn by constantly exploring, practicing and challenging yourself.
2: Cyber Suraksha jaise teji se badal rahe kshetr mein विवेक का सफर दिखाता है कि सही तकनीकी ज्ञान, लगातार सीखने की इच्छा और जिम्मेदारी के साथ काम करके युवा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मायनाक चैटर्जी, दिल्ली राम दुलाल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: श्रोताओं, त्रिपुरा की 5 दशक पुरानी गोमती जल विद्युत परियोजना त्रिपुरा की एक बड़ी आधारशिला रही है और इसे दोबारा से पुनर्जीवित करने को लेकर अब विचार किया जा रहा है। 1970 में शुरू हुई इस परियोजना से त्रिपुरा के लिए स्वच्छ बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाता रहा है और दोबारा से अब उम्मीद है कि नए सिरे से जब गोमती जल विद्युत परियोजना शुरू होगी तो त्रिपुरा में स्वच्छ बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा। तो आइए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में गोमती जल विद्युत परियोजना के पुनर्जीवन की कहानी को सुनते हैं।
4: इस परियोजना की कहानी 1965 में शुरू हुई थी। उस समय त्रिपुरा में बिजली से जुड़ी सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी। राज्य के जल संसाधनों का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करने के उद्देश्य से गोमती जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया गया। 5 साल बाद 1970 में यह परियोजना शुरू हुई। इसमें बिजली बनाने वाली 3 इकाइयां थी। हर इकाई की क्षमता 5 मेगावाट थी और परियोजना की कुल क्षमता 15 मेगावाट थी। कई वर्षों तक इन इकाइयों के जरिए बिजली का उत्पादन होता रहा, लेकिन समय के साथ परियोजना की मशीनें पुरानी होती गई। साल 2010 में पहली इकाई ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद 2021 में दूसरी इकाई भी बंद हो गई। तीसरी और आखिरी इकाई भी अपनी पूरी 5 मेगावाट क्षमता से बिजली पैदा नहीं कर पा रही थी। इसकी क्षमता घटकर करीब 3 मेगावाट रह गई थी। इसके बाद अगस्त 2024 में आई भीषण बाढ़ ने परियोजना को और बड़ा नुकसान पहुंचाया। तीसरी इकाई भी बंद हो गई और 5 दशक से ज्यादा समय से बिजली पैदा कर रही यह परियोजना पूरी तरह ठप हो गई। त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा पावर जनरेशन लिमिटेड यानी TPGL परियोजना के पुनरुद्धार पर काम कर रहे हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार परियोजना को फिर से चालू कर करीब 10 मेगावाट स्वच्छ बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पानी के नीचे परियोजना की संरचना की स्थिति कैसी है। इसी उद्देश्य से पानी के अंदर रोबोट की मदद से जांच की गई। इसके लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV का इस्तेमाल किया गया। यह मशीन उन हिस्सों की जांच कर सकती है जहां इंसानों के लिए सीधे जाकर निरीक्षण करना मुश्किल या जोखिम भरा हो सकता है। जांच में बांध के गेट, पानी के नीचे मौजूद संरचनाओं और संभावित रिसाव जैसी चीजों की स्थिति को देखा गया।
5: रिसेंटली वी कंडक्टेड इंस्पेक्शन इन गुमती HCV प्रोजेक्ट एज ए रिक्वायरमेंट बाय द TPGL। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन वी कवर्ड ऑर्बे गेट एरिया, इंडे गेट area and captive gate area. In the inspection, we captured detailed videos of these critical submerged structures using our ROVs. These data will definitely help them to understand the current conditions of the submerged structures. Our draft report has been already submitted.
4: अगर पानी के नीचे मौजूद संरचनाएं मरम्मत के बाद इस्तेमाल करने लायक पाई जाती हैं, तो आगे तकनीकी जांच, मरम्मत और मशीनों को दोबारा लगाने का काम किया जा सकता है। वहीं अगर संरचनाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो अधिकारियों को यह तय करना होगा कि परियोजना को दोबारा शुरू करना तकनीकी और आर्थिक रूप से कितना संभव है। लेकिन यह निरीक्षण त्रिपुरा की इस पुरानी जल विद्युत परियोजना को फिर से शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोमती परियोजना ने दशकों तक त्रिपुरा को जल संसाधनों से बिजली उपलब्ध कराई है। अगर इसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से दोबारा शुरू किया जा सका तो यह राज्य के बिजली नेटवर्क में फिर से योगदान दे सकती है। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी।
0: श्रोताओं, 2026 के एशियाई खेलों में पूर्वोत्तर भारत की प्रतिभाओं ने फिर अपना परचम लहराया है। मणिपुर की रोशोविना देवी ने इस बार फिर से तीसरा अपना पदक एशियाई खेलों में जीता। वुशु खिलाड़ी रोशोविना देवी ने इस बार पदक जीतकर फिर से नया इतिहास लिखा है। तो आइए रोशोविना देवी के बारे में विस्तार से जानते हैं, कैसे उन्होंने अपने खेल का सफर शुरू किया और कैसे वो एशियाई खेलों तक अपनी प्रतिभा को ले गई और भारत का नाम रोशन किया।
6: रोशोविना देवी का जन्म 30 दिसंबर 2000 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के कौसिफाई मायाई लिकाई में हुआ। इनके माता पिता छोटे किसान हैं। बचपन में गांव में एक वुशु प्रतियोगिता देखने के बाद रोशोविना की इस खेल में रुचि पैदा हुई। पांचवी कक्षा में रहते हुए उन्होंने वुशु सीखने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी, माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन रोशोविना ने खुद अभ्यास जारी रखा। उनके पिता के अनुसार वो गांव के बच्चों के साथ चावल की भूसी से भरी बनियान को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करके अभ्यास करती रहीं। बाद में उन्हें इम्फाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI सेंटर में प्रशिक्षण का मौका मिला। वहां उनके खाने और ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई और उन्होंने कोच मैबाम प्रेम कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू किया। 2016 में बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में रोशोविना ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। 2017 में उन्होंने एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया और आगे चलकर 60 किलोग्राम वर्ग में अपनी पहचान बनाई। 2018 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में पदार्पण किया और कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2019 में उन्होंने दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में रोशोविना ने 60 किलोग्राम सांडा वर्ग के फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक जीता। उसी साल उन्होंने विश्व वुशु चैंपियनशिप में भी रजत और मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके सफर में चोट ने भी चुनौती पेश की। 2024 में घुटने की चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक खेल से दूर रहना पड़ा। वापसी के बाद

0: 2026 का रजत एशियाई खेलों में लगातार 3 पदक अपने नाम किए। वो एशियाई खेलों में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय वुशु खिलाड़ी बनी।
1: अच्छा लगा, ये मेरा 3rd एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियाँ हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
0: पदक जीतने के बाद रोशिबीना ने अपने परिवार के त्याग को याद किया और कहा कि उनके माता पिता ने उनकी खेल यात्रा में बहुत सहयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में अशांति के बीच तैयारी करना उनके लिए मुश्किल रहा और अगर उन्हें ज्यादा समय मिलता तो वो बेहतर तैयारी कर सकती थी। मणिपुर के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ रोशिबीना का सफर अब भारतीय वुशु के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। उनका ये सफर मेहनत, संघर्ष, चोट से वापसी और मिले मौके को सफलता में बदलने की कहानी है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी, आकाशवाणी समाचार।
2: अब खेल की ही बात हो रही है तो अपनी सहयोगी निशा की अगली रिपोर्ट में हम इस बार एशियाई खेलों में पूर्वोत्तर की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मीराबाई चानू की भी उपलब्धि को सुन लेते हैं। उन्होंने जहां एक तरफ कॉमनवेल्थ खेलों और ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया तो इस बार एशियाई खेलों में भी अपना पहला पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने किस तरह से इस बार फिर से भारोत्तोलन में एक नया कीर्तिमान रचा है और एशियाई खेलों के पदक की कमी को भी पूरा किया है, आइए हम इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
3: मणिपुर की नोंगपोक कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर एशियाई खेलों के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। लगातार मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने भारतीय भारोत्तोलन में अपनी अलग पहचान बनाई। मीराबाई ने 2014 के एशियाई खेलों से अपने एशियन गेम सफर की शुरुआत की थी जहाँ वह 9वें स्थान पर रही थी। 2016 के रियो ओलंपिक में वह कोई वैध लिफ्ट दर्ज नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बावजूद एशियाई खेलों का पदक उनकी उपलब्धि की सूची से दूर था। 2018 के एशियाई खेलों में वह चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकी, जबकि 2023 के हांगशो एशियाई खेलों में क्लर्क एंड जर्क के दौरान लगी चोट के बाद वह 4th स्थान पर रही थी। 2026 में मीराबाई ने इस इंतजार को खत्म किया। 23 सितंबर को महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में उन्होंने स्नैश में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल वजन 198 किलोग्राम रहा। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की री सॉन्ग गम ने 2015 किलोग्राम वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता था और मीराबाई ने रजत पदक हासिल किया।
4: That smile on her face knows that the trophy cabinet is complete for Mirabai Chanu. The one medal that was missing in her trophy cabinet was that medal at the Asian Games. She clinches that now, a silver medal.
3: मीराबाई का यह पदक इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारत ने एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का पिछला पदक 1988 में जीता था। 28 साल बाद मीराबाई ने भारत को इस स्पर्धा में फिर पदक दिलाया। मीराबाई पहले ही ओलंपिक, विश्व चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुकी थी। अब एशियाई खेलों का पदक भी उनकी उपलब्धियों से जुड़ गया है। पदक जीतने के बाद मीराबाई ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना उनका सपना था और इस उपलब्धि से उनका सपना पूरा हुआ। मीराबाई चानू की यह उपलब्धि उनके लंबे संघर्ष, चोटों से वापसी और लगातार मेहनत की कहानी भी है।
5: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी इससे पहले भी मैं काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
3: अब एशियाई खेलों में पहला पदक जीतकर अपने करियर की एक महत्वपूर्ण कमी भी पूरी कर ली है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

3:25:45 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz और शनिवार की दोपहरी अपना वादा निभाते हुए आपकी दोस्त सीमा वर्मा हाजिर है कार्यक्रम मन भावन लेकर 9868-68753 एक बार दोबारा सुने 9868-68753 इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला गीत मेरी तरफ से आपके लिए।

ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म चिचोर, यमन कल्याण पर आधारित ये गीत, और इसमें जो बीच की जो सरगम है वो तो दिल जीत लेती है अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं तो। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं, और 3:41:12 हो गए, अब आपकी जो फरमाइशें हैं उन्हें लेने का वक्त आ गया है। मेरी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर है, और एक बार फिर मैं उस नंबर को आपको बता दूं, 9868686853। और जी यहाँ शुरू करते हैं हम अपना पहला संदेशा, जो कि मोगा पंजाब से आया है। जगदीश जी हैं इनके साथ और वीरपाल जी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। इसके साथ साथ एक और संदेशा है गांव लोहगढ़ से, स्वर्ण सिंह गिल साहब हैं, दलजीत सिंह जी हैं, राजदीप हैं इनके साथ, गुरनूर हैं और गुरलाल हैं और अविराज सिंह जी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं अगर अगले संदेशे पर हमारी नज़र जाती है तो चंडीगढ़ से जी सतीश अनेजा जी हैं, बिमला अनेजा हैं, आपके संदेशे के लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आज आपका कोई ख़ास दिन है, आज के दिन आप खुश हैं, उदास हैं, जो भी कुछ हैं, बस एफ एम गोल्ड को अपने साथ रखिए। कई बार खुशी साझा करने से बढ़ जाती है और गम साझा करने से कम हो जाता है। दादरी गेट भिवानी से हमारे पास कृष्ण मेहरा हैं, कोमल मेहरा हैं, किरण हैं, कपिल हैं और कुणाल हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और जी यहाँ पर किसका संदेशा आया है, ये आया है जी राकेश कुमार जी हैं, मनीष कुमार हैं, उमेश कुमार हैं, खैला से, विष्णु गार्डन से। आप सबसे गुजारिश है कि जब आप अपने नाम हम तक पहुंचा रहे हैं तो नामिक के नीचे एक लिखेंगे तो वो हमें पढ़ने में आसानी होती है। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा हैं, चैतन्य हैं, मेघा हैं, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान खुराना हमें संदेशा अपना भेजते हैं। और राशिद हुसैन अंसारी साहब हमें कहाँ से, कुरावली से हमें ये संदेशा भेज रहे हैं। नसरीन अंसारी हैं इनके साथ, नौरीन हैं और आसना हैं और मोहम्मद गैफ अंसारी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके संदेशों में खो जाऊं और मैं वो भूल जाऊं जो मुझे करना है, यानी आप में से किसी एक की फरमाइश का गीत आप तक पहुंचाना है। आइए सुनते हैं इस गीत को इस नंबर के साथ, 9868686853। हमें मैसेज कीजिए और अपनी फरमाइश भेजिए।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और फिलहाल मन भावन प्रोग्राम आपके साथ है और मेरा नाम सीमा वर्मा है, आप जानते ही हैं, और मेरे साथ आपके बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत संदेशे हैं। मुंबई से हमारे पास अहमद भाई फूल वाले हैं, इमरान साहब हैं, इनके साथ आमना है, सदफ और जूही इकबाल हैं, इनके साथ इकबाल अहमद फूल वाले हैं और पूरा का पूरा फूल वाले परिवार है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। इसी के साथ साथ अगला संदेशा अगर मैं देखती हूँ तो जी, ये किसका आया है, गुड आफ्टरनून किसने किया है, फिल्म का नाम भी आपने लिख दिया है। किशन वंजानी साहब हैं, नीलम है, स्वाति हैं और किशु हैं रेलवे कॉलोनी से, आनंद विहार से। एक गुजारिश नाम एक के नीचे एक लिखेंगे तो पढ़ने में सुविधा होती है, वरना ऐसे लगता है कि आपने अपने दिल की बात जो लिखी है, गीत के जो बोल लिखे हैं, वो शायद आपने पैरा में लिखे हैं। आफ्ताब अंसारी साहब, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, ये तो मैंने आपका गंज टुंडवारा से आपने ये लिखा है, लुबना है, लुबना अंसारी हैं और आलिया अंसारी हैं। शुक्रिया जी आपके संदेशे के लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन और इसके साथ शहनवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं, पूरा परिवार है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा है, कपिल चिंपा है और ईशान है, साथ में पूजा परिहार है। आपके संदेशे के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। किशन वंजानी जी, मैंने आपका संदेशा पढ़ दिया है तो कृपया आप फिर दोबारा टाइप ना करें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, एक ही नाम दो बार पढ़ जाते पढ़

लेते हैं और फिर जो सुनने वाला है वो सोचता है कि भाई दो बार आपने पढ़ लिया। सीतामणि बिहार से हमारे पास मुसर्रत जहां का ये संदेश आया, साथ में तलत जहां नाज हैं, इनके साथ फरहत हैं, और रिफत जहां नाज हैं, इनके साथ नुजद हैं, और इनके साथ साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूर नाज हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और फिर मेरी वही हालत हो रही है कि मैं एक साथ पढ़ती जा रही हूँ ये सोच कर के बस मुझे सिर्फ आपके नाम पढ़ने हैं। गीतों पर भी मेरा ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ से हमारे पास रोशनलाल देवगन, कौशल्या देवगन, हेमलता और डिम्पल देवगन का संदेशा आया है। तीन बार आपने लिख दिया है, सीमा जी ज़रूर शामिल कर लें, ऐसा आप ना करें क्योंकि ऐसे हमारे दिल में कोई बात ही नहीं होती है कि हम आपका जो संदेशा है उसे शामिल ना करें। चलिए अब बारी है एक गीत की, सुनते हैं।

0: साथियों, कई बार जीवन में ऐसा भी आपने सुना होगा कि कई कई कई साल बीत जाते हैं तभी कोई विरले जो है वो जन्म लेता है, और ऐसी हमने बातें भी सुनी हैं और ऐसा हमने कई बार महसूस भी किया है। वो जो चंदन की तरह लिखते थे, वो जो पानी की तरह लिखते थे, वो जो कह सकते हैं कि बादलों की तरह लिखते थे, वो जो दिल की बात कलम से बस लिख देते थे, उनकी बात सीधी दिल तक पहुंचती थी। अभी उनकी बात करनी है, वो जो हमारे दिल में एक बहुत बहुत अहम जगह रखते हैं। आज उनसे अपनी जो कड़ी है, प्रेम की कड़ी है, उसे जोड़ना है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी जो गीत मैंने आप तक पहुंचाया, उसे लिखा महान कवि गोपालदास नीरज जी ने। और हमारा सौभाग्य है कि आज एफएम गोल्ड पर उनके सुपुत्र हमारे बीच में हैं और कुछ ही देर में हम उनसे बात करने वाले हैं। अब मैं इस बात को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। मृगांक प्रभाकर जी हमारे बीच में हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: मृगांक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम गोल्ड में।
1: मैम, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपसे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक उनका अभिनंदन और नमन उनको करता हूं।
0: जी जी जी। अच्छा मृगांक जी, कल एक बहुत ही खास संगीतमय कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इसके बारे में विस्तार से आप हमें बताएं। और वो इसीलिए भी क्योंकि एफएम गोल्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी संगीत प्रेमी हैं, ख़ासतौर पर पुराने गीतों के बहुत शौकीन हैं।
1: जी, सभी श्रोताओं को मैं एक बार पुनः नमन करता हूं। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, अब तो हिंदी दिवस निकल गया लेकिन हिंदी दिवस के पखवाड़े को लेकर 4 अक्टूबर कल नीरज साहब के जीवन के ऊपर एक स्क्रिप्ट मैंने तैयार की है, जो उनके जीवन के वो तमाम उसके अंदर किस्से होंगे जो आपको जुबानी सुनाए जाएंगे, और उन सारे प्रसंगों को, उनके उनकी कहानियों को, चाहे वो मुंबई की दास्तान हो, देव साहब से नीरज साहब कैसे मिले, नीरज जी का नाम नीरज कैसे पड़ा, वो भावु किताबी के नाम से कैसे जाने जाते थे, और रंगीला रेत के गाने के पीछे की कहानी क्या है, क्यों जो है लिखे जो खत तुझे गाने के ऊपर शंकर जयकिशन खुश हो गए और राजेंद्र भाटिया ने उन्हें फिर अपनी कार गिफ्ट कर दी, तो ऐसे तमाम प्रसंग लेकर कल हम प्रस्तुत हो रहे हैं। और इसे संगीतबद्ध किया है, इसमें ज्यादातर सिंगर्स जो है मुंबई से आए हैं और वो इसे प्रस्तुति करेंगे, तो नीरज साहब का पूरा दर्शन देखेंगे। नीरज साहब शंकर रास के कवि क्यों थे, वो उनके अंदर इतनी करुणा क्यों थी, वो उनके दर्द कैसे झलकता था, ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, एक तरफ तो नीरज ये कहते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ ये कविताओं में ये भी कहते हुए नजर आएंगे, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, और मौत भी मर जाती है पलवर के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ।
0: क्या बात।
1: आपको उनका कारवा गुजर गया गीत, जो आइकॉनिक गीत, जो सिग्नेचर सॉन्ग बन गया, सारी सीमाएं, देश की सीमाएं लांग गया, सरदे लांग गया, वो गीत भी आपको सुनने लगे को मिलेगा वहां पे। तो कल 4 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे मावलंकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, आप लोग आइए और रूबरू होइए नीरज के। हम आपको कुछ दुर्लभ वीडियो भी दिखाएंगे, उनके जवानी के वीडियोज भी दिखाएंगे कि नीरज साहब 1970 में 1965 में कैसे लिखते, कैसे दिखते थे, कैसे, वो सारा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन और सारी जो संगीत है उनका, करीब 21-22 गाने उस प्रोग्राम में है, 40 कविताएं हैं उनकी, कुछ मुखड़े हैं, उनके दोहे हैं, जितना कम सामान है उसमें कई दोहों को मैंने संगीत बदवी किया है, जैसे जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी मुश्किल में इंसान रहेगा, तो इस तरह का एक बहुत सुंदर अपने आप में

0: बिल्कुल यूनिक कह सकते हैं प्रोग्राम तैयार किया है। तो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन यह है कि आप इसमें आए, प्रोग्राम में आए, और एक यादगार शाम, बहुत समय पहले हुआ करती थी एक शाम नीरज के नाम, तो मैं यही कहूंगा कल एक शाम नीरज जी के नाम आप सब आइए और उसके साथ जो है बैठिए, सुनिए उसे और उस रसदार में भरिए जो नीरज साहब ने 77 साल के इतिहास में लिखी है।
1: मृगांक जी, आपकी बातों से मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी बातें लग रही हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप ये जो हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी बात, अगर ये इतनी इंटरेस्टिंग है तो कल का प्रोग्राम जो है वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। नीरज जी के सुपुत्र हैं आप, कुछ छोटा सा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे अपने पिताजी का, कुछ खास जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें।
0: बहुत सारे प्रसंग हैं कि उनका एक बार मृत्यु दूत से साक्षात्कार हुआ। एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं सुना देता हूँ। नीरज साहब इटावा कवि सम्मेलन में गए हुए थे और देर रात हो गई कवि सम्मेलन, तो वहां से जीप में बैठ के वहां से लौट रहे थे, तो मुरैना के पास, जो ग्वालियर के पास मुरैना है मध्य प्रदेश में, उस समय वहां दस्युओं ग्रहों का बड़ा आतंक था उस समय, और उस समय के बहुत फेमस डाकू हुआ करते थे, डाकू मान सिंह, तो उन्होंने नीरज साहब को पकड़ लिया, उनके साथ 2-3 कवि थे, पकड़ लिया। अब वो डाकू मान सिंह साहब बोले कि जो है भाई पैसे निकालिए अपने जेब से, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो कवि हूँ, कार्यक्रम करने गया था, कुछ पारिश्रमिक मिला है वो है मेरे पास बस। तो बोला हम कैसे मान लें कि तुम कवि हो। तो नीरज साहब ने कही कि मैं आपको कविता सुनाता हूँ। नीरज साहब ने उन्हें अपने 2-4 कविताएं सुनाई, तो डाकू मान सिंह बहुत प्रसन्न हुए उनकी, बोले यार तुम्हारे तो जो है गले से नगमा गूंजता है, और पुरस्कार में उन्हें 51 रुपए भी दिए।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: जी जी, तो ये एक बड़ा इंसिडेंट है कि एक दस्यु होके भी उनके मन में जो है कविता के प्रति प्रेम, तो फिर साहब नीरज साहब ने गाया और 51 रुपए पुरस्कार मिले, तो उन्हें डबल मेहनताना मिल गया उस प्रोग्राम में जाने का।
1: अच्छा, उस समय तो मृगांक जी 51 रुपए बहुत हुआ करते थे, बहुत ज्यादा हुआ करते थे,
0: बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी।
1: हाँ जी हाँ जी। और एक आपके ये जो बात आपने अभी कही, इससे ये पता चलता है कि जो साधारण इंसान होता है, जो सच्चा इंसान होता है, जो ईश्वर का बंदा होता है, उसके साथ अगर कुछ ऐसा घटित हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं बचाव जो है वो मालिक अपने आप कर देता है।
0: बिल्कुल सही बात। जी।
1: तो कल के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा भी जो FM गोल्ड के जितने भी कार्यक्रम हैं, नीरज जी के लिखे हुए गीत जो हैं वो तो हमारे कार्यक्रमों में गूंजते रहते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कल का आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। मैं अपने सभी लिसनर्स से कहूँगी कि माबलंकर हॉल रेडियो स्टेशन के बहुत पास है, हमारे आकाशवाणी के पास में ही है, आप ज़रूर यहाँ जाएं और इतना दिलचस्प और इतना शानदार कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसे ज़रूर ज़रूर जाकर देखें और इंजॉय करें सभी गीतों को। बहुत बहुत शुक्रिया मृगांक जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: इस बातचीत के लिए, और इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई है तो एक गीत तो बनता है। अभी आपने लिखे जो खत तुझे का जिक्र किया, तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में ये गीत महक रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो अब मैं बातचीत के बाद ये गीत सुनाने वाली हूँ अपने सभी लिसनर्स को। बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद।
1: तो ये नीरज जी के सुपुत्र जिन्होंने अभी हमसे बातचीत की और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि भाई कल जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बड़ा ख़ास है, और नीरज जी का जहाँ भी नाम आता है वो अपने आप जो बात है वो ख़ास हो जाती है। तो अब बारी है उन्हीं का लिखा हुआ एक गीत सुनने की।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं मन भावन आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ। और वक्त अब आपसे इजाज़त लेने का है। चलते चलते कुछ नाम मैं पढ़ देती हूँ। मेरठ शोभापुर से हमारे पास दिग्दर्शन गौड़ साहब हैं, कविता हैं, कर्ण हैं, शक्ति हैं, रिया हैं, जया हैं और दर्शन भाई हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। इसी के साथ साथ जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल हैं, इन्होंने हमें उत्तम नगर दिल्ली से संदेशा भेजा है। ताज मोहम्मद अंसारी साहब और हमारे बीच में और कौन है भला देखना होगा, गुलाम साबिर राही हैं और महराज जहां हैं। अब मुझे लग रहा है कि गीत जो है वो ज़्यादा आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुखड़ा सुन लेते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला मलेशिया से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर है। पदक तालिका में भारत 20 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य सहित 82 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सबसे अधिक लाभ ने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल तंजानिया के लिए रवाना हो गया है। प्रतिनिधिमंडल 5 से 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अंतर संसदीय संघ IPU की 153वीं सभा और इससे जुड़ी बैठकों में शामिल होगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। वहीं क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 25वें ओवर में 2 विकेट

4:11:02 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सभी का स्वागत करती हूं और आइए अब आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पे आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। साथियों, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर हर घंटे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में शाम 5:00 हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर आप मुखातिब होंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते के साथ, जिसमें आपके साथ मैं सीमा वर्मा तो रहूंगी लेकिन हमारे साथ कुछ गीत रहेंगे जो रेट्रो होंगे। कार्यक्रम समाप्त होते होते शाम के 6:00 जाएंगे। 6:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 6:10 पर कार्यक्रम विश्लेषण आप सुन सकते हैं। शाम 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे और 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और इसके आगे की जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचानी है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत गीत, आइए इसे सुनते हैं।

अपनों के साथ कितनी खूबसूरती से हम इस जीवन की घड़ियों को समेटते हैं और फिर उन्हें यादगार पलों में तब्दील कर देते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz और हम आप तक पहुंचा रहे थे आज की कार्यक्रमों की जानकारी। साथियों, 7:10 पर शाम आप हमारा स्पेशल सीरीज का कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा सुन सकते हैं। वहीं 7:45 पर प्रादेशिक समाचार होंगे और रात 8 बजे हिंदी में समाचार, 8:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे साथियों, और 8:10 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम मधुरिमा। इसे पेश करेंगी हेमा शमी और ये कार्यक्रम अपने आप में इसीलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि इस कार्यक्रम में जो गीत हम आप तक पहुंचाते हैं उसके शास्त्रीय अंग की जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं। 8:30 का वक्त स्पोर्ट्स स्कैन का होगा, वहीं 8:45 पर आप सुन सकते हैं समाचार संध्या हिंदी में, और रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट होगा। और अगर हम फिल्मी गीतों के कार्यक्रम की बात करें तो आप हर सिंगार कार्यक्रम सुन सकते हैं रात 10:30, जिसे रोहिणी डागर प्रस्तुत करेंगी, और 11:40 पर कार्यक्रम गीत मेरे मन में एक बार फिर रोहिणी के साथ आप सुन सकते हैं। तो ये तो साथियों जानकारी रही आज के कार्यक्रमों की जो एफएम गोल्ड 100.1 पर आप सुन सकते हैं।

0: प्रतिनियुक्ति के आधार पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक निदेशक सतर्कता का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता, मानक आयु सीमा, आवेदन प्रपत्र का प्रोफॉर्मा आदि का विवरण संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है upsc.gov.in/vacancy-circulars। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में प्रशासनिक अधिकारी का एक पद स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए भरना चाहता है, जिसे आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये लिंक fti.ac.in/recruitment/advertisement for the post of administrative officer on deputation basis। राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के बल्लभगढ़, हैदराबाद और अहमदाबाद यूनिट्स के लिए आवश्यकता है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 2 तथा प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 की। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ncbindia.com। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैकॉन लिमिटेड को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों की, जिनमें विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्र शामिल हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं केमिकल इंजीनियरिंग। पदों की संख्या 58 है। शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, आयु, वेतनमान, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी आप हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.mekonlimited.co.in। वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान में लेखाकार का एक पद रिक्त है। उम्मीदवार को वाणिज्य में स्नातक, साथ ही वाणिज्यिक या शैक्षणिक संस्थान अथवा सरकारी कार्यालय में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या SAS लेखाकार के रूप में स्थापना संबंधी मामलों में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान भी वांछनीय योग्यता मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि आरंभ में 2 वर्ष के लिए है, जिसे IHM चेन्नई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के साथ 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना चाहिए, जिसे www.ihmchennai.org से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पद से संबंधित नियम, शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन है 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ ही देर में अब हम कार्यक्रम परिक्रमा सुनेंगे।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज चुके हैं और हवाओं में घुले इस खूबसूरत शाम के साथ समय हो गया है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम परिक्रमा का। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा।
1: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड वेल जया, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टू स्टार्ट आवर शो, इजंट इट?
0: बिल्कुल,
1: द वेरी ब्यूटीफुल फिल्म वाटर दैट वाज डायरेक्टेड बाय जेपी दादा, हुज बर्थडे इज टुडे,
0: उनके बारे में हम बात भी करेंगे आज के शो में।
1: बात करेंगे और एक आप देखिए ना, लिरिक्स बाय जावेद अख्तर, कितनी खूबसूरत सी बात कही है कि सरहदें तो इंसानों के लिए हैं, सोचो मैंने और तुमने क्या पाया।
0: बिल्कुल सायरा, और आज शाम जब चाय के साथ मैं स्टूडियो में आ रही थी तो मेरे जहन में बार बार सरहदों, आज़ादी और इस बहती हुई पवन की कुछ खूबसूरत लाइनें गूंज रही थी। और आज का हमारा यह सफ़र किसी सरहद की पाबंदी में नहीं बल्कि शुरू को एक खुले आसमान में उड़ने जैसा है।
1: Absolutely, and हसबे दस्तूर लाते हैं हम आपके लिए ताज़े तरीन खबरें। And of course, since the name of the show is Parikrama, so that means we'll do Parikrama of the country. We'll go to different parts of our country and see what interesting stories our correspondents have from there. Because a lot of things are happening, and yeah. You know, a lot of these stories they don't become part of our, you can say, news bulletins because they are not hard news नहीं होती, but they are worth sharing with our listeners, and that's why we come every day in our show Parikrama. Without much ado, let's start with the headlines, Jaya.
0: Bilkul.
1: Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah.
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today.
0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया।
1: And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bagged gold with 19-run win over Pakistan in the finals. As always, we start our show with our special segment called Dateline Inter, in which we discuss some important topics. And today, Jaya, we're going to talk about a very, very important thing, that is rethinking waste from kitchen scraps to city spaces. Well, what if the waste we that throw away, you know, that can actually get a second life?
0: हमारे घरों और मोहल्लों से लेकर मंदिरों, घाटों और त्योहारों तक भारत कचरे को संसाधनों में बदलने के नए तरीके खोज रहा है।
1: Absolutely, Jaya. And if we see that, you know, हम लोग की अगर 20 साल पहले की भी अगर बात करोगे ना, हम लोग का जो बचपन था या of our parents, you know, there was a culture of repairing things. You know, I still remember कि अगर हम लोग के स्कूल की zip खराब हो जाती थी bags की, तो you know हम लोग इकट्ठा करते थे जितनी जहाँ पे zips लगना होते। And these days, you know, if a zip is not working, we simply try to buy a new bag. Imagine the kind of waste we are generating. And not just that, even you know, it's not very wise and prudent use of the resources that are there, right?
0: जी सायरा, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम कचरे से कुछ कुछ क्राफ्ट भी बनाते थे जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता था, हम वेस्ट का बकायदे मतलब बहुत अच्छे से यूज करते थे उसका।
1: Absolutely. I mean, I remember in our summer vacation, you know, all the cans, you know, पहले पे पाउडर भी आपको याद होगा, तो वो प्लास्टिक के में नहीं आते थे, they used to be metal cans.
0: Even जो मैच बॉक्स के जो डब्बे होते ना, उसपे भी हमने कई वेलवेट पेपर वगैरह चिपका के बहुत तरह के क्राफ्टिंग की है, जो स्कूलों में उसके लिए प्राइज भी मिलते थे हमें।
1: Absolutely. So, but I think now we are going back to our basics because that culture is again, now people are realizing their mistakes, you know, that we are generating so much of waste. Because the other day only my daughter, she said that, you know, let's make a pen stand out of this box, you know. I said, okay, fine, at least your brain is now working in that direction. Okay. And it's very important, Jaya, and to our listeners also, we want to convey that it's very important to reuse the waste, because, you know, that will generate less waste on the earth, there would be less burden, and of course there'll be wiser use of the resources. And now the festive season is just around the corner, Jaya. So festivals mein kitna waste generate hota hai, you know. Yeah, you know, so it's very important that we be very mindful, because you know, as our festivals they fill the country with faith, color and celebration, a new thought is also taking root. How can we celebrate with joy while at the same time leaving behind a cleaner and a greener world?
0: बिल्कुल, तो आज हम कचरे से कमाई और जश्न से जिम्मेदारी तक के सफर को जानेंगे।
1: Yes, kitchen waste can become compost, coconut waste can become useful products, discarded materials can become public art, and even flowers offered in prayer can return to our lives in a new form altogether.
0: और ये जो सोच है ना तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि भारत कचरा प्रबंधन के लिए ज्यादा सर्कुलर और संसाधन कुशल तरीके की ओर बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत शहर सोर्स पर कचरा अलग करने, कचरा प्रोसेस करने और कचरे से मूल्यवान चीजें निकालने के काम को मजबूत कर रहे हैं।
1: But the transformation doesn't begin only at a large processing plant, yeah, it can actually start right inside our homes.
0: अगर हम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का उदाहरण ले तो वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन के सुबा लक्ष्मी ने दिखाया है कि कैसे एक साधारण सा कंपोस्ट बिन रोजाना के किचन के कचरे को किसी काम की चीज में बदल सकता है। उनके किचन से निकलने वाले गीले कचरे को कंपोस्ट में बदला जाता है और उनके बगीचे में निकलने वाले गीले इस्तेमाल किया जाता है इन गीले कचरों को, और इस तरह से किचन से लैंडफिल तक जाने के बजाय वह कचरा वापस मिट्टी में मिल जाता है और पौधों को बढ़ने में मदद करता है। तो बहुत अच्छा खाद बन करके निकलता है ये हमारा गीला कचरा।
1: That's right. In fact, even like the fruit peels, especially you know all the citrus fruits, their peels, be it oranges, lemons, many people they kind of ferment it and use it as cleaners also. They are very good disinfectants. And well, this is not just an isolated example. During the COVID-19 pandemic, Chandigarh resident Kamaljeet Kaur Deol began composting wet kitchen waste at home. What started as a household practice gradually became an effort to spread awareness and encourage other citizens to compost at home.
0: और जब ऐसी व्यक्तिगत आदतें सामुदायिक आदतें बन जाती है तो उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में स्वच्छ बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट लर्निंग सेंटर युवाओं को व्यवहारिक वेस्ट मैनेजमेंट का अनुभव दे रहा है, जिसमें घर पर कंपोस्टिंग से लेकर सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग तक शामिल है।
1: And similar centers are planned across 141 municipal areas, bringing practical learning about responsible waste management closer to communities. Now let's head to the northeast to the state of Assam, where something that has long been seen as a problem is now being transformed into an opportunity.
0: तो यहाँ बात करते हैं मोरीगांव जिले के बोरजिला गांव की, जहाँ पे महिलाएं जल कुंभी, जिसे स्थानीय भाषा में वहाँ पे पानी मेटिका कहा जाता है, उससे हस्तशिल्प की चीजें बना रही हैं। जलकुंभी जलाशयों में तेजी से फैलती है और मछली पकड़ने तथा परिवहन जैसी गतिविधियों में बाधा डाल सकती है।
1: But the women of this village, with support from the Assam State Rural Livelihoods Mission, have found another way to look at it. They transformed the plant into useful handicrafts, creating an additional source of livelihood. Participating women earn at least 10,000 rupees a month through this work. I think that's very smart, isn't it?
0: बिल्कुल, मतलब जिससे हमें बाधा डाल रही है हमारे परिवहन में और भी चीजों में, उसका इस्तेमाल करके हम उससे कमाई भी कर ले और उससे अच्छी अच्छी चीजें बना ले। तो अब चलते हैं बिहार की राजधानी पटना की तरफ, जहाँ हर दिन लगभग 25 से 30 मीट्रिक टन नारियल के छिलके का कचरा निकलता है। पहले इस कचरे का एक बड़ा हिस्सा निपटान के लिए भेजे जाने वाले कचरे में ही मिल जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए पटना नगर निगम ने दानापुर इलाके में एक प्रोसेसिंग सुविधा केंद्र स्थापित किया है।
1: Well, if we talk about coconut, I think it's the only fruit or only plant or tree, you can say, jiska har ek hissa use hota hai. So it's very surprising ki kyun wo kachre mein ja raha tha, because, you know, be it coir, be it, you know, anything, you know, so there are so many things, oil, fruit, everything is useful of that tree. And if we talk about this facility at Patna, it's designed to process coconut shells, the fibers and other residues, and it converts them into useful products. Wet residues can be processed into organic compost. Coconut fibers can be turned into coir ropes, which can be used in construction, packaging, mats and handicrafts.
0: Iske alawa coco pit bhi hai. इसका इस्तेमाल खेती और बागवानी में होता है, जिसमें नर्सरी और छत पर बने बगीचे भी शामिल हैं। इस प्लांट की शुरुआती प्रोसेसिंग क्षमता रोजाना लगभग 10 टन है और इसे बढ़ाकर रोजाना 30 टन करने की योजना है।
1: So something as ordinary as a discarded coconut shell can become part of a new economic cycle.
0: और कचरे को सिर्फ खाद या कमर्शियल प्रोडक्ट्स में ही नहीं बदला जा रहा है बल्कि इसे हमारी सार्वजनिक जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है.
1: यस एंड आई एम श्योर दैट यू वुड हैव नोटिस यू नो इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इवन इन दिल्ली वी हैव नोटिस दीज वेस्ट टू वंडर पार्क्स. अगर आप सराय काले खान की तरफ जा रहे हैं यू टेक दैट रूट यू वुड नोटिस देयर इज अ वेस्ट टू वंडर पार्क एंड इट्स ब्यूटिफुल जिसमें आप अंदर जाएंगे सो ऑल द यू कैन सी रस्टेड नट्स एंड बोल्ट्स उसकी इतनी खूबसूरत उन्होंने कभी डायनासोर्स बनाए हैं इवन द सेवन वंडर्स उन्होंने बनाए इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंग एंड वेल यू नो दीज आर द पार्क्स वेयर डिस्कार्डेड मटेरियल्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर्स एंड अदर अट्रैक्शंस. चंडीगढ़'स फेमस रॉक गार्डन ऑफ कोर्स वी ऑल नो इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव रीयूज हैविंग बीन क्रिएटेड यूजिंग इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट. द सिटी हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ वेस्ट वंडर पार्क दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 1.75 एकर्स वेयर मटेरियल्स सच एज आयरन शीट्स rods, fans and automobile parts have been reused.
0: बिल्कुल सायरा और अभी आपने जिक्र किया वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली का तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ श्रोताओं को कि इस पार्क में इंडस्ट्रियल वेस्ट स्क्रैप मेटल और बेकार हो चुके ऑटोमोबाइल पार्ट्स से तरह तरह की आकृतियां और स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और ये सिर्फ देखने में आकर्षक नहीं होते हैं बल्कि इस पार्क में क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है जिसमें सोलर ट्री और रूफ टॉप सोलर पैनल भी लगे हैं जिनकी कुल क्षमता 50 किलोवाट है.
1: Yes, so if you're living in Delhi, if you still haven't visited these parks, please go and admire their beauty because especially the, you know, the where they have recreated the seven wonders of the world, you know, so उन्होंने same proportion रखा है. So you would feel it's just a different size, but the same monument is right in front of you, be it the Taj Mahal or the Leaning Tower of Pisa or even the Eiffel Tower. It's just so amazing. And now let's bring this idea into a space that is deeply connected with all of us. Of course, we are talking about our festivals. Well, India's festivals come in many forms. Ganesh Chaturthi abhi hui thi, Durga Puja is just around the corner, Diwali bhi aane wali hai, Chhat bhi aane wali hai. So each of these festivals, they have their own set of rituals, colors and traditions.
0: Lekin unme bhi ek zaruri baat समान है कि वे लोगों को घरों मंदिरों पंडालों सड़कों नदियों और घाटों जैसी साझा जगहों पर एक साथ लाते हैं और अब इन जगहों को साफ सुथरा रखना भी जश्न का ही एक हिस्सा बनता जा रहा है.
1: वेल बनना चाहिए भी बिकॉज अगर हम लोग अपना जश्न मना के चले जाते हैं और पीछे बहुत सारा कचरा छोड़ जाते हैं तो वो एक तरह से यू नो इट कैन इट गिव्स अ वेरी सॉरी पिक्चर.
0: और ये सिर्फ नेचर को नहीं बल्कि हमारे लिए भी नुकसानदेह है जो हमें बाद में समझ में आता है और उस समय हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है.
1: एब्सोल्युटली. सो इट्स आई थिंक द राइट टाइम टू टेल आवर लिसनर्स दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑल आवर फेस्टिवल्स वी शुड बी माइंडफुल ऑफ नॉट लीविंग बिहाइंड अ बर्डन ऑन द अर्थ. यू नो लेट्स बिगिन विद समथिंग दैट इज फाउंड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप. वो क्या होते हैं? Pool, yes, flowers. Well, if we talk about the Mahakaleshwar temple in Ujjain, around 75,000 to 1 lakh devotees visit every day, generating approximately 5 to 6 tons of floral waste daily. Special vehicles collect these flowers and take them to a processing plant where they are converted into products such as compost, briquettes and biofuels.
0: बिल्कुल सर. अभी हमने कुछ त्योहारों की बात की तो इसमें याद आता है दिवाली जो हमेशा से ही साफ सफाई से गहरा नाता रखता है. घरों की सफाई होती है पुरानी चीजों को छाटा जाता है परिवार एक साथ आते हैं और नई शुरुआत का स्वागत किया जाता है. स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान इसी जानी पहचानी परंपरा को आगे बढ़ाता है. ये कचरे को अलग अलग करने 3R यानी कि कम इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकिल यानी कि रीयूज एंड रिसाइकल और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को साफ सुथरे तरीके से त्योहार मनाने को बढ़ावा देता है.
1: दैट्स राइट. एंड ऑफ कोर्स उसके फौरन बाद ही आएगा छठ और ये यहाँ पे बहुत जरूरी है बिकॉज इफ वी सो हम लोग ने काफी कुछ काम किया लेकिन अभी भी कई जगह करना बचा है बिकॉज लास्ट टाइम बहुत सी ऐसी रील्स वायरल हुई थी कि लोगों ने आफ्टर द फेस्टिवल जो बाद में एक कहते हैं वेस्ट के पूरे अंबार छोड़ दिया था. दैट वॉज वेरी बैड बट आई एम श्योर दैट दिस ईयर वील बी माइंडफुल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल दैट वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन फेथ एंड नेचर is especially visible, you know, so it's very important कि उस faith का हिस्सा आप जो है स्वच्छता को भी बनाइए, isn't it?
0: जी. और यहाँ पे श्रद्धालु पानी के सामने खड़े होकर जब सूर्य की पूजा करते हैं तो अक्सर गंगा जैसी पवित्र नदियों के किनारे तो सफाई रखना तो जरूरी है.
1: Yes, and that makes the ghat more than just a venue. It becomes an integral part of the ritual, Jaya.
0: और पटना में नगर निगम तय घाटों पर जीरो वेस्ट छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके लिए अलग अलग कूड़ेदान लगाए जाते हैं। कूड़ा उठाने के लिए खास गाड़ियां होती है

0: गीले कूड़े से ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है और प्लास्टिक पर रोक लागू की जाती है।
1: Well, what can change is what we leave behind when the celebration ends. Because perhaps our celebration is truly complete when its joy remains with the people and its burden does not remain with the earth.
0: तो आइए आस्था के साथ जश्न मनाएं, जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाएं और कचरे को दौलत में बदलें।
1: Until next time, stay clean, stay green and keep the spirit of Swachhata alive. And before we proceed, let's remind our listeners that Prime Minister Modi's monthly radio program, Mann Ki Baat, has completed 12 years today. Yes, the first episode of the program was broadcast on this day in 2014 on the occasion of Vijaya Dashmi. The 138th episode of Mann Ki Baat was broadcast recently. And over the past 12 years, Mann Ki Baat has provided a unique platform to highlight the positive transformation taking place across the country and to encourage citizens to participate actively in India's development journey.
0: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है। तो परिक्रमा की शुरुआत हम हरियाणा से करते हैं, जहां राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प विचार से विस्तार तक की शुरुआत की है।
2: ये 3 महीने का राज्यव्यापी उद्यमिता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के सभी 23 जिलों में उद्यमी प्रतिभाओं को खोजना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया। ये कार्यक्रम व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जन सेवा कार्यकाल को समर्पित है। देश की सेवा के इन 25 वर्षों से प्रेरणा लेते हुए स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प नागरिकों को सर्वोपरि रखने की उसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये हरियाणा के युवा विचार और उद्यमियों को ऐसे समाधान तैयार करने के लिए प्रेरित करता है जो लोगों का जीवन बेहतर बनाए, सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाए और विकास का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएं। विचार से निवेशक तक की एकीकृत यात्रा के रूप में तैयार किया गया ये कार्यक्रम जमीनी स्तर की उद्यमशीलता को जगाना चाहता है। इसके तहत एक राज्यव्यापी पाइपलाइन बनाई जाएगी, जो होनहार विचारों को खोजेगी, उद्यमिता कौशल विकसित करेगी और स्टार्टअप्स व इच्छुक उद्यमियों को मेंटरशिप, अनुदान, निवेशकों, राज्य सरकार की सहायता और स्टार्टअप हरियाणा के व्यापक इकोसिस्टम से जोड़ेगी। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
1: And now we head to my favorite place, Jaya. Yes, to Goa. Fresh, chemical-free vegetables and fruits that are grown in Goa. Well, that's the promise of a new brand called Goa Fresh that was recently inaugurated by Union Minister Shivraj Singh Chauhan. Let's hear more from our Goa correspondent.
3: The brand is part of two big missions, Swayampurna Goa and Vocal for Local. Certified local farmers and self-help groups will grow the produce without chemicals. It will reach markets in Goa and outside the state too. Consumers can buy it at retail outlets and at the outlets of the Goa State Horticulture Corporation. The idea is simple. Farmers get a fair price, consumers get organic food. The Goa government wants to reduce dependence on vegetables brought in from neighboring states. A warehouse and a cold chain are also on the cards with the help from Mopa Airport. The famous Goan mango, Mankurat, is already reaching many countries. There is also a policy for Farmer Producer Organization or FPOs, and two new startup village entrepreneurship programs have been launched. Together, they aim to make Goa's villages self-reliant, a step towards national goal of Atmanirbhar Bharat. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
0: भारतीय वायु सेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस वर्ष समारोह का विषय है भारतीय वायु सेना चूक अडिग और सटीक। इस पर और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता।
4: टू सेलिब्रेट दिस ईयर्स एयर फोर्स डे, वेरियस परफॉर्मेंसेज विल बी कैरिड आउट इंक्लूडिंग द एयर फोर्स डे परेड, स्टैटिक डिस्प्ले ऑफ इंडियन एयर फोर्स एसेट्स, परफॉर्मेंसेज बाय टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, फॉलोड बाय अ परफॉर्मेंस बाय द इंडियन एयर फोर्स ड्रमर्स टीम एंड एन एयर डिस्प्ले बाय हेरिटेज फ्लाइट। स्टैटिक डिस्प्ले ऑफ फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू सरफेस गाइडेड वेपन सिस्टम्स, रडार्स एंड वन वे attack unmanned aerial systems will also be showcased. These platforms highlight the Indian Air Force continuing focus on promoting Make in India. Team Shakti, the Indian Air Force's premier all-women air warrior drill team, will also

0: death in 1898, she practiced medicine in Kolkata till her death in 1923.
1: श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है दिग्गज अभिनेता घनश्याम नायक जी की, जिन्हें पूरी दुनिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्यारे नट्टू काका के रूप में जानती है। घनश्याम जी ने बचपन में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था और श्रोताओं, शायद ही आपको पता हो कि साल 1960 की मशहूर फिल्म मासूम का वह कालजाई बाल गीत नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए और जिस नन्हे बाल कलाकार पर फिल्माया गया था वे कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे घनश्याम नायक जी ही थे।

0: अपने 5 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में करीब 350 टीवी सीरियल में भी काम किया। लेकिन साल 2018 में शुरू हुए शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका के किरदार ने उन्हें भारत के हर घर का सबसे चहेता सदस्य बना दिया। आज नट्टू काका भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जेठालाल से पगार बढ़ाने की उनकी वो मासूम जिद और उनकी मासूमियत हमेशा याद आएगी।
1: And well, Jaya, if you remember, in the 60s and 70s, एक हमेशा ऐसा सॉन्ग पेपी होता था जिसमें सारे लोग एक रूम में जो है ट्विस्ट कर रहे होते थे, especially that song that we have in our Hindi cinema, you know, आओ ट्विस्ट करें, but that was inspired by Chubby Checker's song called Let's Twist Again. Yes, that was the biggest UK hit of Chubby Checker that came in 1962. Let's hear that song on Chubby Checker's birthday.

श्रोताओं, बात करते हैं रुपहले पर्दे के ऐसे जादूगर की जिन्होंने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति के जज्बे को नई ऊंचाई दी। जी हाँ, आज राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मशहूर फिल्म निर्देशक और निर्माता ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता जी का जन्मदिन है। भारतीय सिनेमा में जब भी जेपी दत्ता का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने बॉजर, एलओसी कारगिल जैसी भव्य फिल्में नजर आती हैं। और हिंदी सिनेमा में हालांकि दत्ता जी ने बहुत कम फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा सबसे हटकर होती थी। देशभक्ति और जंग पर आधारित फिल्में बनाने के कारण जेपी दत्ता को सबसे अलग एक बेहतरीन सफल निर्माता निर्देशक के रूप में माना जाता था। जेपी दत्ता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म गुलामी से की थी। इसके बाद यतीम, बंटवारा, हथियार, क्षत्रिय जैसी फिल्में निर्देशित की। साल 1997 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई बॉर्डर। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो आइए फिल्म बॉर्डर का ही अमर गीत सुनते हैं जो आज भी भारतीय की आंखों को नम कर देता है, सोनू निगम की आवाज में।

0: एंड अब जया घड़ी भी संदेशा दे रही है दैट वी नीड टू रैप अप.
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं समय हो चला है परिक्रमा के आज के अंक को यहीं समाप्त करने का. तो अनुमति दीजिए मुझे यानी जया और हमारी को होस्ट सायरा मुज्तबा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता. उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया. महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया. वहीं हॉकी में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी है. ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली है. पदक तालिका में भारत 20 स्वर्ण 26 रजत और 37 कांस्य सहित 83 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है. इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं. श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी.
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है. ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है. महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है.
2: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा. सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है. देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था. गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है. श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती. हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है. ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया. सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है. आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है. एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है. न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 37वें ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said the Narendra Modi government is developing a complete

गाते गुनगुनाते हम भी यही चाहते हैं कि ये जो सफर अभी अभी शुरू हुआ है ये चलता रहे, बिल्कुल चलता रहे। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की आहट भर से, जी हाँ, किसी की आहट भर से माहौल जो है वो महक सा जाता है। और फिलहाल मेरे स्टूडियो में ऐसा ही माहौल है, भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। किसकी भला? उन गीतों की जो आप तक पहुंचाने हैं। जनाब, आपने सुनना शुरू कर दिया है क्या भला, गाते गुनगुनाते आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 के साथ शनिवार की जानदार शानदार शाम में साहब आपके साथ मैं सीमा वर्मा और एक हवा का झोंका अभिजीत जी की आवाज में। पहला गाना

हवाओं में रंग सा है, बहारें जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं, सुहानी हैं, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, खुद को खुद की ही नज़र लग जाती है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ। याद करिए, पिछले शनिवार जब हमारी मुलाकात हुई गाते गुनगुनाते में, तो हमने मौसम की बहुत तारीफ की, हमने मौसम की बड़ी बलाएं ली और हमने कहा कि दिल्ली का मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो गया है, बड़ी ज़बरदस्त करवट ली है मौसम ने, और अब मौसम जो है वो ठंड की तरफ को ट्रांसफर हो रहा है जी, धीरे धीरे। लेकिन देखिए, मौसम का अपना मूड होता है साहब। अभी क्या हाल है, फिर से कहने लग गए हैं कि गर्मी है, पता नहीं क्या हो गया, दो दिन का बोनस मिला था दिल्ली वालों को और उसके बाद क्या हो गया। अब मौसम को तो हम कह ही सकते हैं कि हद कर दी आपने।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

80s का दौर, डिस्को म्यूजिक सर चढ़कर बोलता था। जी हाँ, आज भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब नया नया सा था, इसीलिए हर किसी को बहुत बहुत भाता था। बहरहाल 5:24 और 55 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1, आपके साथ में सीमा वर्मा।

फिल्म हथखड़ी के इस गीत के बाद आइए अब आप तक पहुंचाते हैं वो गीत जो 1987 में बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, और ये वो दौर था जब बहुत छोटे थे हम, हमें ये भी नहीं पता था कि कौन कौन से सिंगर्स हैं, यानी नाम से सिंगर्स को नहीं पता था, लेकिन ये गाना रेडियो पर रोज सुनाई देता था। अब आप सोचेंगे कौन सी फिल्म है, तो जनाब हम बात कर रहे हैं राज एन सिप्पी की डायरेक्शन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म लोहा। 23 जनवरी 1987 को ये फिल्म रिलीज हुई और धर्मेंद्र साहब की 1987 की ये दूसरी हिट फिल्म।

गानों को एंजॉय कर रहे हैं आप, ये जानकर अच्छा लग रहा है। और आपको समय भी बताना ज़रूरी है साहब, 5:56 पूरे 36 मिनट हो गए।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और आपके करीब आता हुआ गीत बोल राधा बोल फिल्म से पूर्णिमा और शानुदा की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

गाते गुनगुनाते का सफर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 के साथ शनिवार की जानदार शानदार शाम सीमा वर्मा के साथ। अभी तक जो गीत आप तक पहुंचाए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे लगेंगे, एक और खूबसूरत गीत, तू जानता नहीं है मेरा साथ छोड़कर तूने तो अपने साथ भी अच्छा नहीं किया।

साथियों, बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिनकी स्टोरी भी बहुत शानदार होती है, जिनके गीत भी बहुत दमदार होते हैं और जिन फिल्मों को हम बहुत बहुत बहुत सालों तक याद रखते हैं। इनफैक्ट जेनरेशंस आगे बढ़ती चली जाती हैं और उन फिल्मों को याद रखा जाता है। नेक्स्ट जेनरेशंस जो भी आती हैं वो उन फिल्मों को देखना पसंद क्यों करती हैं? क्योंकि उनके गीत बहुत शानदार होते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है जो 93 में रिलीज हुई। गाना सुनिए या फिल्म का नाम बताऊं? चलिए, बाजीगर फिल्म के सभी गीत बहुत बहुत बढ़िया रहे, एक गीत मैं लेकर आई हूँ आपके लिए।

आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत आपकी नजर कर रही हूँ, आपको इस गीत के हवाले छोड़ी जा रही हूँ। एक फुट टैपिंग नंबर है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी इस गीत को एंजॉय कीजिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। यूं ही मुस्कुराते रहिए साथियों, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।

0: महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. Details from our correspondent.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah announced 101 crore rupees for cow shelters at the Sammelan, attended by around 35,000 Gopalaks from 11 districts. He also virtually performed the foundation stone ceremony.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। साफ सफाई से हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है और आसपास का वातावरण भी साफ रहता है। लेकिन केवल शौचालय बनाना या कूड़ा उठाना ही स्वच्छता नहीं है, इसके लिए लोगों की आदतों और सोच में भी बदलाव जरूरी है। इसी सोच के साथ स्वच्छ भारत मिशन में लोगों के व्यवहार में बदलाव को विशेष महत्व दिया गया है। इस मिशन में लोगों को केवल जानकारी देने के बजाय उनसे बातचीत, सामुदायिक भागीदारी और मिलकर काम करने पर जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014

0: 1972 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना था। मिशन के लोगो में गांधी जी का चश्मा दिखाया गया है। इससे स्वच्छता के संदेश को एक पहचान मिली और लोगों को मिशन से आसानी से जुड़ने में मदद मिली। इसी प्रयास के तहत 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दो प्रमुख हिस्से हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा, उसके इस्तेमाल और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और साफ सार्वजनिक स्थानों पर जोर दिया जाता है। महात्मा गांधी के स्वच्छता और स्वयं सेवा के विचारों को भी स्वच्छ भारत मिशन के साथ जोड़ा गया है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के दौरान चंपारण से स्वच्छता के अभियान की शुरुआत की थी। उनका आदर्श गांव ऐसा था जहां पूरी स्वच्छता हो और गांव की गलियां और सड़कें अनावश्यक धूल से मुक्त हों। अपनी पुस्तक आश्रम ऑब्जर्वेंसेस इन एक्शन में गांधी जी ने स्वच्छता बनाए रखने को जरूरी और पवित्र सेवा बताया। उनके सेवाग्राम आश्रम में सफाई के लिए बाहर से मजदूर नहीं बुलाए जाते थे। आश्रम के सदस्य बारी बारी से खुद सफाई करते थे। आश्रम के नियमों में हाथ धोने और साफ कपड़े से हाथ पोछने पर भी जोर दिया जाता था। स्वच्छ भारत मिशन के संदेशों में गांधी जी की इसी सोच को आगे बढ़ाया गया। स्वच्छाग्रही शब्द गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित है। इसके माध्यम से नागरिकों और सफाई कार्यकर्ताओं को स्वच्छता के लिए मिलकर काम करने वाले भागीदार के रूप में जोड़ा गया। इस तरह गांधी जी के स्वच्छता के विचारों को सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार में स्थायी बदलाव से जोड़ा गया। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव के लिए किस तरह संवाद और जन भागीदारी का सहारा लिया गया है और इस प्रयास को आगे बढ़ाने में महिलाओं और बच्चों की क्या भूमिका रही। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाने और उनकी आदतों में बदलाव लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए।
1: श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन में यह समझा गया कि केवल शौचालय बनाना या कचरा प्रबंधन की सुविधा देना पर्याप्त नहीं है। लोगों को इन सुविधाओं का सही इस्तेमाल करने और स्वच्छता की आदत अपनाने के लिए लगातार जागरूक करना भी जरूरी है। इसीलिए मिशन में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार यानी SBC को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसका मतलब है कि लोगों से बातचीत करके उन्हें साथ जोड़कर और मिलकर काम करके स्वच्छता की आदत को मजबूत किया जाए। गाँव में स्वच्छाग्रही लोगों से घर घर जाकर बातचीत करते हैं। वे शौचालय के इस्तेमाल, साफ सफाई और सुरक्षित स्वच्छता के बारे में जानकारी देते हैं। छोटे समूहों में बैठकें, घरों में बातचीत और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। गाँव में निगरानी समितियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समितियाँ खुले में शौच की जगह पर नजर रखती हैं और लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती हैं। गाँव में बैठकों और रात्रि चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी स्वच्छता का संदेश लगातार दिया गया। श्रोताओं, स्वच्छता का संदेश केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहा। इसे नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, जादू के कार्यक्रम, दीवारों पर चित्र और दूसरे स्थानीय माध्यमों से भी लोगों तक पहुंचाया गया। इससे स्वच्छता का संदेश लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया। शहरी क्षेत्रों में डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल किया गया। 3,300 से अधिक शहरों में 67,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय को गूगल मैप्स पर उपलब्ध कराया गया। इससे लोगों को आसपास के सार्वजनिक शौचालय खोजने में मदद मिली। स्वच्छता ऐप के जरिए नागरिक सफाई से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, मोबाइल संदेश और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से भी स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन में प्रसिद्ध लोगों को भी स्वच्छता के संदेश से जोड़ा गया। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर ने स्वच्छ भारत मिशन के अभियानों में हिस्सा लिया। अमिताभ बच्चन ने 2017 में दरवाजा बंद अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना था। फिल्म और लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से भी स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचा। टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म ने शौचालय और स्वच्छता के मुद्दे को लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाया। यानी स्वच्छ भारत मिशन में लोगों को केवल संदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करने, उन्हें जोड़ने और स्वच्छता को सामुदायिक जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया गया।
0: श्रोताओं, स्वच्छता का असर महिलाओं और बच्चों के जीवन पर भी पड़ता है। सुरक्षित और सुविधाजनक स्वच्छता से महिलाओं को कई तरह की परेशानियों से राहत मिल सकती है। वहीं बच्चे स्वच्छता की अच्छी आदतों को अपने घर और आसपास के लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों ने स्वच्छता अभियान में किस तरह भागीदारी की और स्वच्छता की आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए गए।
2: श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं को स्वच्छता से जुड़े कामों में सक्रिय भागीदार बनाया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छता के संदेश से जोड़ा गया। स्वच्छता में महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान भी जुड़ा है। जल शक्ति मंत्रालय के साथ किए गए एक अध्ययन में 93% महिलाओं ने बताया कि शौचालय की सुविधा मिलने के बाद उन्हें खुले में शौच के दौरान किसी व्यक्ति या जानवर से नुकसान का डर नहीं रहा। 91% महिलाओं ने बताया कि उनका 1 घंटे तक का समय बचा और लगभग 1 किलोमीटर तक जाने से बचाव हुआ। बिहार में लोग शौचालयों को इज्जत घर भी कहने लगे हैं। ये दिखाता है कि शौचालय को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। बच्चों को भी स्वच्छता का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भागीदार माना गया है। स्कूलों में स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियाँ, जागरूकता अभियान, श्रमदान और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को स्वच्छता की अच्छी आदतें अपनाने और उन्हें अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। श्रोताओं, स्वच्छता की आदत को बनाए रखने के लिए पुरस्कार और सम्मान का भी इस्तेमाल किया गया है। गांवों और शहरों में स्वच्छता के अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों, स्थानीय लोगों और स्वच्छता से जुड़े कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। शहरों में स्वच्छता की स्थिति देखने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण भी कराया जाता है। इसके जरिए शहरों में सफाई और स्वच्छता की स्थिति का आकलन किया जाता है। इसमें नागरिकों की राय और भागीदारी को भी महत्व दिया गया है। वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले दौर में लगभग 1 लाख लोगों ने अपनी राय दी थी। वर्ष 2021 में छठे दौर के दौरान करीब 5 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा में स्वच्छता के प्रति जागरूकता से आगे बढ़कर लोगों की भागीदारी और सामुदायिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य है स्वच्छता केवल किसी अभियान का हिस्सा न रहे बल्कि लोगों की रोजमर्रा की आदत बन जाए। स्वच्छता तभी लंबे समय तक बनी रह सकती है जब परिवार, स्कूल, पंचायत, स्थानीय संस्थाएं और पूरा समुदाय मिलकर इसके लिए काम करे। इस तरह स्वच्छ भारत मिशन में संवाद, जन भागीदारी और लगातार प्रयासों के जरिए स्वच्छता को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है।
0: श्रोताओं, स्वच्छता केवल साफ जगह बनाने का काम नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों और जिम्मेदारी से भी जुड़ी है। स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उन्हें बातचीत, सामुदायिक भागीदारी और मिलकर काम करने से जोड़ने का प्रयास किया है। स्वच्छाग्रही महिलाएं, बच्चे, पंचायतें और स्थानीय समुदाय इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वच्छता की ये सोच जब घर, स्कूल और समुदाय की रोजमर्रा की आदत बनती है तो इसका लाभ लंबे समय तक मिलता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुणदीप सिंह। नमस्कार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सर्वकारः गोपालन आधारितं सम्पूर्ण पारिस्थितिक तन्त्रं विकसयन् अस्ति, येन ग्रामीण अर्थव्यवस्थायै प्रोत्साहनं लभते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मासिकः आकाशवाणी कार्यक्रमः मन की बात अद्य द्वादश वर्षाणि पूरितानि। आरक्षिदलेन सूचितं यत् सार्वजनिक सुरक्षां विधिं व्यवस्थां यातायात संचारं सुनिश्चेतुं नवदिल्ली मण्डले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23 उत्तर 2000 तम वर्षस्य 63 उत्तरैकशततम भागः

0: व्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन।
0: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस।
2: India's economic resilience built over past decade through reforms, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Benchmark domestic indices post longest weekly losing run in 25 years. Sensex and Nifty decline around 3%. And Wall Street wraps up week on mixed note.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती पिछले दशक में हुए सुधारों के कारण हुई है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 25 वर्षों में सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3% गिरे और वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह की समाप्ति मिश्रित रुझानों के साथ की।

0: Before you proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती और लचीलापन पिछले एक दशक में राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे में निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर सेवा वितरण व्यवस्था और लगातार किए गए सुधारों के कारण मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने जीएसटी दिवाला और दिवालियापन संहिता तथा चार श्रम संहिताओं के जरिए देश के आर्थिक ढांचे को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों के आर्थिक झटकों का सामना अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए किया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आईएमएफ के अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर कर्ज बढ़ने के रुझान के बावजूद भारत का सामान्य सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 83.4% से घटकर वर्ष 2031 में 77.7% रह सकता है।
0: एंड वी आर जॉइंड इन बाय आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम रत्नागिरी प्रिंस। प्रिंस, वेलकम टू द शो।
2: हेलो सर जी, मुझे एक सवाल पूछना था
0: जी
2: कि ये आईपीएफ में जो शेयर जाते हैं, ये शेयर कितने दिन में वापस रिटर्न आते हैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद? और दूसरा सवाल था कि मुझे अगर मेरे बैंक रिकॉर्ड में से डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मेलिटीज है?
3: चलिए प्रिंस, मेरे ख्याल ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने दिन में शेयर्स वापस आते हैं। तो आपने प्रिंस जब अगर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, नॉर्मली मेरा भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से संपर्क रहा। फंड के जो पूरा कार्य प्रणाली है उसको मैंने पीछे कुछ सालों में देखा था। तो जनरली होता क्या है निशित और प्राची, और मैं प्रिंस को बताना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कागज को जमा कराने में। आपको पता ही होगा इसमें पुराने शेयर्स जिनके पड़े हैं वो वहां जाके जमा हो जाते हैं और वो उन लोगों को वापस दे दिए जाते हैं कागजी कार्रवाई पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद। तो एक दफे प्रिंस आपकी अगर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो फिर वापस आने में समय नहीं लगता है। मेरे अनुमान से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो शेयर्स मिल जाते हैं। और आपने पूछा कि उनका पिछला अगर आपने डिविडेंड देखना है, तो अगर तो डिविडेंड क्रेडिट हो रहा है, पर क्योंकि इन शेयर्स का बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट से कोई लिंकेज भी नहीं होता है, तो इसमें प्रक्रिया नॉर्मली ये होती है कि हम जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उससे हम संपर्क कर उससे हम पता करके कि इसमें किस किस साल में कितना डिविडेंड मिला था, क्यों कंपनी भी इसको अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में डाल देती है। तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में वो लोग आपको चेक करके बता सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर रहेगा अगर आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड नहीं बता रहा है तो आप कंपनी के रजिस्ट्रार से इस बात को संपर्क करके चेक कर सकते हैं जी।
0: And moving on, earlier today during the inaugural address on the theme Resilience in an Age of Flux at the 5th Kautilya Economic Conclave, Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Addressing the conclave, Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra said that rise in financial stability cannot be seen in isolation from geopolitical and geo-economic fragmentation, trade restrictions, supply shocks and technological disruptions. Mr. Malhotra stressed that the full potential of economic growth cannot be achieved without a stable and healthy financial system, adding that the Indian financial system is very resilient. However, the RBI governor also highlighted the need to remain alert to banking and financial stresses.
4: Our experience of the past 2 decades have offered us important lessons that banking and financial stresses can build overnight, but they will take years to resolve. It took us more than a decade to clean up the legacy of excessive lending and NPAs from the early 2000s. So we cannot afford to become complacent. The economic and financial costs of allowing vulnerabilities to build are simply too high.
0: Sharaji, talking of this economic conclave, this is the 5th edition. The first, of course, was held in 2022. Now, the very theme of this conclave was, the Indian economy ecosystem or the system at the flux point or the inflection point. Of course, it goes without saying that we are going through certain hard times like the West Asian crisis, the American higher bond yield, so on and so forth. So now from here on, of course, you know, we would take up this thing later on in the program. The U.S. markets and other economies as well, they have been doing, if not exceedingly well, to some extent, you know, in the positive territory they have been performing over the past at least a couple of years. What's actually ailing us, and why is the Indian markets not showing up as it should have been?
3: Well, I think if you look at the markets over the last 4 years or so, the market hasn't been all that bad. I was looking at last 4 years, you know, the market has, we were looking at about what, I think a decent return year on year. But of late, I think West Asia crisis started in February. Mm. And since September 24, we've seen relentless selling on part of the FIIs and the FPIs. They were pillars of Indian markets. We all know they were holding very substantial equity as far as their share is concerned. And if such a major, I would say, stakeholder starts exiting the market, they weren't exiting because some of them said we are an expensive market, our valuations are high. Some of them moved to Taiwan, to Vietnam, to Korea, to Japan, some of them to China as well. But I think that is rotational money. And I feel this cycle in any stock market is usual. You do hit such patches. And I think it's a matter of time before the market would bounce back. Of course, subject to how the geopolitical and the geo-economic scenario evolves from here.
0: Right.
1: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: जी सभी का नमस्कार. नमस्कार सर.
3: नमस्कार अमित जी.
5: सर मेरा प्रश्न है कि जैसे कहा जाता है नॉर्मली ट्रेंड इज ट्रेंड, ठीक है सर, बट ट्रेंड आपका है या डाउन का है, ट्रेंड रिवर्स करती है, तो रिवर्सल ट्रेंड को हम कैसे पहचाने सर? और एक चीज सर और पूछेंगे सर, ऑप्शन में जो है जो टाइम वैल्यू होता है, ये टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है? धन्यवाद सर.
3: अमित, आपका पहला है कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता लगता है. देखिए, ट्रेंड रिवर्सल बहुत लोगों का ये सवाल होता है, प्राची निशित, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. हालांकि इनका जो दूसरा वाला सवाल है उस पर मैं बहुत खोल के जवाब इनको नहीं देना चाहूँगा, जानबूझ के थोड़ा सा तो बताऊँगा. ट्रेंड रिवर्सल जब होता है, आपको एक दिन मार्केट मान लीजिए 4 दिन गिर रही है, और एक दिन मान लीजिए मार्केट में निफ्टी की बात करता हूँ 40-50-60 पॉइंट उठ गई, उसको हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं करते. ट्रेंड रिवर्सल जब कहते हैं जब ओपन इंटरेस्ट आपका बाइंग में धीरे धीरे बढ़ने लग जाए. तो जब तक ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है तब तक हम उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज्यादा चढ़ने के बाद गिरना एक टेक्निकल रैली होती है, एक टेक्निकल करेक्शन होता है, और बहुत ज्यादा गिरने के बाद चढ़ना एक टेक्निकल रैली होती है, इसको नॉर्मल बाउंस बैक कहते हैं. तो ट्रेंड रिवर्सल अमित, बहुत सारी उसकी पहचान होती है कि सस्टेंड आपको उसी मान लीजिए हरे निशान में, लाल निशान में रोज बंद हो रही है जैसे आजकल है, तो सस्टेंड अगर हमें 3-4 अगले सेशंस में वो हरे निशान में बंद होती दिखाई दे और अच्छे अमाउंट से ओपन इंटरेस्ट बने, तब हम उसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं. ऑप्शन के लिए मैं निशित और प्राची की इजाजत से, क्योंकि मुझे पीछे मालूम पड़ा था कि बहुत सारे लोग इसमें F&O ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत जानकारी लेके आ जाते हैं और बहुत हाथ जला लेते हैं, अपने नुकसान हो जाता है. तो मैं अमित आपसे, आप तो नियमित कॉलर हैं, तो मैं आपसे सलाह दूंगा, जब तक पूरी तरह से और बहुत बड़ा पैसा चलता है, अब 10 में से 9 लोग गंवाते हैं, ये सेबी का डेटा है, तो मैं तो यही सलाह देता हूं, जब तक बहुत बड़ा पैसा है आपके पास, बहुत ज्यादा हाई टेक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी नहीं है, तब तक ऑप्शंस में इस तरीके से मैं टैन वैल्यू क्या है, बीटा, अल्फा, वो सब मैं आपको बता सकता हूं. एक तो वो लंबा डिस्कशन है, पर मैं आपको समेत अमित यही सलाह दूंगा कि ऑप्शन की बजाय आप निवेशक बनिए, आप इन्वेस्टर बनेंगे तो आप इसमें पैसा कमा पाएंगे. ऑप्शन वाले ज्यादातर जो है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से सट्टा आ जाता है, आप ऑप्शन चेन में जब जाते हैं, कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि अमित ने मेरी बात को स्पोर्टिंगली लिया होगा और आपके हित में ही मैंने बात करी.
0: In fact, you were talking of the time decay, more than the time decay, Sharadji, it's like the value decay happening, you know.
3: नहीं, time, देखिए, बताने को मैं, जब आप ऑप्शन लेते हैं तो जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी नजदीक आती है, चलिए आपने क्योंकि छेड़ ही दिया है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो उसकी जो वैल्यू मेल्ट होती जाती है, और कई दफे कीमत गेन होने के बाद भी, यानी कि उसकी कॉल बढ़ने के बाद भी, आप देखते हैं कि आप नुकसान में आ जाते हैं. तो अमित, आपके पर सवाल से ऐसा लग रहा है या तो आप अभी सीख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं फिर तो ठीक है, पर सीख के अप्लाई जब ही करिएगा जब आप पूरी तरह से इसमें सक्षम हो जाएं.
1: मुंबई से हमारे साथ भूपेंद्र जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
6: धन्यवाद मैडम. मेरा एकदम सिंपल लेमैन वाला क्वेश्चन है
3: जी.
5: एसआईपी या म्यूचुअल फंड में जनरली जो सजेशन दिया जाता है प्रिंट मीडिया से या मीडिया से,
3: जी
5: लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए।
3: जी
5: लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है सर, मतलब कितने साल, 5 साल 2 साल 3 साल कैसे?
3: अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होता है। नॉर्मली देखिए भूपेंद्र, लॉन्ग टर्म वैसे तो आपको आपकी जो एनएवी है वो लॉन्ग टर्म बताना शुरू कर देती है। आप ऐसा समझिए कि आपने मान लीजिए 10 रुपए पे कोई एफपीओ उठाया और वहां से आपने एसआईपी शुरू किया और वो 2-3 साल बाद 15 रुपए उसकी एनएवी हो गई, फिर 5 साल बाद उसकी 20 रुपए हो गई। तो लॉन्ग टर्म मैं इसको कोई, आपने सवाल अच्छा, वैसे लॉन्ग टर्म हम देखें तो एसआईपी में हम 5 से 10 साल का मानते हैं अगर मैं एक स्टैंडर्ड बात करूं। पर मैंने इसको एक अलग नजरिए से भी देखा कि अगर आपको औसतन 12-15% रिटर्न पर एनम आ रहा है और वो लगातार आ रहा है तो फिर तो चाहे 3 साल भी हो जाए तो हम उसको लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आप जिसलिए आए थे कि आपका 10,000 लगाया हुआ अब 20-25,000 हो चुका है, तो वो भी एक डेफिनेशन है। पर नॉर्मली भूपेंद्र, इसको ऐसा समझिए कि 5 से 10 साल का नजरिया एसआईपी को, मैंने तो इसीलिए एसआईपी को नाम भी भूपेंद्र दूसरा दिया है, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान बजाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, क्योंकि सब्र तो वाकई में चाहिए होता है। यहीं से शायद आपका सवाल भी निकल के आ रहा है।
1: एसआईपी में खेल भी तो कंपाउंडिंग का होता है ना, कि जितने पैसे जितने वक्त तक वहां पर रहते हैं उस हिसाब से वो उसमें ग्रोथ होती है।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, क्योंकि वही पैसा वापस निवेश होता रहता है उसमें और एनएवी पे नजर रहती है निवेशकों की। तो बहुत ही सब्जेक्टिव ये बात होती है कि लॉन्ग टर्म, किसी का 7 साल होता है, कोई तो 3 साल में बेसब्र हो जाता है, कोई 5 साल में भी, कोई कोई मैंने देखा है एसआईपी के जो 10 साल तक अभी बोलते हैं हम और 10 साल करेंगे, तो ऐसे ऐसे भी निवेशक होते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, पर हाँ 5 से 10 साल मैं इसको लॉन्ग टर्म मान के चलता हूं।
0: एंड बिसाइड्स द फन, वन कुड आल्सो गो फॉर द एसआईपी इन गुड स्टॉक्स एज वेल।
3: एब्सोल्युटली, हाँ एसआईपी खाली म्यूचुअल फंड का एक तरीका नहीं, एसआईपी एक स्ट्रेटजी भी मानी जाती है।
1: हमारे साथ कोलकाता से कौशिक जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: सर मेरा 2 सवाल है।
3: जी
6: गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग, अपने अपने रेडियो की वॉल्यूम कम कर दे प्लीज।
6: सर एक एक सवाल है कि हमारा जो सेलिंग हो रहा है अभी मार्केट में,
3: जी
6: तो वी आर आवर जीडीपी इज ग्रोइंग अप्रॉक्स 7% ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर, बट स्टिल देयर आर सेलिंग।
3: जी
6: तो व्हाट कैन बी डन सो दैट द एफआईआईज एंड एफआईआईएस आर ब्रॉट बैक टू इंडिया इंडियन मार्केट, एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि अमिड द वॉर यूएस ईरान, इफ देर इज डेमोक्रेट अगर जीतती है इलेक्शन नवंबर में, सो व्हाट विल बी द पावर्स सो दैट द प्रेसिडेंशियल पावर्स कैन बी सस्टेन फॉर दिस स्टॉपेज ऑफ यूएस ईरान वॉर, इज देर एनीथिंग ऑन दैट?
3: मिस्टर कौशिक, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अबाउट व्हाई इफ इंडियाज जीडीपी इज हाई एंड हाउ टू स्टॉप एफपीआईज। You see, FPIs and FII money, we just spoke of a little while ago. This is independent money, first of all. You know, this is rotating money. They keep looking for bargains, you know. They go to Taiwan, they go to Vietnam, they go to China, they go to Korea, they go to other markets, you know, wherever they find a bargain. It's like you're carrying your money and you've got right to shop wherever you want to. So this is, first of all, this is not a permanent exodus. You should understand this. And there is no way, and I think we should also not, since we don't stop them from coming in, we should not stop them from going out. I think the company's performance, the corporate performance itself attracts investors. So there is no deliberate act that, you know, a government or any regulatory agency does. Because if we show signs of any regulatory act, then next time, Mr. Kaushik, they will hesitate in coming to India. You know that, hume to yahan aake phir nikalne nahi diya jata. So I think this is a natural process. It is based on performance. Your second

0: question is regarding if Democrats win, what will be the impact on the markets? I think the powers of the president, first of all, I mean, a lot of listeners don't know, Nishit and Prachi, that if the Democrats win, President Trump will still remain till 2028 end. It is just that some of his powers of getting decisions ratified from the House of Representatives and the Senate, they will get curtailed. So I think if some of the policies which President Trump has implemented, he might find it harder to, you know, take them forward, whether it is war related, whether it is something else. I think we'll have to wait and see. This is regarding American politics. And let's wait and see. We've got less than a month left now from here. And we'll know in a few weeks time.
1: Yes. दिल्ली से हमारे साथ उमा शंकर जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्कार जी.
0: नमस्कार.
2: हेलो
0: जी.
1: जी अपना सवाल पूछिए.
2: हाँ नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि एमपी पर जो मैच्योर होने के बाद एक चक्रवर्ती ब्याज मिलता है जिसको आप लोग कंपाउंड ब्याज भी कहते हैं
0: जी,
2: तो ये सरकारी और प्राइवेट में दोनों में ही होता है. आज का एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि प्राइवेट वाला बोलते हैं इसमें कोई ऐसा कंपाउंड ब्याज नहीं है, पहले तो उन्होंने यस बोला था, अब वो पता नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. दूसरा ये है कि गोल्ड के लिए गोल्ड में येलो पिंक और व्हाइट, तो इनके क्या रेट अलग अलग होते हैं? कि लास्ट टाइम भी मैंने ये सवाल पूछा था पर उन्होंने हमें कुछ येलो भी.
0: अच्छा अच्छा ओके. एक तो मैं निशित और प्राची की इजाज़त से सभी श्रोताओं को एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जब बोलें तो अपने शब्दों को बहुत स्पष्ट बोलें. आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए बोलते हैं जैसे घर में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रेडियो पर हैं तो स्पष्ट बोलें आपकी बात. पहला सवाल कुछ कुछ समझ में आया, दूसरा तो पूरा समझ में आ गया. शायद आप FD की कंपाउंडिंग से संबंधित कुछ पूछ रहे थे. प्राइवेट और जो निजी बैंक है, कंपाउंडिंग तो दोनों जगह होती है. ऐसा हो नहीं सकता कि आपको FD बिना कंपाउंडिंग के दी जाए. ये हो सकता है कई दफ़े हाँ कि जैसे आपकी FD एक्सपायर हो गई और आप उसको रिन्यू कराने नहीं गए और वो ऑटो रिन्यूअल पे नहीं थी, तो फिर आपको कंपाउंडेड ब्याज उसमें नहीं दिया जाता है. आपको नॉर्मली कुछ बैंक तो सेविंग्स अकाउंट का फिर ब्याज दे देते हैं, ऐसा भी होता है. तो चेक कीजिएगा उमा शंकर जी कि आपने जो FD कराई थी उसमें उसमें वो था कि नहीं था आपका ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन. ये हमेशा डालना चाहिए FD में. दूसरा आपका सवाल पिंक येलो और वाइट गोल्ड से संबंधित है. देखिए वाइट गोल्ड और पिंक गोल्ड ये हम ऑर्नामेंटल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, यानी कि जब उससे जेवरात बनाए जाते हैं. मैंने देखा कुछ महिलाएं जो है वो पिंक गोल्ड पहनना पसंद करती हैं. वो गोल्ड के ऊपर एक पिंक कलर का पानी सा चढ़ाया जाता है, रोज गोल्ड कहते हैं उसको. और व्हाइट गोल्ड भी एक तरह से पानी चढ़ाया जाता है, वो देखने में सिल्वर जैसा दिखता है पर अंदर से वो गोल्ड होता है. तो ये एक इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है उमा शंकर जी. बेसिकली अंदर से तो गोल्ड ही होता है. इसमें मुख्य बात ये देखने की अंदर जो उसके गोल्ड है वो 22 कैरेट का, क्योंकि ऑर्नामेंट्स की बात है आपको पता 22 कैरेट से ज्यादा का गोल्ड नहीं बनता, कि अंदर वो 22 कैरेट है या नहीं है. पर निवेश के लिए अगर आप लेंगे तो निवेश के लिए फिर पिंक और व्हाइट का मत सोचिए. निवेश के लिए तो वो जो पीला चमचमाता हुआ होता है वही मुझे लगता है इन्वेस्टर्स की पसंद होता है. हाँ ये जेवरात के लिए व्हाइट और पिंक की एक महज सजावट की चीज है. आपने मान लीजिए पिंक ड्रेस पहनी है, जैसे अभी प्राची ने बताया रोज गोल्ड, तो उसके साथ कुछ महिलाएं पिंक गोल्ड पहनती है. अब आपने मान लीजिए कोई सिल्वरिश आउटफिट पहना हुआ है तो आप उसके साथ व्हाइट गोल्ड प्रेफर कर सकते हैं. तो ये एक मैं समझता हूँ एक सजावट की वस्तु है.
1: आगे बढ़ते हैं. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार 8वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. ये 25 वर्षों में सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है. वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया. छोटी अवधि वाले कारोबारी सप्ताह में सभी सत्रों में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. सोमवार को भारी बिकवाली देखी गई. सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1986 अंक यानी 2.7% गिरकर 71,910 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 719 अंक यानी 3.1% फिसलकर 22,422 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिडकैप 100 सूचकांक 3.5% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 3.5% नीचे रहा. औद्योगिक क्षेत्र के शेयर सूचकांकों में IT सूचकांक में ही एकमात्र बढ़त रही. इसके विपरीत ऑटो करीब 6% की गिरावट के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा. साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG और मेटल सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई. विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 39 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.31 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. और इस बीच नोएडा से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं. विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.

0: मार्केट मंत्रा की पूरी टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरे सर आज दो प्रश्न है कोहली साहब से। पहला है कि मुझे कुछ शेयर्स अपनी बेटी को ट्रांसफर करना है जो 18 प्लस हो गई है
2: जी।
0: वो उसकी क्या प्रक्रिया है? और दूसरा प्रश्न है मेरा कि सर ऑटो सेक्टर में इतना ज्यादा गिरावट क्यों आई है? धन्यवाद सर।
2: चलिए विनय, आपका पहला सवाल है शेयर्स आप अपनी बेटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। पहले तो मुबारक हो, आपकी बेटी 18 साल की पूरी हुई है। उसके लिए देखिए, इसको हम ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं। अगर आपके वो लिस्टेड शेयर्स हैं तो नॉर्मली जिस डीमैट या डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर हैं तो उनसे आप संपर्क करिए और वो आपको एक रिलीज स्लिप देंगे। वो रिलीज स्लिप साइन करके आप जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भरा जाएगा, जिसके अकाउंट से करा जाता है वो भरा जाएगा। इसको हम ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं और ये गिफ्ट माना जाएगा विनय, क्योंकि वो 18 साल की हो गई है तो ये टैक्स के लिहाज से भी फायदेमंद है। अब वो आपके उसका जो डिविडेंड आएगा, कैपिटल गेन आएगा, आपकी इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा क्योंकि वो मेजर हो गई, माइनर चाइल्ड के लिए होता है। तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करिए, आपको वो स्लिप देंगे, वो स्लिप साइन करके आप ऑथोराइज करेंगे, उसको रिलिंक्विशमेंट नोट भी कहते हैं, तो आपके अकाउंट से उठ के वो बिटिया के अकाउंट में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ऑटो के शेयर्स विनय, जबकि ऑटो की बिक्री के आंकड़े अभी आप पहली तारीख को आए, लगभग सभी बड़ी ऑटो कंपनीज के बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े आए, पर मुझे लग रहा है विनय इसमें जो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट है वो दबाव में, और दूसरा एक और कारण भी मैं मानता हूं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले 7.5-8 रुपए के करीब बढ़ाई गई थी, और जिस तरीके से कच्चा तेल इस समय उबाल मार रहा है बार बार, तो ऑटो मुझे लगता है निवेशकों के दिमाग में ये भी है कि कल को अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो शायद यहां पर ऑटो की बिक्री पर आगे फर्क पड़ सकता है। तो कई बार मार्केट के सेंटिमेंट्स आगे आने वाली घटनाओं को पहले डिस्काउंट कर लेते हैं। पर इसमें विनय स्ट्रैटेजी क्या है कि आप जो ईवीस कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल लगातार बढ़ रही है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, पर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को इसके लिए मैं कुछ हद तक कसूरवार मानता हूं।
3: मूविंग ऑन टू यूएस मार्केट्स, द यूएस स्टॉक मार्केट्स एंडेड हायर यस्टरडे एज वीकर देन एक्सपेक्टेड जॉब्स डेटा डैम्पन एक्सपेक्टेशंस फॉर अ रेट हाइक फ्रॉम द फेडरल Reserve at its policy meeting this month. Among the major indices, the Nasdaq composite surged 1.2%, the S&P 500 rose over 0.7%, while the Dow Jones Industrial Average climbed 0.5%. For the week, the Nasdaq rose over 0.4%. Conversely, the Dow shed 1.3% and S&P lost 0.3%. On the economic front, the non-farm payroll employment rose by 29,000, while the unemployment rate rose slightly to 4.2% last month, according to data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics.
1: और बीआर आचार्य कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: थैंक यू मैडम।
1: जी,
3: अपने रेडियो सेट को, अपने रेडियो सेट को प्लीज थोड़ा वो कम कर दें या बंद कर दें।
4: कम कर दिया सर।
3: जी,
4: आई एम ए सीनियर क्लास वन, रिटायर्ड सीनियर क्लास वन ऑफिसर
3: जी।
4: मेरे एनपीएस है
3: तो
4: अभी मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रहा है, मार्केट हैज गॉन डाउन, तो देयर इज नो होप दैट इट विल कम अगेन। Shall I continue or not?
2: Okay. Okay. Mr. Acharya, first of all, I would like to very politely and humbly, you know, point out that I think you should not feel so pessimistic. You said there is no hope that market will ever recover. I think we move on optimism and the market has to recover at some point. But I would suggest, because NPS is a very good scheme and I'm sure your corpus must not be doing very well at this point of time, but I would definitely not recommend you to exit because you're a retired person and NPS is meant for people who are retired. So therefore, I would hesitate from saying that you should close your NPS account. And I would very, very fervently and politely again request you that please give up the word no hope and let us remain optimistic.
1: आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि भारत को ऐसे पूंजी बाजार की जरूरत है जो पूंजी जुटाने, जोखिम का प्रबंधन करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में सक्षम हो। नई दिल्ली में आज कमोडिटी और कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS की शुरुआत के बाद नियामक डेरिवेटिव की एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट प्राइस तय करने से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रहा है। सेबी चेयरमैन ने कहा कि नियामक कैश मार्केट में तरलता को बढ़ाने और बेहतर बनाने, निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने

0: ने तथा सिक्योरिटीज लेन देन को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रभावी हेजिंग और आर्बिट्राज से कीमतों के उत्तम निर्धारण में मदद मिल सकती है और कैश तथा डेरिवेटिव्स बाजारों के बीच तालमेल मजबूत हो सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकेगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने बताया कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौते का काफी विस्तार किया है।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो $10 ट्रिलियन की। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो $60 ट्रिलियन हो जाता।
2: And the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of this month. Under this framework, the unified payments interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. A question that might arise in your mind is whether government utility bill collections will incur percentage MDR. According to National Payments Corporation of India, public utility payments including electricity, distribution, municipal water charges and pipe natural gas fall under the designated industry program category. It added utility bill payments above 2,000 rupees will attract a flat concessional MDR of 5 rupees instead of the variable rate of 0.4%. Utility transactions under 2,000 rupees will carry zero MDR. This framework ensures state utility boards and municipal corporations to digitize bill collection without incurring high processing fees, keeping public utility services affordable.
0: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
3: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
2: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। India's economic resilience built over past decade through reforms, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Benchmark domestic indices post the longest weekly losing run in 25 years. Sensex and Nifty decline around 3%, and Wall Street wraps up week on mixed note. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में

0: सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय नागरिकों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण, 97 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms, and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the 4 labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
2: The finance minister said that the IMF projects India's general government debt to decline from 83.4% of GDP in 2026 to 77.7% in 2031 against a rising global trend.

0: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चिकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुविमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम को दिशा दी है और जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बल और गति प्रदान की है। आज जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में हमारा विषय है जुड़ता भारत, सीमाओं से शहर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे विविध और विस्तृत देश को आपस में जोड़ने, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने और देश के हर क्षेत्र, हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए मूलभूत ढांचे के विकास में हुई तेज प्रगति के लिए पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल चिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: नमस्कार।
1: आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं पीएम गति शक्ति पर एक विशेष रिपोर्ट।

0: सड़क, रेल, बंदरगाह या हवाई अड्डा अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना अलग अलग और आपसी समन्वय के बिना बनाई जाए तो परियोजनाओं के बीच तालमेल की कमी और कनेक्टिविटी में अंतर जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई। इसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करना और सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग, बिजली, दूर संचार तथा अन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। पीएम गति शक्ति के तहत जियो स्पेशल डेटा, जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को किसी परियोजना की योजना बनाते समय मौजूदा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और संभावित बाधाओं की बेहतर जानकारी मिलती है। अगस्त 2026 तक 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका था और 3291 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है। इसका एक अहम हिस्सा है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG या केंद्र सरकार की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है ताकि योजना के स्तर पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, विभिन्न परियोजनाओं के बीच तालमेल और डेटा आधारित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। रेलवे में भी पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों का इस्तेमाल परियोजना नियोजन में किया जा रहा है। मार्च 2026 तक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे की 300 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिनकी कुल लंबाई लगभग 13,808 किलोमीटर थी। इनमें 51 नई रेल लाइंस, 17 गेज कन्वर्शन और 232 डबलिंग परियोजनाएं शामिल थी। इस तरह पीएम गति शक्ति का मूल विचार है अलग अलग परियोजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को एक साथ देखकर योजना बनाना।
1: ये कहें कि प्रेरणात्मक अवसर है और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिस तरह से वहां पर समृद्धि आई वो सबके सामने सर्वविदित है और उसी लय में जिस तरह से उन्होंने मूलभूत ढांचे के विकास को हमारे देश में गति दी है पिछले 12 वर्षों में, उसको आप कैसे देखते हैं, आप कैसे आंकते हैं सुबिमल जी?
2: आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये सार्वजनिक जीवन में 25 साल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारे देश को जोड़ने का जो प्रयास किया हुआ है और विशेषकर मैं समझता हूँ कि उत्तर पूर्व भारत में जो बदलाव आया है पिछले 12 साल में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर पूर्व में एक हताश होते थे कि हम जो मेन स्ट्रीम शब्द यूज होता है इस्तेमाल जो होता है उसमें वो जोरे नहीं है, वो किसी तरीका से इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो प्रयास रहे सारे उत्तर पूर्व में सड़क से जोड़ना, हवाई अड्डों नया बनाना, रेलवे को आगे ले जाना, कितने सारे राज्यों में रेलवे नेटवर्क के ये कई सालों में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ गवर्नेंस होता है इसका बड़ा प्रतीक है और प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल में यह दर्शाता है कि लोगों को जोड़ने के लिए आज जो हम बोलते हैं कि कनेक्टिविटी का महत्व बड़ा भूमिका होता है, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से 2014 में अगर आप चाहते हैं तो देखते थे कि क्वालिटी जो बैंडविड्थ का भी नॉर्थ ईस्ट में मिलता था आज हर जगह अरुणाचल जाइए या त्रिपुरा जाइए, मिजोरम जाइए, कहीं भी जाइए आप कर सकते हैं। मैंने तो एक बार बजट का आधा घंटा पूरा डिबेट पहाड़ के ऊपर बैठ के नेटवर्क से यूज किया। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व भारत में बहुत सारे बदलाव लाए और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कामयाबी रहा उत्तर पूर्व को कम समय में जोड़ने के लिए।
1: अनिल जी आपके पास आते हैं, जैसा सुबिमल जी ने कहा कि कनेक्टिविटी को बहुत बल दिया है प्रेजेंट सरकार ने और खासकर ऐसे एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो पहले मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े माने जाते थे उनको मुख्य धारा में लाया गया है। अगर हम जो पैन इंडिया जो स्कीम लाई गई कनेक्टिविटी के लिए, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम रहा है सरकार का जिसमें इतने सारे विभाग, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसका परम उद्देश्य आप क्या मानते हैं, इसको कितना क्रांतिकारी मानते हैं?
3: सबसे पहले मेरा श्रोतागण को नमस्कार। और जहां तक पीएम गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट पिछले 5-4 साल से शुरू हुआ है तो इसमें देखा है कि एक क्रांति है। इसमें क्या है कि अभी तक सब अलग अलग साइलोज में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था और हमारे देश में हाईवेज हमने बनाए हैं और अच्छे हाईवे बनाए हैं, लेकिन अगर हम उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो भी हमारी एफिशिएंसी उसकी नहीं मिलेगी। अब हमारा देश का जो अगर देखा जाएगा, अब तो नहीं रहा, पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में होता था और वो 14% से के अबव था, लेकिन आज वो घटकर जो हर साल 2% से ज्यादा घट रहा है, इससे और भी ज्यादा घटेगा। जो इसका टारगेट है वो 6% तक लाना है, तो 6% तक लाने के लिए हमारे को हाईवेज जो थे वो स्टेटिक थे, अब वो डायनेमिक बने। डायनेमिक में का मतलब हुआ कि उसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का इंटीग्रेशन किया, यानी कि अगर हमारी एक वायबिलिटी, सपोज हमारे को 2000 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम अलग अलग ट्रक्स लोड को लेके जाएंगे, अभी भी हमारा जो ट्रक का लोड है वो 80% ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देश में है, लेकिन जिस टाइम ये मल्टी मॉडलर हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जो 20% जो गुड्स का है तो वो शेयर बढ़कर 40% हो जाए, और 40% होते ही हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हो सकता है अभी एक या दो साल में हम 9% से कम भी ले आएंगे। और इसमें हमारे को जो भी उसमें हाईवेज की एमिनिटीज बनाना है, इंटरचेंज पॉइंट बनाना है, हमारे को उसकी कनेक्टिविटी के साथ में जीआईएस की जरूरत है, हमारे को टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत है, और जो हमारे को एक ड्राइवर्स का जैसे पूल की जरूरत है, और लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो इस सबका इंटीग्रेटेड हाईवेज की एमिनिटीज और फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये पूरे देश में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में हमारा देश, मैं आपको आज इस चैनल के थ्रू एक उम्मीद कर सकता हूं, और उम्मीद के साथ में मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम को जो पीएम गति शक्ति है वर्ल्ड लर्न करेगा, सीखेगा।
1: सुबिबल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है, जिसमें हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको, इनलैंड वाटरवेज, सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया है, और ताकि बिल्कुल निर्बाध कनेक्टिविटी हो लोगों के लिए, गुड्स के लिए, ये किस तरह से आपको ये अप्रोच जरूरी लगता है अभी की जरूरतों के लिए, और हमारे इकोनॉमी के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है?
2: सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रयास रहे है, और अभी अनिल साहब ने भी ये बताया कि एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके जितने क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी उनको जोड़ा जा रहा है, और किस तरीका से हम ये जो नेटवर्क्स है इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको किस तरीका से संतुलित रूप से अपने जो रिसोर्सेस भी रहते हैं उसको भी हम उसी हिसाब से खर्च करें, तो हम अगर देखें तो इससे समय भी कम लगेगा प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा भी कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज भी जिस मात्रा में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे देश में ली है, अगर आप देखें गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम में करीब 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया गया था, और करीब 19 लाख करोड़ का जो प्रावधान था उनके लिए, उसमें से करीब 250 ऑलरेडी सैंक्शनड है और 200 इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब एक कॉमन अप्रोच आप लेते हैं और जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये देश के लिए बहुत फायदा होता है। और यही प्रयास से आज जब टेक्नोलॉजी हर तरीका हर क्षेत्र में मिल रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी, कनेक्टिविटी में भी, लास्ट माइल में भी, और जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है कनेक्टिविटी का, तो इस सारे जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कामयाबी है।
1: एक और एस्पेक्ट है जो हमने इन 12 वर्षों में देखा है कि बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हुए हैं और बहुत दुर्गम जगहों पर एस्टैब्लिश हुए हैं। जो एक प्राइम एग्जांपल है अटल टनल, अटल टनल को अनिल जी अगर हम आपके पास आए, किस तरह से आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? ये पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है 10,000 फीट से ऊपर, और जिस तरह का ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
3: मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम, चाहे वो हिमाचल से जाना होता था लद्दाख को, और केलोंग जैसे हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट इसके बाद जो अटल टनल के बाद शुरू होता है, आज से करीबन 35-40 साल पहले सर्विस इंजीनियर था हिमाचल प्रदेश में, और मुझे पता था कि मनाली से केलोंग जाने में पूरा एक दिन लगता था। और एक दिन लगने की वजह से वहाँ का जो जो सब्जियां थी, वहाँ का जो और रॉ मटेरियल जो सप्लाईज होनी होती थी, तो वो वहाँ पर पहुंच नहीं पाती थी और उसमें लैंडस्लाइड होता था। और जो अब जब से ये सोलंग नाला से हमारी कनेक्टिविटी बनी है तो आज 3 घंटे में पहुंचते हैं, यानी कि जो 12 घंटे का जो ट्रेवल था वो 9 घंटे हमारे बच गए और कनेक्टिविटी इतनी फास्ट हो गई कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इतना कम हुआ। और फिर क्या था कि

0: नीचे से टनल जा रही है, अब जिसको रोहतांग जाना है जाए, अदरवाइज पहले तो इट वाज फोर्सिबली गोइंग ओवर देयर, तो वो सारी चीजें बनते हैं।
1: तो सुभिमल जी, सनी लाली, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सेला टनल जो 2024 में शुरू हुई, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं वहाँ के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए और वहाँ की इकोनॉमी के लिए और वहाँ के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी?
2: देखिये, सबसे बड़ी बात है कि सेला टनल पृथ्वी की सबसे लंबी बाईलेन टनल है और ये ऑल वेदर रोड है तवांग, तो हमारा तवांग के साथ जो कनेक्टिविटी है अगर सारे सीजन्स में अवेलेबल है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात यह है कि एक अरुणाचल में ये दो जो ट्विन टनल्स है, ये सेला टनल एक एक किलोमीटर की है और एक डेढ़ किलोमीटर की करीब, इससे थोड़ा ज्यादा है, 13,000 फीट ऑल्टीट्यूड में, इस तरीका का कैपेबिलिटी जो आज हमारे पास है और ऑल वेदर रोड बनाने का, तो अरुणाचल का कनेक्टिविटी, अरुणाचल का सिक्योरिटी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा महत्व है और आज साल भर लोग उससे आगे जा रहे हैं। तवांग का एक टूरिस्ट वैल्यू भी है और सिक्योरिटी वैल्यू भी है, तो ये दोनों जो टूरिस्ट का इनफ्लो, हालांकि वेदर के हिसाब से कुछ सीजन्स होते हैं टूरिस्ट के, लेकिन साल भर में लोग का आना जाना है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा कामयाबी है, क्योंकि इससे और कई सारे उस तरफ और कनेक्टिविटी के लिए छोटे छोटे फीडर रोड्स ये जितने हो रहे वो भी एक्टिव होते जा रहे, तो अरुणाचल के और बॉर्डर कनेक्टिविटी विशेषकर बहुत आगे बढ़ रहा है इससे।
1: इसके अलावा अभी आप जो थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, उसमें जिस तरह से पीएम डिवाइन जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स आए हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने 3,746 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, जिसमें से 2,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये पूरा जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इनलैंड वाटरवेज बढ़े हैं, इससे आपको लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट न सिर्फ कहें कि मेन स्ट्रीम से जुड़ गया बल्कि एक ग्रोथ इंजन बनने का उसमें पोटेंशियल है पूरे भारत के लिए?
2: बिल्कुल बने रहा है। आपने डोनर मिनिस्ट्री का जिक्र किया, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के अलावा भी एक प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार की 54 मिनिस्ट्री की मिनिमम 10% एक्सपेंडिचर इनको नॉर्थ ईस्ट में करना होता है, और ये जो आपकी फंडिंग इनकी तरफ से गए तो हर क्षेत्र में, हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हुए। दूसरी बात आते है कि ये जितने पैसा देते हैं तो उसका जो एक अकाउंटेबिलिटी होता है वो आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ये एक जो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है उसका जो अकाउंटेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आता है तो आगे का हिस्सा भी नहीं जाता है। तो डोनर मिनिस्ट्री का जो अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी कुछ कर रहा है या निरामेक जैसा संस्थान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास रहे कि एक्सपेंशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी लाए तो हमारा जो रिसोर्स स्पेंडिंग है नॉर्थ ईस्ट में बहुत इम्प्रूव है। दूसरी बात है कि सड़क का जो निर्माण हुआ है अभी या रेल का वहां जो निर्माण हुआ है इस साल की, मैं बता सकता हूं कि अभी 96% रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं। जब 2014 में सरकार आए थे प्रधानमंत्री की, तब नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवेज थे, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेन ब्रॉडगेज कन्वर्शन काम चल रहे थे, एक लमडिंग सिलचर का एक 196 किलोमीटर जैसे, वो 16 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी आने के साथ साथ एक साल में उसको कंप्लीट करके 2016 से वहां से ट्रेन जाता है। उस कनेक्टिविटी के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारत की रेलवे नेटवर्क में जुड़ गए। दूसरी बात, अगर आप हाईवे की वो ले तो वहां सिर्फ 91,000 किलोमीटर से 1,46,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन हुई, यानी कि 61% ग्रोथ रहे है इन कई सालों में, और सड़क की क्वालिटी भी बहुत अच्छा। मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत घूमते रहता हूँ तो मैं कुछ कुछ सड़क में जब जाते हैं लगते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाफलोंग सिलचर जो सिर्फ 100 किलोमीटर की रोड है, आज पिछले 20 साल से अब 6 घंटा से कम में उससे जा नहीं सकते। कुछ स्ट्रेचेस ऐसे खराब थे, पिछले 2 महीना से आप उस स्ट्रेच को 1.5 घंटा में क्रॉस कर रहे, तो कितना फर्क पड़ रहा है
1: आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, फार्मर्स के लिए,
2: इसीलिए
1: टूरिज्म के लिए।
2: हाँ, बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स नॉर्थ ईस्ट में निकल के आ रहे हैं इसी की कनेक्टिविटी करके, क्योंकि वो गांव से हाईवे

0: तक आ पा रहा है और इसके बाद आगे मूवमेंट कर रहा है और आगे अपना प्रोड्यूस कहीं बेच के या कहीं जमा देके अगर वापस फिर सेम डे में जा सकता है तो उससे मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन की तरह होता है, मोटिवेशन। बहुत सारे नए फार्मिंग एक्टिविटीज शुरू हुए हैं, यू नो, बिटलनाट के लोकल फार्मिंग, बम्बू की लॉट ऑफ नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि जन सेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है जुड़ता भारत सीमाओं से शहर तक। दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल छिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। और अब अनिल जी, जैसा भी सुविमल जी जिक्र कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक किया है इस सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो शुरू हो गए थे लेकिन वो लंबित थे। इवन अटल टनल की जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पहले उसका 300 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2040 तक जाकर वो समाप्त होती। और अब इन्होंने 1400 मीटर्स पर ईयर के गति से उसको बनाकर 2020 में जो कंप्लीट किया, आपको लगता है कि ये फास्ट ट्रैकिंग एंड टाइमली डिलीवरी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है सरकार का?
2: जी, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो पहले प्रोजेक्ट तो ये पहले का ही था
1: जी,
2: मुझे लग रहा है कि ये 2005 या 2006 से ये शुरू हो चुका था, उससे भी पल के पहले। तो उस टाइम में एक जो एक मोटिवेशन, एक ड्राइव, जो एक एंथुसियाज्म हमारे जो वर्कफोर्स में होने की जरूरत थी वो नहीं था। अभी आपने हाफलोंग की बात की, जैसे नॉर्थ ईस्ट में गया तो मुझे बताया गया कि आप उस स्ट्रेच से ना जाएं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस ये वजह थी। और इसी तरह से जो और दूसरे हमारे प्रोजेक्ट से, जैसे ये बोगीबिल ब्रिज बना, अब हमारे जो प्रोजेक्ट में गति जो आ रही है वो एक उस पावर के साथ में आ रही है कि सरकार की एक बैकिंग है, सरकार का एक मोटिवेशन है। वो जो मोटिवेशन है वो हमारे प्रोजेक्ट को बिफोर शेड्यूल लेके आ रहा है और हम वी आर क्रिएटिंग वंडर्स। तो ये सरकार का एक फर्क आया है और हमें देखने का महसूस होता है, क्योंकि मेरा जो पिछले 40 साल से ज्यादा मैं सरकार में काम करता रहा था और जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट चाहे वो मैं दिल्ली सरकार से और जो भारत सरकार के दूसरे प्रोजेक्ट में थे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में मैं पहले से एसोसिएटेड था। अब एक जैसे एक हमारे सिलचर में एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि सुनील साहब ने बताया कि वहां के लोगों को एक नया, जो चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी बन के आ रहे हैं, तो उसके साथ में एक हमारा वहां पर सिलचर में एक प्रोजेक्ट जो था वो इट वॉज डेड प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट अभी पिछले 3 साल से आईकैट ने सिलचर में लिया है एंड वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ ड्राइवर्स ओवर देयर, वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ टेक्नीशियंस सो दैट अवर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। तो ये जो एक फास्ट ट्रैक पर एक चेंज ओवर आया है, तो और वो सिलचर जो है इट विल ऑल्सो टेक केयर फॉर मिजोरम, इवन मणिपुर, असम के साथ में मेघालय, तो ये सबको मिला के वो जो एक हब बनेगा, तो वहां पर हम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड जो विजन असम सरकार का और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि वहां का जो ड्राइवर्स है नॉट ओनली टू सर्व द कंट्री बट एब्रॉड ऑल्सो। तो ये वाले सारे चीजें जो एक चेंज पूरे एंथुसियाज्म पूरी लोगों में आया है, तो इट इज वंडरफुल, अनइमेजिनेबल।
1: जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और इस जोश की वजह से हम रेलवेज में भी देख रहे हैं कि ट्रैक रिन्यूअल और स्पीड एनहांसमेंट के लिए जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उसमें गति बहुत है। वंदे भारत ट्रेन्स ने एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ट्रेन ट्रैवल को। एक और चीज, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की भी बात है और सुविमल जी, 1674 लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए गए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में, तो आपको लगता है कि मेक इन इंडिया का असर भी हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं?
0: जी, जो प्रयास रहा कि एक मेक इन इंडिया और दूसरा इंडिजनाइजेशन, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जाए वहां भी ये प्रयास हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो सामान लगते हैं राउटर से लेके सब कुछ वो भी लोकल प्रोडक्ट है, और रेलवे लोकोमोटिव्स, रेलवे कोचेस, रेलवे ट्रैक्स, हर में जो R&D की प्रयास होके लोकल प्रोडक्ट्स बन रहा है, लोकल सप्लाई चेन की जो नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, उससे काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कम समय में और जिस तरीके से हमें रेलवे की एक्सपेंशन प्लान्स है। अब मैं फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट का भी उदाहरण देता हूँ, इस साल नॉर्थ ईस्ट की बजट रेलवेज की करीब 11,500 करोड़ रुपया के है, तो वहां जिस तरीके से आज ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, क्योंकि हर सारे राज्य में सबका डिमांड बढ़ते रहता है, नॉर्थ एक रेलवे एक पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट रहता है और लोगों का कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की बात की, तो इन सब के लिए अलग अलग ट्रेन जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक वाइब्रेंट सेक्टर रेलवेज में देखा जा रहा है, उसमें लोकल एंटरप्रेनर्स भी सप्लाई चेन में आ रहा है, तो इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो जरूर हो रहा है। लेकिन और एक बड़ी बात है कि जो पहले नौजवान को मौका नहीं था और बहुत समय वो हथियार भी ले, आज वो नहीं हो रहा है, आज वो सामने आ रहा है
1: जी।
0: तो उससे समाज में भी एक बड़ा सुधार हो रहा है धीरे धीरे।
1: तो इसी संदर्भ में जो नॉर्थ ईस्ट के अकॉर्ड्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं पिछले 12 वर्षों में, वो भी आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है?
0: बिल्कुल, हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब से आए तब से वन ट्रैक एफर्ट से ये प्रयास रहा कि जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स है, देखिए उनके कुछ खौफ थे बहुत सालों से और कुछ लोग इसका फायदा भी उठाए, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उत्तर पूर्व को शांत रखना है, उत्तर पूर्व में उन्नति होना है, तो इनको फर्स्ट बिठा के बात करो क्या प्रॉब्लम है। और मैं कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब यहाँ आते थे, बात करते थे, इसके बाद बड़ा खुश होके वापस जाते थे कि एक इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो रहे थे, उससे और अलग उग्रवादी ग्रुप को भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई सुनते। बट सबसे बड़े बात ये है कि जो इनको वादा किया जाता है कि आपका सेटलमेंट के हिसाब से आपका रिहेबिलिटेशन कैडेट्स के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इनको ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ये सारा वादा टाइम बाउंड मैनर में होता है और गृह मंत्री जी की वहां से ये मॉनिटर होता है, उससे एक कॉन्फिडेंस बहुत है। और अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे जो सेटलमेंट हुए, ये जो बड़ा सेटलमेंट हुए पिछले 2019 से, उनमें से बहुत लोग सार्वजनिक जीवन में भी आए, बहुत लोग एंटरप्रेनर्स भी बने हैं, तो ऐसे समाज की भी फायदा हुआ और जो एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा वहां होता था वो आज वो नहीं है।
1: और अनिल जी, अगर हम आपने वाइब्रेंट वर्ड यूज किया अभी सुबिमल जी, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो शुरू किया वर्तमान सरकार ने, जिसके तहत जो सीमा के पास जो गांव है उनको पहले कहा जाता था लास्ट विलेज, अब कहते हैं कि ये फर्स्ट विलेज है, और जिस तरह का उनके लिए प्रोविजन है वहां पे डेवलपमेंट के लिए, और वो कहते हैं कि ये तो हमारे आईज और ईयर्स हैं, कितना बड़ी बात है ये एक एटीट्यूड चेंज में भी और वहां के विकास के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हमारा जो आर्मी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और इन्होंने एक स्कीम भी चलाई है कि जो बॉर्डर विलेजेस है उनका टूरिज्म, तो उनके टूरिज्म में क्योंकि एक सेफ्टी की बात होती है, तो उसके लिए जब सेना हमारी उसको एक जिम्मेवारी लेती है, तो आज की तारीख में हम देखेंगे जो नई जनरेशन है, तो नई जनरेशन हमारी जो शिमला मनाली नहीं जा रहा, वो बॉर्डर विलेजेस में जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, वो उनके लिए आज जिसको आपने बताया ना कि फर्स्ट विलेज, तो फर्स्ट विलेज पे हर जो चाहे वो यंग या जेंजी जिसको हम बात कहें, तो जेंजी अपने आके ये बताता है कि जी मैं इस स्टेट के इस फर्स्ट विलेज पे गया, तो दूसरा वो कहता है अच्छा तुम वहां गए तो मैं और उससे एक्सट्रीम जगह पे जा रहा हूँ, तो ये एक जो कंपटीशन चला है इससे अब वो जो उन विलेजेस में ना तो वहां पर पहले एजुकेशन थी, ना वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट का स्कोप था या कोई किसी तरह की और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, अब वो टूरिज्म ने उनको इन हाउस अपॉर्चुनिटी दी है एंड दे आर मेकिंग गुड सॉर्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर टाइप, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जिस तरह के मोटल्स बनाते हैं या इतना, तो उन लोगों ने अपने हॉस्पिटलिटी अब उन्होंने जिम्मेवारी ली है और जिसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर विलेजेस है दे आर मोर पिकनिक टूरिज्म स्पॉट देन द सिटीज ऑफ देयर कैपिटल।
1: बिल्कुल, एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कनेक्टिविटी की हम जैसे बात कर रहे हैं, जो हाईवेज में इतनी ज्यादा गति से बढ़े हैं, अगर हम देखें तो 61% के करीब बढ़ गए हैं जब 2014 और मार्च 2006 के बीच, अब लगभग 1500 किलोमीटर के हमारे हाईवेज हैं, और 4 लेन जो हाईवेज हैं उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारतमाला जो परियोजना है, कैसे देखते हैं आप इस कहें कि जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर इतना जो बल दिया जा रहा है ताकि पूरा देश आपस में जुड़ पाए?
0: देखिए, ये रोड कनेक्टिविटी वाजपेयी जी की समय से एक मैं कहता हूँ बड़ा फोकस्ड एरिया रहा बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, और उस समय जितने हुए अभी मोदी सरकार के टाइम में ये और गति से ये काम हुआ है। और रोड की लेंथ के अलावा क्वालिटी ऑफ द रोड, जो मैं समझता हूँ बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आजकल गाड़ियां जो आ रहे हैं वो बड़ा, उसमें भी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो एक हाई स्पीड रोड्स, आपको क्वालिटी रोड्स चाहिए होता है, लेन्स ज्यादा चाहिए होता है, वॉल्यूम बढ़ गए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हर कॉरिडोर्स जो बने हैं, लोगों में एक गाड़ी लेके सड़क में जाना देश भर में, ये

0: देखो दिल्ली बॉम्बे में आजकल बहुत लोग चले जाते हैं चला के, क्योंकि एक तो थ्रिल फैक्टर होता है कि रोड सही है, लेकिन साथ साथ में जो बिजनेस भी होते हैं, जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं बीच में, जो अलग अलग शहर या गांव में भी लोग जाते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक वाइब्रेंसी रहता है कि इस क्षेत्र में। और एक बात जो मैं देखता हूँ, जो रोड की हाईवेज की जो मेंटेनेंस है उसमें भी बहुत सुधार आया है। पहले अब जो जिस स्पीड में ये रेक्टिफिकेशन करेक्शन होते थे, आज वो बहुत जल्दी होते, तो मतलब ओवरऑल एक रोड क्षेत्र में और सेफ्टी को नजर में रखते हुए तो एक प्रयास रहे है।
1: सो इससे आपको लगता है कि जो नए नए इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सरकार हमेशा छोटे जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देती है, उनके लिए बहुत आसान होता है अपना सामान, या इवन फैक्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचे, फैक्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स तक पहुंचे, सप्लायर्स तक पहुंचे, तो बहुत सहूलियत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी।
0: जहां रेल नहीं है या बहुत जगह जहां रेल भी है वहां रोड नेटवर्क्स की इम्प्रूवमेंट होने के बाद हम देखे हैं कि और बहुत दूर दूरस्थ इलाके के लोग भी आज एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं और बाहर आके अपने सामान दे पा रहे हैं, या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए भी इनके मटेरियल्स भी ये मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये टू वे ट्रैफिक रोड क्षेत्र में उन्नति के लिए हो रहे हैं।
1: एक और जो बहुत फ्लैगशिप कहें कि जो स्कीम रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है एस्टेब्लिशमेंट, वो है चेनाब अंजी खांड रेल लिंक जो हिमालयाज में बना है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? विश्व का कह रहे हैं कि हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है चेनाब, कितना ये बड़ी उपलब्धि है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, हमारी सरकार के लिए।
2: जब से ये कनेक्टिविटी हमारा श्रीनगर के साथ में बना है, तो ये अब मात्र 4 घंटे का, कटरा से 4 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं जहां पर 12 घंटे लगते थे। और जब इसका जो आर्क ब्रिज को अगर आप देखेंगे तो वहां जाके ऐसा लगता है जैसे मैं कि सपनों की दुनिया में, और उसके अंदर उसमें जब ट्रेन गुजरती है और जो उसके पैसेंजर्स जब वो सीनरी देखते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में, क्योंकि रेलवे लाइन दिखती तो नहीं है नीचे से, तो उसको वो दिखता है कि नीचे एक नदी बह रही है और आप हवा में है, क्योंकि ये एक सिग्नेचर ब्रिज की तरह से है, और नीचे उसका आर्क तो हमारे को एरियल व्यू से दिखता है, बट वो ऐसा दिखता है कि मैं पहाड़ों में कहां पर पहुंचा हूं। ये ऐसा सीन तो ना कोई सड़क है ना कुछ, आप पहाड़ के बीच में से और एक कुछ किलोमीटर का जो स्ट्रेच है तो उसके बीच में आप निकल के जा रहे हो, और तो वो देखने में ऐसा लगता है कि रमणीय है। हमेशा सेब के सीजन में श्रीनगर में बारिश आती थी जिसकी वजह से वहां पर काफी जो सड़ जाता था उनका मटेरियल, और अब वो जो है अगर वो बारिश आएगी बट वो जो गुड्स ट्रेन के थ्रू इसको फ्रेट को लेके आएंगे, और तो हमारी सप्लाईज मेंटेन रहेगी और वहां के फार्मर्स को बारिश का नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा देश के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अंश है जो कि हमने इतने सालों में सोचा भी नहीं था, वो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी।
1: बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल है, 260 किलोमीटर पर आवर तक की हवा को वो रिजिस्ट कर सकता है, और जो अंजी खाट ब्रिज है वो भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन में ही पड़ता है, वो अर्थक्वेक्स को विदस्टैंड कर सकता है, और वो भी फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। सो आपको लगता है कि ये सब हमारा एक शोकेस करते हैं भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक क्षमता है, एक बढ़ती मजबूती है पूरे विश्व में भी?
2: यस, अभी क्या था कि जो वंदे भारत के जो इस ब्रिज के सिबुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 10 दिन पहले, तो तब उन्होंने बताया था कि ये अर्थक्वेक के साथ में इसके ऊपर हमारा, बोले जी हमारे पास इतना इंतजाम है कि वो उस चीज के लिए भी हमने सेफ्टी का ध्यान रखा है, जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज वगैरह और इंजीनियरिंग मार्वल्स, ये सारे सारी चीजें हैं, तो हमारी सेफ्टी इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय द पुलिस एंड डिफेंस फॉर दिस ब्रिज ऑल्सो अलॉन्ग विद द आइकॉनिक व्यू ऑफ दिस ब्रिज।
1: सुबिमल जी, आपके पास आते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि अब नॉर्थ ईस्ट पूरे हमारे देश से जुड़ गया है जिससे उनके व्यापार को फायदा होता है, आवाजाही में फायदा होता है, टूरिज्म को फायदा होता है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्रीज जो है उनके साथ भी एक जो जुड़ाव है वो अब संभव हो पा रहा है?
0: बिल्कुल हो पा रहा है, हो भी रहा है। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी सरकार की है उस साउथ एशियन कंट्रीज के साथ लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को अलग अलग इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको तैयार किया जा रहा है। मेघालय की लकाडोंग हल्दी है, वहाँ के एक बड़ा स्पेशल हल्दी है, मिजोरम की जिंजर, सिक्किम की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नागालैंड की कॉफी, इसमें प्राथमिकता देके फंडिंग देके उसमें R&D करके लिंकेजेस कैसे आगे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट हो सकते हैं, इसमें बहुत प्रयास हो रहा है। इसमें जो अब नए सारे एंटरप्रेनर्स ये सारे क्षेत्र में इन राज्यों से आ रहे हैं, इनके साथ साथ किस तरीके से राइस प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अभी अभी थाईलैंड से एक एडुकेशन की कोऑपरेशन के लिए गुवाहाटी और शिलोंग में पिछले हफ्ते बड़े एक डेलीगेशन आए थे वहां की यूनिवर्सिटीज की। तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसमें प्रयास हो रहे।
1: क्या देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से जुड़ाव का पूरा, जैसा आपने वर्ड्स यूज किया कि जोश के साथ जो ये कार्य चल रहा है, आपको लगता है कि यही नींव होगी विकसित भारत की? इसके बल पर ही हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक?
2: पहले उन लोगों का, जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, तो उनको हमारा देश भारत एक अलग देश लगता था, और आज वो लोग प्राउडली लीड करते हैं कि ये देश हमारा है। तो ये वाला चीज का जो चेंज मैंने जो देखा है, तो यस आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी कैन यूनाइटेडली से विकसित भारत।
1: सुबेमल जी, आप तो कुछ कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कहूंगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयास रहे, इसके साथ साथ और सारे कुछ प्रोजेक्ट्स रहे, जैसे डिजिटल पेमेंट्स आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में दूर दराज इलाका में वो पेमेंट कर पा रहे, फिर साथ साथ में आपके आधार के जो ऑथेंटिकेशन, इनसे इन लोगों का बीच में एक एम्पावरमेंट की सेंस आती है कि हम भी सबके साथ एक साथ जुड़े हुए। जो प्रयास रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से,
1: और गवर्नमेंट स्कीम्स भी, वेलफेयर जो है वो पहुंच पाया है
0: बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहा है, मतलब कोई मिडिलमैन नहीं है, और इसके साथ साथ जो लोगों का बीच में कॉन्फिडेंस आया है, मैं समझता हूँ ये जो 25 साल प्रधानमंत्री जी के गवर्नेंस इकोसिस्टम में रहे, उससे कोशिशें है हम सब एक साथ मिलकर कामयाबी करेंगे।
1: अनिल जी, सुबेमल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने प्रकाश डाला कि किन विभिन्न तरीकों से पूरा भारत अब आपस में जुड़ रहा है।
2: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चिकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबिमल भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: दादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरटीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरा निस्तारण संयंत्रों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित एक ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। और जापान एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरे के निस्तारण संयंत्रों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में बायोडिग्रेडेबल कचरे के निस्तारण के लिए 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कचरा निस्तारण की वर्तमान स्थिति, साइट पर उपलब्ध क्षेत्र और नई प्रोसेसिंग सुविधाओं की क्षमता को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पुराने कूड़े को हटाना नहीं बल्कि नए वेस्ट को भी वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर

0: उसे दोबारा कूड़े का पहाड़ बनने से रोकना भी है। उन्होंने बताया कि ओखला में 1400 टन प्रतिदिन, सिंघोला में 700 टन प्रतिदिन और गाजीपुर में 800 टन प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुराने कचरे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही रोजाना आने वाले कचरे को भी प्रोसेस किया जा सके इसके लिए भी काम चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से तय समय सीमा के अनुरूप काम में तेजी बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से नई प्रोसेसिंग क्षमता, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, वेस्ट टू रिसोर्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक साथ काम किया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसी उद्देश्य से नई प्रोसेसिंग सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 वर्षो में ओखला, भलसवा और गाजीपुर में 217.17 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण कर लगभग 100 एकड़ भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि नए प्लांटों के शुरू होने से कूड़े के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण की गति को और बढ़ाया जा सकेगा।
2: हमने 100 एकड़ जमीन जो है तीनों जो हमारी लैंडफिल साइट थी वहाँ से रिक्लेम कर ली है। फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि जितना फ्रेश वेस्ट आए वो भी प्रोसेस हो, जितना सीएनडी वेस्ट आए वो भी प्रोसेस हो और आने वाली जनरेशन के लिए फिर कोई नया कूड़े का पहाड़ ना लगे। दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हम पे जताया आज उसको हम चरितार्थ कर पा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से पूरी तरह मुक्ति दिलानी है। इसके लिए पूरी टीम मिशन मोड में दिन रात काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी और जुलूस तथा प्रदर्शन और धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। उन्होंने कहा कि आज के लिए किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और न ही नई दिल्ली जिला पुलिस को ऐसे किसी प्रदर्शन के बारे में पहले से कोई सूचना मिली है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से आदेश का सख्ती से पालन करने और सहयोग करने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि नवाचार चुनौती के अंतर्गत चुने गए उपकरणों का वाहन प्रदूषण नियंत्रण और परिवेशी वायु शुद्धिकरण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन उपकरणों को दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण प्रभावित स्थानों पर लगाया गया है जहां आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन समिति इनके प्रदर्शन और जरूरी मापदंडों की जांच कर रही है। श्री सिरसा ने बताया कि कुछ उपकरणों के क्षेत्रीय परीक्षण भी अभी चल रहे हैं। वहीं जिनके परीक्षण पूरे हो चुके हैं उनका प्रयोगशाला परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि नई तकनीक और नवाचार के माध्यम से ऐसे समाधानों को आगे लाया जाए जो जमीन पर प्रभावी साबित हों और दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में मदद करें। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज संजय वन में हेरिटेज वॉक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित एक ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह इतिहास और सभ्यतागत विरासत का एक जीवंत संग्रह है। उन्होंने कहा कि 8 प्रमुख रास्तों पर फैली 243 ऐतिहासिक संरचनाओं के डिजिटल दस्तावेजीकरण के माध्यम से तकनीक इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। श्री संधू ने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाएं, विरासत की रक्षा करें और इन दोनों को आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। उपराज्यपाल ने दिल्ली वासियों को शानदार जगहों को खोजने और उनका आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही शहर की पारिस्थितिकी विरासत को बचाने में इनकी अहम भूमिका को भी रेखांकित किया।

0: अगर आपको पता है कि इस एरिया में दिस इज अ ग्रीनर प्लेस, यू हैव समथिंग टू वॉक एंड फील नाइस, एंड स्पेशली फ्रॉम नाउ टिल मार्च अप्रैल यू विल हैव अ गुड एंड सन विल बी देयर, यू नो यू कैन कम सिट हियर इन द आफ्टरनून. वी हैव सच अ रिच हेरिटेज इन दिल्ली इटसेल्फ दैट वी डोंट नीड टू गो टू फार टू हैव और एंजॉय दैट एनरिच एनवायरमेंट. हम उसको यहाँ पे ही एंजॉय कर सकते हैं.
1: हेरिटेज वॉक के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सम्मान और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक ऐसी दिल्ली बना सकते हैं जहां हर महिला सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी महसूस करे और आगे बढ़कर नेतृत्व कर सके. उपराज्यपाल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स से संवाद भी किया. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान मेडिकल शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लेकर विद्यार्थियों की उम्मीदों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा हुई. विशेष रूप से महिला मेडिकल स्टूडेंट और रेजिडेंट डॉक्टर्स को होने वाली दिक्कतों को भी उन्होंने गंभीरता से सुना. श्री संधू ने आश्वस्त किया कि इन चिंताओं के समाधान और सभी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी सेक्टर 8 स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की सार्थकता तभी है जब उसकी जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता बिना किसी अनावश्यक बाधा के लोगों तक पहुंचे. श्री गुप्ता ने कैंप में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत की और नागरिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया. उन्होंने अधिकारियों से कैंप में नागरिकों को दी जा रही सहायता के संबंध में जानकारी ली. सेवा सेतु कैंप को नागरिकों के लिए एक एकल सुविधा केंद्र के रूप में तैयार किया गया है जहां दिल्ली सरकार के विभिन्न सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष ने कैंप में आने वाले नागरिकों से बातचीत की और विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के उनके अनुभवों के बारे में भी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि अलग अलग सरकारी विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने से नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी. कैंप में विभिन्न विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया. केंद्र सरकार के रिफॉर्म उत्सव पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने विद्यार्थियों को नमो भारत से परिचित कराने के लिए फेमिलाइजेशन आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया. ये कार्यक्रम नागरिक केंद्रित सेवा वितरण, संस्थागत सुधारों और जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनकारी उपायों से जनता को परिचित कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को नमो भारत प्रणाली के परिचालन, इसकी प्रमुख विशेषताओं और इसके सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आवश्यक यात्रा दिशा निर्देशों से परिचित कराना था. वहीं प्रतिभागियों ने भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली के परिचालन संबंधी जानकारी प्रत्यक्ष प्राप्त की. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों ने सराय कालेखा स्टेशन सहित स्टेशन कंट्रोल रूम का भी दौरा किया. उन्हें स्टेशन संचालन, यात्रियों की आवाजाही और आधुनिक ट्रेनों के परिचालन से संबंधित दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन में प्रयोग की जाने वाली उन्नत प्रणालियों के बारे में जानकारी दी गई. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज मासिक सुविधा कैंप का आयोजन किया. इस सुविधा कैंप में NDMC सचिव राहुल सिंह ने 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम का नेतृत्व किया और शिकायतों के निस्तारण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की. उन्होंने कहा कि नागरिक संतुष्टि सेवा वितरण का मूल आधार होना चाहिए. उन्होंने त्वरित और अधिक पारदर्शी समाधान के लिए जनसुविधा पोर्टल का लाभ उठाने पर बल दिया. वहीं NDMC अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि ये सुविधा कैंप सूचना सुविधा और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा है जो निवासियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करती है. ये पहल निवासियों और सेवा उपयोगकर्ता के लिए जानकारी प्राप्त करने, शिकायतें दर्ज करने और नागरिक मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करने के लिए एक प्रभावी सुविधा है. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं.

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओखला, सिंघोला और गाजीपुर में नए कचरा निस्तारण संयंत्रों का शिलान्यास किया। दिल्ली पुलिस ने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में नवाचार चुनौती को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली की रिज हेरिटेज पर आधारित ई बुक एक्सप्लोरिंग द दिल्ली रिज लॉन्च की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाली हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारत

0: न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT Kazima 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 15 ओवर में 1 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms, and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the 4 labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
1: The finance minister said that the IMF projects India's general government debt to decline from 83.4% of GDP in 2026 to 77.7% in 2031 against a rising global trend. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. On criminal justice reforms in the country, the Home Minister said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Delhi Police has said that the Section 163 of Bharati Nagarik Suraksha Sanhita 2023 is in force in New Delhi district to ensure public safety, public order and smooth traffic movement. In a public notice, DCP New Delhi said that unauthorized gatherings, public speeches, shouting of slogans, processions, demonstrations, dharnas and other specified activities are prohibited. Ukraine has described India's proposal for a possible ceasefire with Russia as the broadest among 4 offers received by Kyiv, with Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha saying it is ready to consider a truce covering energy infrastructure and the Black Sea. The Russia-Ukraine war, now in its 5th year, has killed thousands of civilians, displaced millions and caused widespread destruction of homes and critical infrastructure. The comments came a day after Russian President Vladimir Putin said Prime Minister Narendra Modi has very good ideas for finding a mutually acceptable settlement to the Ukraine conflict. Sybiha said the proposals for a possible ceasefire had come from India, Turkey, Egypt and the United States. The United States has designated 50 countries whose citizens face visa bonds reaching up to $20,000 for tourist and business visas, leaving India exempt from the mandate while encompassing South Asian nations such as Bangladesh, Bhutan and Nepal. The State Department released a revised list of nations yesterday whose nationals must post financial bonds upon qualifying for B1, B2 visas. India have won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. In men's cricket, India won the gold, defeating arch-rivals Pakistan in the T20 final. Indian wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song-han 11-7 in a fierce final. Tanvi Utz became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in golf, holding her nerve after surrendering a 3-shot overnight lead to clinch the women's individual title. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian men's cricket team on winning the gold medal and successfully defending the Asian Games title. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम मधुरिमा, और आज मैं हूं आपके साथ प्रोग्राम लेकर हेमा शमी। जी हां, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के उन खूबसूरत रागों की जिनकी मिठास सिर्फ शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं रही बल्कि हिंदी फिल्मों के गीतों में भी खूब सुनाई दी। कई बार हम कोई पुराना फिल्मी गीत जब सुनते हैं तो उसकी धुन बड़ी ही जानी पहचानी सी लगती है। दरअसल उन धुनों के पीछे किसी राग की खूबसूरत छाप भी हो सकती है। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज है, पहुंच रहा है आप तक बिल्कुल अभी।

सच में बेहद ही खूबसूरत गीत है। ये जो आपने गीत अभी सुना, ये राग यमन पर आधारित है। ये राग अपनी मधुरता, शांति और भावपूर्ण अंदाज के लिए जाना जाता है। शाम के समय गाया जाने वाला ये राग मन में एक अलग ही एहसास पैदा करता है। हिंदी फिल्म संगीत में भी राग यमन का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। वैसे अभी एक और गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी इसी राग पर आधारित है।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम मधुरिमा। मैं हूं आपके साथ हिमा शमी। राग सिर्फ स्वरों का मेल नहीं है, हर राग की अपनी एक पहचान, अपना भाव और गाने का एक समय होता है। यही वजह है कि अलग अलग राग सुनने पर हमारे मन में अलग अलग एहसास होते हैं। जैसे कि अभी जो हमने गीत सुने वो राग यमन पर आधारित थे, अपनी मधुरता के लिए जाने जाते हैं। वही राग भोपाली की सरल और शांत धुन मन को बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए इसी पर आधारित गीत अभी हम आप तक पहुँचा रहे हैं।

समय कह रहा है कि आपसे इजाजत ले ली जाए, तो अभी के लिए हिमा शमी को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और अभी हम आपको छोड़े जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म जंगली फिल्म का है, और आप 8:30 बजे सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, फिर समाचार संध्या। नमस्कार।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई किया। कुश्ती में अमन सहरावत ने स्वर्ण, अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक देश के नाम किए। गोल्फ में प्रणवी ने भारत को दिलाया ऐतिहासिक स्वर्ण, महिला टीम ने जीता रजत पदक। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने रिकर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नीरज ने व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में जारी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय एथलीटों ने अलग अलग खेल में अच्छा प्रदर्शन कर देश को आगे बढ़ाया है और देश का मान भी बढ़ाया है। एशियाई खेलों में आज भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का। सबसे पहले आज बात की जाएगी हॉकी पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में मलेशिया के खिलाफ 5-1 से जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का टिकट भी अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आ गया है प्रभु। पहली बार हुआ है कि मेन और वुमेन दोनों हॉकी टीम्स ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते हों। लॉस एंजलिस वालों स्वागत की।

0: फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा। 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि 14वें मिनट में मलेशिया के शैली सिल्वरियस ने फील्ड गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। 23वें मिनट में जुगराज सिंह ने बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत को 2-1 से आगे कर दिया। हाफ टाइम के बाद 42वें मिनट में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को शानदार तरीके से गोल में तब्दील किया। इसके बाद 54वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने एक फील्ड गोल दागा और 57वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने अपना दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर से करते हुए मलेशिया की उम्मीदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार अपना स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इससे पहले हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2022 का गोल्ड भी अपने नाम किया था। यह एशियन गेम्स के अलग अलग संस्करणों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कुल 5वां स्वर्ण पदक है। भारत ने 1966, 1998, 2014, 2022 और 2026 में खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स कैन के लिए अक्षित वैद्यान।
1: पांच एक से ये जीत दर्शाती है कि भारत ने सिर्फ ये मुकाबला जीता नहीं बल्कि डोमिनेट करके भी खेला है। अगर हॉकी की बात की जाए तो महिला टीम ने भी भारत को स्वर्ण पदक इससे पहले दिलाया था और आज पुरुष हॉकी टीम ने भी देश के नाम एक और पदक किया। हॉकी से चलते हैं कुश्ती की ओर, जहां भारतीय रेसलर ने अलग अलग स्पर्धाओं में देश के नाम कई पदक किए हैं। एशियन गेम्स में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने स्वर्ण, अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक देश के नाम किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: भारत का एक गोल्ड मेडल कुश्ती में और आ चुका है। अमन सहरावत, इन्होंने पिछले एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था और इस बार सीधा रंग बदलकर
3: अमन ने रोमांचक फाइनल मैच में वर्ल्ड चैंपियन चोंगसोंग को 11-7 से हराया। अमन का एशियन गेम्स में ये लगातार दूसरा पदक है। पिछले एशियन गेम्स में अमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में ये भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले सुजीत कलकल ने फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अमन को साउथ कोरियाई पहलवान चोंगसोंग से कड़ी टक्कर मिली। अमन ने इंजरी ब्रेक के बाद अपनी बढ़त को 6-1 कर लिया। मैच के आखिरी मिनट में अमन ने एक बार फिर मुकाबले का रुख पलटा और शानदार लगाते हुए चोंगसोंग के खिलाफ अहम बढ़त बना ली। अमन ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को अपने दांव से पहले पूरी तरह लॉक किया और फिर उन्हें पलटने के साथ ही 4 पॉइंट्स हासिल किए। अमन का ये दांव निर्णायक साबित हुआ और वो फाइनल मुकाबले को 11-7 से अपने नाम करने में सफल रहे। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम रेसलिंग इवेंट में रजत पदक जीता। उन्हें जापान की कियोका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में अंतिम पंघाल की धीमी शुरुआत का फायदा उठाकर कियोका ने शुरुआती बढ़त बना ली। पहले पीरियड के खत्म होने तक कियोका ने अपनी बढ़त 2-0 कर ली। अंतिम पंघाल ने मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने कियोका को पैर से नीचे गिराकर 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। हालांकि जापानी रेसलर ने तेजी से भारतीय खिलाड़ी को मैट से बाहर धकेल दिया। अंतिम ने फैसले को चुनौती दी लेकिन उनका रिव्यू सफल नहीं रहा। कियोका ने अंतिम के पैर पर हमला करके अपनी बढ़त 9-1 कर ली और स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर लिया। उधर पुरुषों की 86 किलोग्राम कैटेगरी में दीपक ने कांस्य पदक जीता। एक कड़े और कम स्कोर वाले मुकाबले में संयमित प्रदर्शन करते हुए अपने मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा। दीपक ने शुरुआती दौर में 2 पॉइंट्स बनाए और दूसरे दौर में 1 पॉइंट गंवाने के बावजूद अच्छा बचाव करते हुए जीत हासिल की और देश को एक और पदक दिलाया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के।
1: तो कुश्ती में भारत ने तीनों ही पदक देश के नाम किए। अमन ने जहां स्वर्ण जीता, अंतिम ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर भारत का झंडा शान से लहराया है। और अब चलते हैं गोल्फ की ओर। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। 4 दिन तक चले इवेंट में प्रणवी व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सुनते हैं प्रणवी के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट।
4: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day, 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
5: Pranavi ne event ke aakhri din even power 70 ka score kiya aur kul 15 under 265 ke score ke saath swarna padak jeeta. Pranavi ne mahila team ko 14 under 546 ke score ke saath rajat padak dilane mein bhi aham bhumika nibhai. Cheen ki Yin Ruoning aur Singapore ki Shannon Tan ne sanyukt roop se रजत पदक जीता. प्रणवी आखिरी दिन 10 से 3 स्ट्रोक की बढ़त के साथ उतरी थी. प्रणवी ने छठे, दसवें और तेरहवें होल पर 3 बर्डी के साथ वापसी की और बढ़त बना ली. आखिर में 18वें होल पर इवन पावर स्कोर करके उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 अंडर 246 का स्कोर बनाया. इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने एशियन गेम्स के महिला टीम इवेंट में रजत पदक जीता. खास बात ये है कि महिला टीम स्पर्धा में एशियन गेम्स इतिहास का ये भारत का पहला पदक है. प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन.
1: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष. विशेष, बेहतरीन प्रदर्शन किया है प्रणवी ने और आज एक और पदक देश को दिलाया. बाकी खिलाड़ियों ने कैसा किया गोल्फ में प्रदर्शन?
6: प्रदर्शन की बात करें अगर प्रशांत, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है प्रणवी उर्स ने और टीम इवेंट में भी भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो अदिति अशोक 14वें स्थान पर रहीं. उन्होंने आखिरी दिन 3 अंडर 67 का स्कोर बनाया और टूर्नामेंट का समापन 2 ओवर 282 के कुल स्कोर के साथ किया. वहीं दीक्षा डागर संयुक्त 23वें स्थान पर रहीं. उन्होंने चौथे दिन 7 ओवर पार का स्कोर बनाया और उनका कुल स्कोर 12 ओवर रहा.
1: जी, इन खिलाड़ियों से पदक नहीं आ सका लेकिन प्रणवी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है गोल्फ में. और अब बात करते तीरंदाजी पर. कुमकुम मोहत ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. कुमकुम ने शूट ऑफ में येजिन ओह को हराकर एशियन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है. उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज बोम्मदेवरा को हराकर कांस्य पदक जीता. सुनते हैं ये रिपोर्ट.
7: सत्रह वर्षीय कुमकुम ने फाइनल में 5-5 से बराबरी के बाद 6-5 से जीत हासिल की. इस जीत से भारत को लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम के लिए इंडिविजुअल कोटा भी मिला, जिसमें कुमकुम और ओह दोनों ने अपने अपने देशों के लिए एक एक कोटा हासिल किया. फाइनल में कुमकुम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही. ओह ने पहला सेट 29-27 से जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली, जबकि दूसरा सेट 29-29 पर खत्म हुआ, जिससे साउथ कोरियन खिलाड़ी 3-1 से आगे हो गई. भारतीय खिलाड़ी ने तीसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए लगातार 3 परफेक्ट शॉट्स के साथ 30 अंक हासिल किए और मैच 3-3 से बराबर कर दिया. ओह ने चौथा सेट अपने नाम किया. हालांकि कुमकुम ने 5वें सेट में धैर्य रखते हुए एक के बाद एक परफेक्ट शॉट्स लगाकर 30 अंक बना लिए, जिससे फाइनल शूट आउट में चला गया. इसके बाद कुमकुम ने डिसाइडर में अपना धैर्य बनाए रखा और परफेक्ट शॉट लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया. उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज बोम्मदेवरा को हराकर कांस्य पदक जीता. 5 सेट तक चले मुकाबले में नीरज ने धीरज को 6-4 से हराया. ब्रॉन्ज मेडल मैच में नीरज ने पहला सेट 29-26 के स्कोर से जीता, जबकि दूसरे सेट में 27-28 से और तीसरे सेट में 28-29 से हार का सामना करना पड़ा. धीरज इस समय 4-2 से आगे थे और उन्हें सिर्फ एक सेट जीतने की जरूरत थी, लेकिन नीरज ने चौथा सेट शानदार तरीके से खेला और 3 बार 10 का स्कोर करके स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया. धीरज ने आखिरी सेट की शुरुआत 8 के स्कोर के साथ की, जबकि नीरज ने 10 का स्कोर किया. धीरज ने सुधार करते हुए 2 बार 10 का स्कोर किया और आखिरी सेट में कुल 28 पॉइंट बनाए. नीरज को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए 19 अंकों की जरूरत थी. उन्होंने अपने आखिरी 2 तीरों पर 9 और 10 का स्कोर करके कांस्य पदक अपने नाम किया. जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन.
1: बेहतरीन प्रदर्शन रहा कुमकुम का हो या नीरज का, आइए सुनते हैं कुमकुम मोहत ने इस शानदार प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा.
8: बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेडल जीता है मैंने आज, और जो सोचा था वही हुआ है. ये सपना था एक. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट सी द रिजल्ट, जस्ट डू योर हार्ड वर्क.
1: और और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 192 रन ही बना सकी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
9: आउट हो गए हैं और ये मैच भारत ने जीत लिया और इसी के साथ यहाँ आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने ये मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। यहाँ
10: भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की शुरुआत खास नहीं रही। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं संजू सैमसंग सिर्फ 2 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर 21 और ईशान किशन 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि अभिषेक ने एक छोर पर टिक कर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेली। वहीं उप कप्तान तिलक वर्मा ने बेहतरीन लय

0: करार रखते हुए नाबाद 51 रन बनाए। तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारतीय टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार कराया। 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। साहिबजादा 10 और उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। 39 रन के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही पाकिस्तानी पारी को हसन नवाज और शैम अयूब ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। हसन नवाज ने 96 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं ईशान किशन ने पदक जीतने के बाद क्या कहा।
2: When we got here, Olympics was not there for us. We were not supposed to play in the Olympics, but now that we know that we will get an opportunity to play there, I mean, we are very excited. Any of us would want to have a medal from Olympics. Very nice. We gave our best. I think all the batters, especially Abhi and Tilak, Dubey, chipping in here by doing that partnership, everything, like everyone was doing their best. And I think the result got in our side in the end. It's a big thing. Asian Games, you are the best side in Asia. So it's a big thing for us.
1: उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 25वें ओवर में 2 विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। इससे पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल ने नाबाद 129 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन की पारी खेली। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.eir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
4: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
5: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
4: In quarter one, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
3: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।

0: श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
4: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
1: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
4: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
5: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
4: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार। लहरा
7: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञेय और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है। कुंवर नारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती। इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कुंवर नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कुंवर नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजात्य संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कुंवर नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो

0: कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरे तरह की भी कविताएं हैं जहां पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहां बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नायर की कविताएं कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मान कर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
1: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी। मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ये ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। और अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींच दी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
2: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साँचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
3: बदायूं के रूढ़ीवादी कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
2: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
3: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए।
2: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
3: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
2: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
4: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
5: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफ़े उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखे बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है, इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया। बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीका है जिसके जरिए वो जिंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
4: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना, पिरोना, काढ़ना और बुनना, इन सब चीजों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा, और रोने गला फाड़ कर चिल्लाने में हम सब भाई बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखलाकर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
5: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती, आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
4: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता न चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास निहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
5: मेरी बहनें निहायत सुघड़ थीं। उर्दू, फारसी, कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी, बुनाई, सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं निहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर? मैं अब्बा की शह पर उनकी बराबरी पर तुली हुई थी। अजीम भाई हमेशा के बीमार ही थे। मैं लड़की होने की वजह से भाइयों के साथ ना निभा सकती थी और वो बीमारी की वजह से मजबूर थे। पर साहब उन्हें कुछ मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के तो बैल होते हैं, तुम बैल क्यों बनो, पढ़ाई में तुम उनसे टक्कर लो, वहां तुम उन्हें मार लोगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। 2 बार मुझे डबल प्रमोशन दिलवाया। उनकी शह पाकर मैंने कुरान का तर्जुमा, हदीसें और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताज़ा ताज़ा मालूमात का इजहार करना शुरू किया। मगर अब्बा की शह पाकर मैंने अपने वालिद के मुअम्मरी दोस्तों की सोहबत में बहुत कुछ सीखा।
4: मेरी अम्मा को मेरी हरकतें एक आंख ना भाती थी। मेरे अंजाम की उन्हें सख्त फिक्र थी। ये मर्द मार बातें औरतों को जेब नहीं देती। वो इतनी गहराई से न इन बातों को समझती थी और ना समझा सकती थी। मगर मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा क्यों डरती थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूछता भी है और ठुकराता भी है।
5: मैंने अपनी जिंदगी के नहायत दिलचस्प और नहायत ही कठिन लम्हे लिखने के सहारे झेले हैं। ये कलम मेरा रज़ाक भी है और हमदम भी, तन्हाई कबूलता चालता दोस्त भी। उसकी मौजूदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। मैं जब चाहूँ इस उड़न खटोले के जरिए जिसे चाहूँ बुला लूँ, और जब वो आए तो जी चाहे उनसे कहूँ, हंसाऊँ रुलाऊँ या जी जलाकर खाक कर दूँ। फिर मूड आए तो पुर्जा पुर्जा करके फना कर दूँ, कठपुतलियों की तरह पुतले बनाकर जैसे चाहूँ नचाऊँ।
4: मैंने चोरी चुपके जब अंगारे पढ़ी, रशीद आपा ही मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आईं जिन्होंने मुझमें खुद एतमादी पैदा की। मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अलीगढ़ की छोटी जहर आलूद फिजा में वो बड़ी बदनाम थी। मेरी साफगोई को उन्होंने सराहा और फिर मैंने उनकी बताई हुई किताबें चाट डाली। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मेरा ड्रामा फसादी साखी में छपा। उसके बाद और कहानियां लिखी और कोई कहानी रद्द नहीं हुई। एकदम मुझ पर एतराज होने लगे, लेकिन रिसालों से मेरी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। मैंने एतराजात की कोई परवाह न की। मंटो के फोन से मालूम हुआ कि उस पर भी मुकदमा चला है, उसी कोर्ट में उसी रोज उसकी भी पेशी है। फिर सफिया और मंटो दौड़े आए। मंटो निहायत हशाश बशाश, जैसे किसी ने विक्टोरिया क्रॉस दे दिया हो। मैं दिल में बड़ी नादिम थी, बजाहिर बहादुरी जता रही थी, मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी, मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मार्खे की चीज लिखी है आपने, अमा शाहिद तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
5: अरे चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी और फिर मुगलजात के भरे खत कुत का तांता लग गया। ऐसी अनोखी पेजदार भारी भरकम गालियां कि मुर्दे के सामने बक दी जाएं तो उठकर भाग जाए। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे खानदान को, शाहिद को और मेरी 2 महीने की बच्ची को, कि उसकी पैदाइश की खबर कहीं छप गई थी। मुझे अपनी डाक से डर लगता था, जैसे लिफाफों में सांप बिच्छू और अजगर बंद हों। डरते डरते खत खोलती, अगर सांप बिच्छू दिखाई पड़ते तो 2 लफ्ज पढ़कर खत जला देती। अगर शाहिद के हाथ खत पड़ जाता तो फिर तलाक की नौबत आ जाती। मुझे अपने जुर्म का एतराफ था, सिर्फ मंटो एक ऐसा वाहिद इंसान था जो मेरे इस बुजदिलाना रवैये पर भड़क उठता था। मैं खुद अपने खिलाफ थी और वो मेरी हिमायत करता था। तरक्की पसंदों ने ना मुझे फटकारा ना मेरी तारीफ की, और मुझे इस रवैये से बड़ा इत्मीनान होता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया, तरक्की पसंदों ने भी उसका साथ ना दिया। मुझे तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। मैं बहुत आसूदा हाल थी, फिल्मों से हमारी बहुत अच्छी आमदनी थी और अदबी मौत या जिंदगी की परवाह ना थी। और वैसे मैं तरक्की पसंदों की खुद भी चमची बनी हुई थी और बड़े जोर शोर से इनकलाब ला रही थी।
4: पतरस बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसानमंद होना चाहिए।
5: इस्मत फुहश निगार है, हल्का हल्का तंज और मजा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उन्हें पसंद करेगा कोई नापसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से ज्यादा अहम चीज इस्मत की तख्लीकी कुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है,

0: अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
1: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
0: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
1: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
0: तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं,
1: अपनी तारीख का उनवान बदलना है तुझे,
0: उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे,
1: उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
2: अभी आपने सुनी इस्मत चगताई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है पैरहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें, तो वहां चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं, बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो, या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात, जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है, तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं, बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में जहां चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद कविताओं का हमसफर में।
3: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरेपन की मध्यम आंच पर नचती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही, मैं दम साधे रहा मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
4: शरद पूर्णिमा की रात, आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
5: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
6: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है, ये कवि की दृष्टि उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य

0: और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूं तो सूरदास, उन्होंने वहां पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम तिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है। कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्य रहे आनन उपजास। मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देख है। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है ये। केशव ने रामचंद्र का में सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
1: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाग पुरोहित को।
2: शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। आगे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है अंजुली भर पी लो तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
3: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
1: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
3: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
4: चांद कविताओं का हम सफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। शीला शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद्व और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया, आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव, असरार उल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है, तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी, और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली, इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस NPAs ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विक्र की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों को कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्रीशुटी स्थित एक निजी औद्योगिक

0: औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और उन्हें आवश्यक उपाय करने और शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the fifth Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Ms. Sitharaman said the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes. She said India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
1: Union Home Minister Amit Shah has said once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shilanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishan. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Pankhal sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर एक परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को कवर करेंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिका के वीजा प्रतिबंध 50 देशों पर लागू हैं, भारत को इससे छूट दी गई है। और एशियाई खेलों में भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट।
1: रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में है। इस युद्ध में हजारों नागरिक मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं और घरों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं का व्यापक विनाश हुआ है। ये टिप्पणियां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। श्री सिबिया ने कहा कि संभावित युद्ध विराम के प्रस्ताव भारत, तुर्की, मिस्र और अमरीका से आए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध विराम के विभिन्न स्वरूपों पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी समझौते में न केवल युद्ध अभियानों को बल्कि ऊर्जा और बंदरगाह अवसंरचना पर हमलों और काला सागर की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि यह बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे। पिछले 4 से 4.5 वर्षों में भारत ने लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्था के लिए 31 विकसित और विकासशील देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ 6 से 8 अन्य वार्ताएं वर्तमान में चल रही हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल तंजानिया के लिए रवाना हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रतिनिधिमंडल 5 से 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अंतर संसदीय संघ IPU की 153वीं सभा और इससे जुड़ी बैठकों में शामिल होगा। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न बैठकों, परिचर्चाओं और कार्यशालाओं में हिस्सा लेगा। इसमें वैश्विक महत्व के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी और भारत का पक्ष रखा जाएगा। श्री हरिवंश IPU की संचालन परिषद, आम बहस, आपात विषय पर होने वाली बहस और IPU अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के साथ संसद में भाग लेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य लोकतंत्र और मानवाधिकार, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सतत विकास, महिलाओं की भागीदारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद से मुकाबले, मानसिक स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण खनिजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य के रोजगार, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी भारत का पक्ष रखेगा। विश्व दर्पण के लिए अलका सिंह।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक स्थिति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
3: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
4: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
3: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर एमटी काजिमा 3 पर हुए हमले में फंसे 5 भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान का समन्वय किया। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सभी 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से तट पर पहुंचा दिया गया है। दूतावास ने निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। अमरीका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के विदेश विभाग ने कल उन देशों की संशोधित सूची जारी की जिनके नागरिकों को B1 और B2 वीजा के लिए पात्र होने पर वित्तीय जमानत राशि जमा करनी होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत सूची में शामिल किए गए देशों के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों को $10,000, $15,000 या $20,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसकी सटीक राशि वीजा साक्षात्कार के दौरान कॉन्सुलर अधिकारी तय करेंगे। भारतीय पासपोर्ट धारकों को इस जमानत राशि से छूट दी गई है। विदेश विभाग की सूची के अनुसार नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों पर यह व्यवस्था 21 जनवरी से लागू है, जबकि भूटान को 1 जनवरी से इस सूची में शामिल किया गया है। अफ्रीका, कैरिबियाई, मध्य एशिया और प्रशांत देशों के कई अन्य देश भी सूची में शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए शशांक कुमार।
0: जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल

0: के और अधिक जानकारी के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर एक परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को कवर करेंगे। अमरीका के वीजा प्रतिबंध 50 देशों पर लागू हैं, भारत को इससे छूट दी गई है। इसके साथ
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs a consultative committee meeting on India-Russia relations in New Delhi. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements will cover 75% of world economies. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait flag tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. US visa bonds apply to 50 countries, India exempted. And at the Asian Games, India win 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals today, climbs to 4th place in medals tally with 85 medals, including 21 gold. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today chaired a consultative committee meeting on India-Russia relations in New Delhi. During the meeting, Dr. Jaishankar highlighted various aspects of India's multifaceted engagement, including in trade, investments, energy, connectivity, culture, and P2P domains. In a social media post, the External Affairs Minister said he also highlighted India's active support to dialogue and diplomacy to end the Ukraine conflict. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said, India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75% to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the US Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said, India has significantly expanded its trade negotiations in recent years, with several more talks underway. He said, the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market. Mr. Goyal said that before 2014, India had free trade agreements with economies representing around $10 trillion in GDP. Over the last four and a half years, India has decided to pursue free trade agreements with 31 developed and developing countries, covering economies worth around $60 trillion in GDP. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms, and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, the Finance Minister said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the 4 labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion US dollars.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है 10:31 और 5 सेकंड। श्रोताओं, ये समय है, आप जानते ही हैं, आपके पसंदीदा हर्ष सिंगार का, जो हर दिल में बसे गीतों से सजा होता है। आज स्टूडियो से इस कार्यक्रम को साथ लेकर साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है इस प्यारे ख्याल के साथ कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा शख्स जो हर पल जहन में छाया रहता है, आप कह नहीं सकते दोस्त की हकीकत क्या है। वो कहते हैं ना, सच नहीं वो जो दिखाई देता है, हर चेहरे में है छिपा हुआ चेहरा। दिल फरेबों की बस्ती में यहाँ आईना भी खुद से सवाल करता है। आइए सुनते हैं ये गीत और आगाज करते हैं आज के हर सिंगार का इस गीत के साथ। ये गीत है जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है श्री रामचंद्र साहब ने, और आवाज है आशा जी और रफी जी की। ये प्यारी आवाज और हर सिंगार का आगाज।
1: दूर दूर तक एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
2: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
1: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
2: तब ठीक है।

कभी कभी लगता है ना कि कौन तड़पता होगा इस एक मुलाकात के लिए, फिर खुद की बारी आती है और सारी कहानी समझ आ जाती है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। आइए अगला गीत सुनते हैं, बॉम्बे टू गोवा से। इसे आवाज दी है लता जी और किशोर जी ने, इस गीत को अल्फाज दिए राजेंद्र कृष्णन जी ने और संगीत से सजाया अपने प्यारे आदि पवन जी ने।

कहते हैं श्रोताओं की हर किसी का यादों से बड़ा पुराना नाता होता है। ये बड़ी बिगड़ैल होती हैं, जब जी चाहता है टहलने निकल पड़ती हैं और दिल का थोड़ा दुखा जाती हैं। और कभी कभी ये यादें ख्वाहिश की शक्ल में भी हमारे सामने आ जाती हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी यूं ही बेकरार है, कभी खुशी तो कभी इंतजार है। कुछ ऐसा इंतजार इस गीत में भी आप महसूस करेंगे। ये अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है, आपको बता दूं, बॉम्बे टू गोवा फिल्म से ये गीत है और इस गीत को आवाज दी है लता जी और किशोर जी ने। आर डी बर्मन साहब का संगीत और ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे थे ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। ये गीत था, इस गीत को अल्फाज से सजाया समीर साहब ने और संगीत नदीम श्रवण साहब का। श्रोताओं, कहते हैं ना कि एक बदलाव आपके मन को थोड़ा सा और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, गीत संगीत का ये अंदाज भी कुछ यही अंदाज लिए रहता है। आइए अगला गीत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जो कि है आशा जी की आवाज में। जवानी दीवानी फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं हर सिंगार, और समय हमें इजाज़त नहीं देता कि आज के इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं। फिलहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और आपको छोड़े जा रही हूँ इस प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए, बने रहिए FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमरीका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन टुडे सेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस हैव बीन बिल्ट ओवर द पास्ट डेकेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल प्रूडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स इम्प्रूव्ड डिलीवरी मैकेनिज्म्स एंड कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low. And foreign exchange reserves stand about $766 billion.
4: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57kg gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53kg category. Deepak Punia won bronze in the men's 97kg freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganghuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said that this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said, "The 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey." He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharat Urs on winning.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444-2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these telephone numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444 2331-0481 aur 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन।
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस।
0: India's economic resilience built over past decade through reforms, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Benchmark domestic indices post longest weekly losing run in 25 years. Sensex and Nifty decline around 3%. And Wall Street wraps up week on mixed note.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा भारत की आर्थिक मजबूती पिछले दशक में हुए सुधारों के कारण हुई है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 25 वर्षों में सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3% गिरे और वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह की समाप्ति मिश्रित रुझानों के साथ की।

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती और लचीलापन पिछले एक दशक में राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे में निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर सेवा वितरण व्यवस्था और लगातार किए गए सुधारों के कारण मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने जीएसटी दिवाला और दिवालियापन संहिता तथा चार श्रम संहिताओं के जरिए देश के आर्थिक ढांचे को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों के आर्थिक झटकों का सामना अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए किया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आईएमएफ के अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर कर्ज बढ़ने के रुझान के बावजूद भारत का सामान्य सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 83.4% से घटकर वर्ष 2031 में 77.7% रह सकता है।
0: एंड वी आर जॉइंड इन बाय आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम रत्नागिरी, प्रिंस। प्रिंस, वेलकम टू द शो।
2: हेलो सर जी।

0: फ्रॉम हियर.
1: राइट.
2: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: जी सभी सर, नमस्कार.
0: नमस्कार.
3: नमस्कार सर.
0: नमस्कार अमित जी.
3: सर मेरा प्रश्न है कि जैसे कहा जाता है नॉर्मली ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है सर, बट ट्रेंड आपका है या डाउन का है, ट्रेंड रिवर्स करती है, तो रिवर्सल ट्रेंड को हम कैसे पहचाने सर? और एक चीज सर और पूछेंगे सर, ऑप्शन में जो है जो टाइम वैल्यू होता है, ये टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है? धन्यवाद सर.
0: अमित, आपका पहला है कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता लगता है. देखिए, ट्रेंड रिवर्सल बहुत लोगों का ये सवाल होता है, प्राची, निशित, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. हालांकि इनका जो दूसरा वाला सवाल है उस पर मैं बहुत खोल के जवाब इनको नहीं देना चाहूँगा, जानबूझ के थोड़ा सा तो बताऊँगा. ट्रेंड रिवर्सल जब होता है, आपको एक दिन मार्केट मान लीजिए 4 दिन गिर रही है, और एक दिन मान लीजिए मार्केट में निफ्टी की बात करता हूँ 40-50-60 पॉइंट उठ गई, उसको हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं करते. ट्रेंड रिवर्सल जब कहते हैं जब ओपन इंटरेस्ट आपका बाइंग में धीरे धीरे बढ़ने लग जाए. तो जब तक ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है तब तक हम उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज्यादा चढ़ने के बाद गिरना एक टेक्निकल रैली होती है, एक टेक्निकल करेक्शन होता है, और बहुत ज्यादा गिरने के बाद चढ़ना एक टेक्निकल रैली होती है, इसको नॉर्मल बाउंस बैक कहते हैं. तो ट्रेंड रिवर्सल, अमित, बहुत सारी उसकी पहचान होती है कि सस्टेन्ड आपको उसी मान लीजिए हरे निशान में, लाल निशान में रोज बंद हो रही है जैसे आजकल है, तो सस्टेन्ड अगर हमें 3-4 अगले सेशंस में वो हरे निशान में बंद होती दिखाई दे और अच्छे अमाउंट से ओपन इंटरेस्ट बने, तब हम उसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं. ऑप्शन के लिए मैं निशित और प्राची की इजाजत से, क्योंकि मुझे पीछे मालूम पड़ा था कि बहुत सारे लोग इसमें F&O ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत जानकारी लेके आ जाते हैं और बहुत हाथ जला लेते हैं, अपने नुकसान हो जाता है. तो मैं अमित आपसे, आप तो नियमित कॉलर हैं, तो मैं आपसे सलाह दूंगा, जब तक पूरी तरह से और बहुत बड़ा पैसा चलता है, अब 10 में से 9 लोग गंवाते हैं, ये सेबी का डेटा है, तो मैं तो यही सलाह देता हूं, जब तक बहुत बड़ा पैसा है आपके पास, बहुत ज्यादा हाई टेक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी नहीं है, तब तक ऑप्शंस में इस तरीके से मैं टैन वैल्यू क्या है, बीटा, अल्फा, वो सब मैं आपको बता सकता हूं. एक तो वो लंबा डिस्कशन है, पर मैं आपको समेत अमित यही सलाह दूंगा कि ऑप्शन की बजाय आप निवेशक बनिए. आप इन्वेस्टर बनेंगे तो आप इसमें पैसा कमा पाएंगे. ऑप्शन वाले ज्यादातर जो है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से सट्टा आ जाता है, आप ऑप्शन चेन में जब जाते हैं, कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि अमित ने मेरी बात को स्पोर्टिंगली लिया होगा और आपके हित में ही मैंने बात करी.
1: In fact, you were talking of the time decay, more than the time decay, Sharadji, it's like the value decay happening, you know.
0: देखिए, बताने को मैं, जब आप ऑप्शन लेते हैं तो जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी नजदीक आती है, चलिए आपने क्योंकि छेड़ दिया है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो उसकी जो वैल्यू मेल्ट होती जाती है, और कई दफे कीमत गेन होने के बाद भी, यानी कि उसकी कॉल बढ़ने के बाद भी, आप देखते हैं कि आप नुकसान में आ जाते हैं. तो अमित, आपके पर सवाल से ऐसा लग रहा है या तो आप अभी सीख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं फिर तो ठीक है, पर सीख के अप्लाई जब भी करिएगा जब आप पूरी तरह से इसमें सक्षम हो जाएं.
2: मुंबई से हमारे साथ भूपेंद्र जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: धन्यवाद मैडम. मेरा एकदम सिंपल लेमैन वाला क्वेश्चन है
0: जी.
4: SIP या म्यूचुअल फंड में जनरली जो सजेशन दिया जाता है प्रिंट मीडिया से या मीडिया से
0: जी,
4: लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए
0: जी.
4: लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है सर, मतलब कितने साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, कैसे?
0: अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होता है. नॉर्मली देखिए भूपेंद्र, लॉन्ग टर्म वैसे तो आपको आपकी जो NAV है वो लॉन्ग टर्म बताना शुरू कर देती है. आप ऐसा समझिए कि आपने मान लीजिए 10 रुपए पे कोई FPO उठाया और वहां से आपने SIP शुरू किया, और वो 2-3 साल बाद 15 रुपए उसकी NAV हो गई, फिर 5 साल बाद उसकी 20 रुपए हो गई. तो लॉन्ग टर्म मैं इसको, कोई आपने सवाल, अच्छा वैसे लॉन्ग टर्म हम देखें तो SIP में हम 5 से 10 साल का मानते हैं, अगर मैं एक स्टैंडर्ड बात करूं. पर मैंने इसको एक अलग नजरिए से भी देखा कि अगर आपको औसतन 12-15% रिटर्न पर एनम आ रहा है और वो लगातार आ रहा है, तो फिर तो चाहे 3 साल भी हो जाए तो हम उसको लॉन्ग टर्म मान लेते हैं. और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आप जिसलिए आए थे कि आपका 10,000 लगाया हुआ अब 20-25,000 हो चुका है, तो वो भी एक डेफिनेशन है. पर नॉर्मली भूपेंद्र, इसको ऐसा समझिए कि 5 से 10 साल का नजरिया SIP को, मैंने तो इसीलिए SIP को नाम भी भूपेंद्र दूसरा दिया है, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान बजाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के, क्योंकि सब्र तो वाकई में चाहिए होता है. यहीं से शायद आपका सवाल भी निकल के आ रहा है.
2: SIP में खेल भी तो कंपाउंडिंग का होता है ना, कि जितने पैसे जितने वक्त तक वहां पर रहते हैं उस हिसाब से वो उसमें ग्रोथ होती है.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, क्योंकि वही पैसा वापस निवेश होता रहता है उसमें, और NAV पे नजर रहती है निवेशकों की. तो बहुत ही सब्जेक्टिव ये बात होती है कि लॉन्ग टर्म किसी का 7 साल

0: सवाल है कि हमारा जो सेलिंग हो रहा है अभी मार्केट में
1: जी,
0: तो वी आर आवर जीडीपी इज ग्रोइंग अप्रॉक्स 7% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट स्टिल देयर आर सेलिंग
1: जी.
0: तो व्हाट कैन बी डन सो दैट द एफआईआईज एंड एफआईआईज आर ब्रॉट बैक टू इंडिया इंडियन मार्केट, एक सवाल है. दूसरा सवाल है कि अमिड द वॉर यूएस ईरान, इफ देर इज डेमोक्रेट अगर जीतती है इलेक्शन नवम्बर में
1: जी,
0: सो वॉट विल बी द पावर सो दैट द प्रेसिडेंशियल पावर्स कैन बी सस्टेन फॉर दिस स्टॉपेज ऑफ यूएस ईरान वॉर, इज देर एनीथिंग ऑन दैट?
2: मिस्टर कौशिक, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वाई इफ इंडियाज जीडीपी इज हाई एंड हाउ टू स्टॉप एफपीआईज. You see, FPIs and FII money, we just spoke of a little while ago. This is independent money, first of all. You know, this is rotating money.
3: Hmm.
2: They keep looking for bargains, you know. They go to Taiwan, they go to Vietnam, they go to China, they go to Korea, they go to other markets, you know, wherever they find a bargain. It's like you're carrying your money and you've got right to shop wherever you want to. So this is, first of all, this is not a permanent exodus. You should understand this. And there is no way, and I think we should also not, since we don't stop them from coming in, we should not stop them from going out. I think the company's performance, the corporate performance itself attracts investors. So there is no deliberate act that, you know, a government or any regulatory agency does. Because if we show signs of any regulatory act, then next time, Mr. Kaushik, they will hesitate in coming to India. You know that, hume to yahan aake phir nikalne nahi diya jata. So I think this is a natural process. It is based on performance. Your second question is regarding if Democrats win, what will be the impact on the markets? I think the powers of the president, first of all, I mean, a lot of listeners don't know, Nishit and Prachi,
3: Ji.
2: That if the Democrats win, President Trump will still remain till 2028 end. It is just that some of his powers of getting decisions ratified from the House of Representatives and the Senate, they will get curtailed. So I think if some of the policies which President Trump has implemented, he might find it harder to, you know, take them forward, whether it is war related, whether it is something else. I think we'll have to wait and see. This is regarding American politics. And let's wait and see. We've got less than a month left now from here. And we'll know in a few weeks time.
1: Yes.
3: दिल्ली से हमारे साथ उमा शंकर जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हाँ, नमस्कार जी.
2: नमस्कार.
4: हेलो
2: जी,
3: अपना सवाल पूछिए.
4: हाँ नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि एफडी पर जो मैच्योर होने के बाद एक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है जिसको आप लोग कंपाउंड ब्याज भी कहते हैं
2: जी,
4: तो ये सरकारी पे और प्राइवेट में दोनों में ही होता है. आज का एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि प्राइवेट वाला बोलते हैं इसमें कोई ऐसा कंपाउंड ब्याज नहीं है, पहले तो उन्होंने यस बोला था, अब वो पता नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. दूसरा ये है कि गोल्ड के लिए गोल्ड में येलो, पिंक और व्हाइट, तो इनके क्या रेट अलग अलग होते हैं? कि लास्ट टाइम भी मैंने ये सवाल पूछा था पर उन्होंने समय कुछ येलो के हो.
2: अच्छा अच्छा, ओके. एक तो मैं निशित और प्राची की इजाजत से सभी श्रोताओं को एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जब बोलें तो अपने शब्दों को बहुत स्पष्ट बोलें. आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए बोलते हैं, जैसे घर में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रेडियो पर हैं तो स्पष्ट बोलें. आपकी बात, पहला सवाल कुछ कुछ समझ में आया, दूसरा तो पूरा समझ में आ गया. शायद आप एफडी की कंपाउंडिंग से संबंधित कुछ पूछ रहे थे. प्राइवेट और जो निजी बैंक है, कंपाउंडिंग तो दोनों जगह होती है. ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एफडी बिना कंपाउंडिंग के दी जाए. ये हो सकता है कई दफे हाँ, कि जैसे आपकी एफडी एक्सपायर हो गई और आप उसको रिन्यू कराने नहीं गए और वो ऑटो रिन्यूअल पे नहीं थी, तो फिर आपको कंपाउंडेड ब्याज उसमें नहीं दिया जाता है. आपको नॉर्मली कुछ बैंक तो सेविंग्स अकाउंट का फिर ब्याज दे देते हैं, ऐसा भी होता है. तो चेक कीजिएगा उमाशंकर जी कि आपने जो एफडी कराई थी उसमें वो था कि नहीं था आपका ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन. ये हमेशा डालना चाहिए एफडी में. दूसरा आपका सवाल पिंक, येलो और व्हाइट गोल्ड से संबंधित है. देखिए, व्हाइट गोल्ड और पिंक गोल्ड ये हम ऑर्नामेंटल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, यानी कि जब उससे जेवरात बनाए जाते हैं. मैंने देखा कुछ महिलाएं जो है वो पिंक गोल्ड पहनना पसंद करती हैं. वो गोल्ड के ऊपर एक पिंक कलर का पानी सा चढ़ाया जाता है, रोज गोल्ड कहते हैं उसको, और व्हाइट गोल्ड भी एक तरह से पानी चढ़ाया जाता है. वो देखने में सिल्वर जैसा दिखता है पर अंदर से वो गोल्ड होता है. तो ये एक इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है उमाशंकर जी. बेसिकली अंदर से तो गोल्ड ही होता है. इसमें मुख्य बात ये देखने की अंदर जो उसके गोल्ड है वो 22 कैरेट का, क्योंकि ऑर्नामेंट्स की बात है, आपको पता 22 कैरेट से ज्यादा का गोल्ड नहीं बनता, कि अंदर वो 22 कैरेट है या नहीं है. पर निवेश के लिए अगर आप लेंगे तो निवेश के लिए फिर पिंक और व्हाइट का मत सोचिए. निवेश के लिए तो वो जो पीला चमचमाता हुआ होता है वही मुझे लगता है इन्वेस्टर्स की पसंद होता है. हाँ, ये जेवरात के लिए व्हाइट.

0: और पिंक की एक एक महज सजावट की चीज है। आपने मान लीजिए पिंक ड्रेस पहनी है, जैसे अभी प्राची ने बताया रोज गोल्ड, तो उसके साथ कुछ महिलाएं पिंक गोल्ड पहनती है। अब आपने मान लीजिए कोई सिल्वरिश आउटफिट पहना हुआ है तो आप उसके साथ व्हाइट गोल्ड प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक एक सजावट की वस्तु है।
1: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार 8वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई, ये 25 वर्षों में सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है। वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। छोटी अवधि वाले कारोबारी सप्ताह में सभी सत्रों में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सोमवार को भारी बिकवाली देखी गई। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1986 अंक यानी 2.7% गिरकर 71,910 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 719 अंक यानी 3.1% फिसल कर 22,422 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 3.5% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 3.5% नीचे रहा। औद्योगिक क्षेत्र के शेयर सूचकांकों में आईटी सूचकांक में ही एकमात्र बढ़त रही। इसके विपरीत ऑटो करीब 6% की गिरावट के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और मेटल सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 39 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.31 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। और इस बीच नोएडा से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: मार्केट मंत्रा की पूरी टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मेरे सर आज दो प्रश्न है कोहली साहब से। पहला है कि मुझे कुछ शेयर्स अपनी बेटी को ट्रांसफर करना है जो 18 प्लस हो गई है
3: जी।
2: वो उसकी क्या प्रक्रिया है? और दूसरा प्रश्न है मेरा कि सर ऑटो सेक्टर में इतना ज्यादा गिरावट क्यों आई है? धन्यवाद सर।
3: चलिए विनय, आपका पहला सवाल है शेयर्स आप अपनी बेटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। पहले तो मुबारक हो, आपकी बेटी 18 साल की पूरी हुई है। उसके लिए देखिए, इसको हम ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं। अगर आपके वो लिस्टेड शेयर्स हैं तो नॉर्मली जिस डीमैट या डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर हैं तो उनसे आप संपर्क करिए और वो आपको एक रिलीज स्लिप देंगे। वो रिलीज स्लिप साइन करके आप जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं भरा जाएगा, जिसके अकाउंट से करा जाता है वो भरा जाएगा। इसको हम ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं और ये गिफ्ट माना जाएगा विनय, क्योंकि वो 18 साल की हो गई है तो ये टैक्स के लिहाज से भी फायदेमंद है। अब वो आपके उसका जो डिविडेंड आएगा, कैपिटल गेन आएगा, आपकी इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा क्योंकि वो मेजर हो गई, माइनर चाइल्ड के लिए होता है। तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करिए, आपको वो स्लिप देंगे, वो स्लिप साइन करके आप ऑथोराइज करेंगे, उसको रिलिंक्विशमेंट नोट भी कहते हैं, तो आपके अकाउंट से उठ के वो बिटिया के अकाउंट में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। ऑटो के शेयर्स विनय, जबकि ऑटो की बिक्री के आंकड़े अभी आप 1 तारीख को आए, लगभग सभी बड़ी ऑटो कंपनीज के बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े आए, पर मुझे लग रहा है विनय इसमें जो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट है वो दबाव में, और दूसरा एक और कारण भी मैं मानता हूं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले 7.5-8 रुपए के करीब बढ़ाई गई थी, और जिस तरीके से कच्चा तेल इस समय उबाल मार रहा है बार बार, तो ऑटो मुझे लगता है निवेशकों के दिमाग में ये भी है कि कल को अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो शायद यहां पर ऑटो की बिक्री पर आगे फर्क पड़ सकता है। तो कई बार मार्केट के सेंटिमेंट्स आगे आने वाली घटनाओं को पहले डिस्काउंट कर लेते हैं। पर इसमें विनय स्ट्रैटेजी क्या है कि आप जो ईवी कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल लगातार बढ़ रही है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। पर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को इसके लिए मैं कुछ हद तक कसूरवार मानता हूं।
4: मूविंग ऑन टू यूएस मार्केट्स, द यूएस स्टॉक मार्केट्स एंडेड हायर यस्टरडे एज वीकर देन एक्सपेक्टेड जॉब्स डेटा डैम्पन एक्सपेक्टेशंस फॉर अ रेट हाइक फ्रॉम द फेडरल Reserve at its policy meeting this month. Among the major indices, the Nasdaq Composite surged 1.2%, the S&P 500 rose over 0.7%, while the Dow Jones Industrial Average climbed 0.5%. For the week, the Nasdaq rose over 0.4%. Conversely, the Dow shed 1.3% and S&P lost 0.3%. On the economic front, the non-farm payroll employment rose by 29,000, while the unemployment rate rose slightly to 4.2% last month, according to data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics.
1: और बीआर आचार्य कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: थैंक यू मैडम।
1: जी,
4: अपने रेडियो सेट को,
5: अपने
4: रेडियो सेट को प्लीज थोड़ा वो कम कर दें या बंद
5: कर दिया।
4: सर
5: जी, आई एम सीनियर क्लास वन रिटायर्ड सीनियर क्लास वन ऑफिसर
0: जी.
5: मेरा एनपीएस है
0: या.
5: तो अभी मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट हैज गॉन डाउन तो देयर इज नो होप दैट इट विल कम अगेन. शैल आई कंटिन्यू और नॉट.
0: ओके ओके मिस्टर आचार्य फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेरी पोलाइटली एंड हम्बली यू नो पॉइंट आउट दैट आई थिंक यू शुड नॉट फील सो पेसिमिस्टिक. यू सेड देयर इज नो होप दैट मार्केट विल एवर रिकवर. आई थिंक वी मूव ऑन ऑप्टिमिज्म एंड द मार्केट हैज टू रिकवर एट सम पॉइंट. बट आई वुड सजेस्ट बिकॉज एनपीएस इज अ वेरी गुड स्कीम एंड आई एम श्योर योर कॉर्पस मस्ट नॉट बी डूइंग वेरी वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू टू एग्जिट बिकॉज यू आर अ रिटायर्ड पर्सन एंड एनपीएस इज मेंट फॉर पीपल हु आर रिटायर्ड. सो देयरफॉर आई वुड हेजिटेट फ्रॉम सेइंग दैट यू शुड क्लोज योर एनपीएस अकाउंट. एंड आई वुड वेरी वेरी फर्वेंटली एंड पोलाइटली अगेन रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज गिव अप द वर्ड नो होप एंड लेट अस रिमेन ऑप्टिमिस्टिक.
1: आगे बढ़ते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि भारत को ऐसे पूंजी बाजार की जरूरत है जो पूंजी जुटाने, जोखिम का प्रबंधन करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में सक्षम हो. नई दिल्ली में आज कमोडिटी और कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS की शुरुआत के बाद नियामक डेरिवेटिव की एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट प्राइस तय करने से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रहा है. सेबी चेयरमैन ने कहा कि नियामक कैश मार्केट में तरलता को बढ़ाने और बेहतर बनाने, निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने तथा सिक्योरिटीज लेन देन को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है. उन्होंने ये भी बताया कि प्रभावी हेजिंग और आर्बिट्राज से कीमतों के उत्तम निर्धारण में मदद मिल सकती है और कैश तथा डेरिवेटिव्स बाजारों के बीच तालमेल मजबूत हो सकता है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकेगा. शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने बताया कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौते का काफी विस्तार किया है.
6: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे और वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर. और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर की. गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया. 38 डेवलप विकसित देशों और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाता.
4: And the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of this month. Under this framework, the unified payments interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. A question that might arise in your mind is whether government utility bill collections will incur percentage MDR. According to National Payments Corporation of India, public utility payments including electricity, distribution, municipal water charges and piped natural gas fall under the designated industry program category. It added utility bill payments above 2,000 rupees will attract a flat concessional MDR of 5 rupees instead of the variable rate of 0.4%. Utility transactions under 2,000 rupees will carry zero MDR. This framework ensures state utility boards and municipal corporations to digitize bill collection without incurring high processing fees, keeping public utility services affordable.
1: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए.
0: थैंक यू सो मच. धन्यवाद.
4: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. India's economic resilience built over past decade through reforms, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Benchmark domestic indices post the longest weekly losing run in 25 years. Sensex and Nifty decline around 3% and Wall Street wraps up week on mixed note. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
7: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
8: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ऐसे गीत जो आज भी दोस्तों मनमीत की शक्ल में हमारे साथ हमारे जीवन में बने हुए हैं। गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज लिए स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। दोस्तों कहते हैं जब जिंदगी के सफर में हम अपना सफर बिता रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब नज़र उठा के देखते हैं तो खुद को तन्हा पाते हैं। ऐसे में गलत नहीं कि समेट लो नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे हो ना हो, हूँ भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आगाज गीत मेरे मनमीत का इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है तुमसा नहीं देखा फिल्म से आशीष जी और रफ़ी जी की आवाज़ में ये गीत आप सुनेंगे। इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया ओपी नावियर साहब।

0: मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। कहते हैं कि नजरों का इश्क लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, और ये गहराई और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है जब इसमें गीत संगीत का अपना एक अलग ही जो पुट है वो आ जाता है। बॉयफ्रेंड फिल्म से ये अगला गीत आप सुनेंगे रफी साहब की आवाज में। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को अल्फाज दिए हैं और शंकर जयकिशन साहब का संगीत। तो आइए सुनते हैं ये अंदाज़।

कहते हैं फिर लाजमी तो नहीं जो दिल में रहे, दिल का हाल भी समझते हो। जी हाँ, कई बार वो खूबसूरत चेहरे जो चांद जैसे नजर आते हैं और जिनकी निगाहें शेर पढ़ती हैं और लब इरशाद करते हैं, कुछ ऐसे ही चेहरे कई बार समझने की भूल कर जाते हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, कश्मीर की गली फिल्म से रफी जी की आवाज़ में इस गीत को संगीत से सजाया ओपी नैयर साहब ने और अल्फाज दिए एस एस बिहारी जी ने। तो आइए सुनते हैं ये अंदाज।

बनाया। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। लेकिन श्रोताओं, समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएं, लेकिन प्यारे सदाबहार गीतों का साथ आपके साथ बना रहेगा 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कहते हैं जिंदगी की वो खुशी, वो इंसान, वो शख्सियत होता है जिससे अगर जुदाई का समय आए तो थोड़ा सा दिल भी करार होता है। जी हाँ, लेकिन समय पर भरोसा रखिए और ख़ुद पर भी, क्योंकि समय जिस तरीके से थोड़ा सा आपको दुख पहुंचाता है, वैसे ही आपको खुशी के लम्हे भी ज़रूर देके जाता है। तो आइए, आपको छोड़े जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए अंदाज में, पुराने सदाबहार गीतों के साथ। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें क्वार्टरली आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक वापस भारत लाई है। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में वेस्टइंडीज ने 48 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट खोकर 352 रन बनाए। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ 4th स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज सेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस हैव बीन बिल्ट ओवर द पास्ट डेकेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इम्प्रूव्ड डिलीवरी मैकेनिज्म्स एंड कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi yesterday, Ms. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low. And foreign exchange reserves stand about $766 billion.
4: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal yesterday. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal yesterday. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan yesterday. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57kg gold after edging out North Korea's world champion Chong Song-han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53kg category. Deepak Punia won bronze in the men's 97kg freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Gangkhuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recovery event. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on the retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said that this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said, "The 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey." He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. Mr. Modi also congratulated Kumkum Anil Mohod on becoming the first Indian woman to win recurve individual gold at the 2026 Asian Games. Prime Minister also congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57kg freestyle wrestling event. Mr. Modi expressed happiness that 6 decades later, India is back on the podium in the men's 97kg freestyle wrestling event at the Asian Games, and that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी नैना और देव की, शीर्षक रॉन्ग नंबर।

जी हाँ, कहानी नैना और देव की। नैना लगातार डॉक्टर टंडन को फोन मिला रही थी। वो बेहद घबराई हुई थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो रात के सन्नाटे में मानो चीख सी रही थी। हेलो हेलो डॉक्टर टंडन, माँ की हालत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप सुन रहे हैं ना? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? गरजते बादल कुछ सुनने कहां दे रहे थे। अचानक बिजली चमकी और लाइट चली गई। नैना को घबराहट में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था और माँ के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। अपनी दुनिया को लूटती देखकर वो जैसे तैसे फैमिली डॉक्टर टंडन का नंबर ढूंढकर उन्हें फोन मिला रही थी, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अचानक किसी ने फोन उठाया। उधर से हेलो की आवाज सुनते ही नैना फफक पड़ी। डॉक्टर साहब, बस आप जल्दी से आ जाइए, वरना माँ को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आप देर मत कीजिए प्लीज। आप सुन रहे हैं ना? लेकिन मैम, मैं उधर से किसी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नैना कहाँ सुन पाई। जल्दी से बोली, बस आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। ठीक है मैम, आप अपना एड्रेस बताइए, उधर से कहा गया। नैना ने जल्दी से पता नोट कराया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई। नैना माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वो लगातार रोई जा रही थी। ऐसी हालत में उसे दूर दूर तक कोई धैर्य बढ़ाने वाला भी नजर नहीं आ रहा था।

नैना लगातार अपनी माँ के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके पिता उसे और उसकी माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। तब से माँ ने ही उसे जैसे तैसे पाला था और आज वो इस हाल में है। कैसे जिएगी वो अपनी माँ के बिना? यही सोच सोच कर डर और घबराहट से नैना का बुरा हाल था। वो अपनी माँ के बिना एक पल भी जीने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। आईसीयू के बाहर खड़ी नैना बड़ी बेसब्री से अपनी माँ की कुशलता जानने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक किसी ने हौले से कंधे पर हाथ रखा। नैना ने पीछे पलट कर देखा तो एक हाथ से दिव्यांग एक लड़का था जो उसे तसल्ली दे रहा था। आप रोइए मत, आंटी ठीक हो जाएंगे, खतरे की कोई बात नहीं है। और कुछ ही देर बाद किसी ने उसे बताया कि नैना की माँ अब बेहतर है, उनकी तबीयत अब ठीक है।

बिना कोई इस तरह किसी अजनबी का अपनेपन से बात करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। नैना ने सोचा कि ये यहीं का कोई वार्ड बॉय या कोई कर्मचारी होगा। खैर, उसने देखा कि वो लड़का लगातार उसकी माँ की देखभाल ऐसे कर रहा था जैसे कि कोई अपना करता है, लेकिन नैना ने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। थोड़े ही दिनों में नैना की माँ ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई और नैना ने राहत की सांस ली।

जी हाँ, ये जीवन है और इसका यही रंग रूप है, ऐसा मानकर नैना उस घटना को भूल गई। जीवन फिर से अपने ढल्ले पर चलने लगा। एक दिन यूं ही नैना किसी को फोन मिला रही थी। अचानक उसने देखा

जी, मैं देव बोल रहा हूँ। देव जी, अगर आपको याद हो, उस दिन मैंने आपका नंबर गलती से मिला दिया था। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान और घबराई हुई थी, देव बोला। तो वो एम्बुलेंस? जी हाँ, मैंने ही भेजी थी। उसकी बात को काट कर देव बोला, ओह शुक्रिया, मुझे तो घबराहट में कुछ ध्यान ही नहीं रहा। नैना ने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। खैर, अब माँ जी कैसी हैं? अच्छी हैं अब, नैना ने कहा। ध्यान रखिएगा उनका और अपना भी। बहुत प्यारी आवाज थी, राहत और सुकून से भरी हुई, और उसमें घुली हुई स्नेह और फिक्र नैना के दिल में सीधे सीधे उतर रहे थे, और नैना के नैना देव का एक चित्र बुनने लगे थे।

अब तो अक्सर नैना और देव की बातें फोन पर होने लगी थी। लंबी लंबी बातें, प्यारी प्यारी बातें, ढेर सारी बातें। देव से बातें करते वक्त नैना का दिल करता कि वो बोलता रहे और नैना बस खामोश होकर सुनती रहे। देव की आवाज में एक गजब की कशिश थी, अजीब सी मिठास थी जो सुनने वालों की रूह तक उतर जाती थी। बातें भी वो बहुत प्यारी करता था, हर बात सुलझी और समझदारी से भरी हुई। अपनी मोहक आवाज और मीठे अंदाज की वजह से देव हर पल नैना के दिल में उतरता जा रहा था और नैना दिल ही दिल में उसके सपने सजोने लगी थी।

सपनों में ही सही, दूर दूर से ही सही, बातों बातों में ही सही, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे। ये अलग बात है कि अब तक दोनों ने एक दूसरे को देखा तक ना था। जब भी नैना देव से मिलने की बात करती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। एक दिन बातों के दौरान देव ने नैना से पूछा, नैना तुम्हें एक पुरुष में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? पुरुष में? नैना थोड़ा सा कुचाई, फिर बोली, बाहें अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मजबूत किले की दीवारें हों जिसमें एक लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन नैना, अगर किसी की बाहें ही ना हो तो? देव, तुम भी ना कैसी बातें करते हो। मैं जानती हूं कि मेरा देव इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, लेकिन नैना, अगर मैं तुम्हारे सपनों के राजकुमार जैसा ना हुआ तो? तो कुछ नहीं देव, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे पसंद हो बस, नैना ने लापरवाही से कहा। आखिर प्यार दीवाना जो होता है

जी हाँ, प्यार दीवाना होता है, तर लेकिन सपनों और बातों के सहारे सिर्फ रिश्ते जुड़ते हैं, जिंदगी नहीं बसर होती। उसके लिए मिलना और एक दूसरे के साथ निभाना भी जरूरी होता है। नैना के बहुत कहने पर देव मिलने के लिए मान गया। पहली मुलाकात थी, एक बस स्टैंड पर नैना को आना था और फिर वहां से दोनों को साथ जाना था, यही तय हुआ था। नैना आज बहुत खुश थी, अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनी और पहले से कहीं ज्यादा वो हसीन लग रही थी। खुद को आईने में निहार कर मुस्कुराई और चल पड़ी देव से मिलने। आज उसका लंबा इंतजार खत्म होने वाला था, जिसको देखने के लिए, मिलने के लिए वो तरस रही थी। आज उससे मुलाकात होने वाली थी। नैना के नैना रंग बिरंगे सपने सजा रहे थे।

इसी उधेड़ बुन को लिए नैना तय समय से पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच गई और बड़ी ही बेसब्री से देव के आने का इंतजार करने लगी। एक एक पल एक एक जिंदगी की तरह गुजर रहा था। नैना पूरी तरह से देव के ख्यालों में खोई थी कि देव ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखता होगा, देव की आवाज के आधार पर जैसा चित्र उसने अपने ख्यालों में बुना था उसी में उलझी हुई थी। अचानक कोई बगल की सीट पर आकर बैठा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। कुछ जानी पहचानी सी सूरत लग रही थी, जैसे पहले कहीं देखा हो। वो भी लगातार नैना को अपनेपन से देखे जा रहा था। जी कहिए, क्या बात है? उसे देखते हुए देखकर नैना बोली, जी आप नैना हैं? हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? अचानक नैना को याद आया कि ये तो वही एक हाथ से दिव्यांग लड़का है जो उस दिन नैना को हॉस्पिटल में मिला था और उसने नैना की माँ की देखभाल की थी। लेकिन देव के ख्यालों में खोई नैना को आज इस लड़के की यहाँ पर मौजूदगी नागवार गुजर रही थी। वो बात करना चाहता था लेकिन नैना ऐसे लड़के को कोई भाव नहीं देना चाहती थी। वो बोली, देखिए उस दिन आपने मेरी माँ का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कुछ और कहना चाहता था लेकिन नैना ने उसे अनसुना कर दिया और ऐसी उपेक्षा भरी नजरों से देखा कि वो लड़का उसे बर्दाश्त ना कर सका और वहां से उठकर चला गया। नैना फिर से अपने देव का इंतजार करने लगी। उसके जहन में ये गीत गूंज रहा था।

इंतजार करती रही, लेकिन देव नहीं आया। उसका फोन भी बंद था। नैना बुझे मन से वापस लौट आई। हजारों प्रश्न उसके जहन में गौंद रहे थे। आखिर देव ने ऐसा क्यों किया? कहीं देव का प्यार छलावा तो नहीं? कहीं देव ने उसके साथ मजाक तो नहीं किया? कहीं देव के साथ कोई अनहोनी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर जब भी ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में होता है ना, तो हमारा ख्याल भी नेगेटिव ही हो जाता है ना? खैर, नैना भी सवालों के इन्हीं उधेड़बुन में उलझी। बार बार वो रॉन्ग नंबर मिला रही थी और कभी खुद को तो कभी देव को कोस रही थी। इससे ज्यादा वो और कर भी क्या सकती थी? आखिर वो देव के बारे में जानती क्या थी? एक मोबाइल नंबर के अलावा और कुछ भी तो नहीं था उसके पास। कहाँ ढूंढती उसे? समय गुजरता गया, लेकिन ना तो देव का फोन आया और ना ही देव। गुस्से में नैना ने देव को फोन मिलाना छोड़ दिया।

इस तरह दोनों एक दूसरे से अजनबी होने लगे थे। एक दिन नैना अपनी माँ को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर टंडन के नर्सिंग होम लेकर गई। कुछ बिल भी बाकी था। उसने वहां देखा कि वो वार्ड बॉय आज नजर नहीं आ रहा था। उसने बातों ही बातों में डॉक्टर टंडन से पूछा, वो आपका वार्ड बॉय? उसने उस दिन माँ की बहुत देखभाल की थी। वो कहाँ है? किस वार्ड बॉय की बात कर रही हैं नैना जी? उस दिन आपकी माँ की देखभाल तो डॉक्टर देव जुनेजा कर रहे थे। वो हमारे यहाँ थोड़े ही दिन पहले आए थे इंटर्नशिप करने, लेकिन अब यहाँ से जा चुके हैं। और हाँ, वो आपका बिल भी पे कर गए हैं। कुछ पेपर्स आपको देने के लिए कहा है, ये रहा। नैना के सामने एक एक दृश्य किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा। तो वो तुम थे देव? नैना फुसफुसाई। घर आकर नैना ने जल्दी से डॉक्टर का दिया वो कागज खोला और पढ़ने लगी। नैना, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी ना कि मैं ही देव हूं। नैना, मैं जानता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, इसीलिए तुमसे मिलने से बचता रहा। तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुमसे बात करने के लिए खुद को रोक नहीं पाता था। तुमसे बात करने का बहुत दिल करता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे एक न एक दिन भूल ही जाओगे। अलविदा नैना। नैना को अपनी सोच और अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। डॉक्टर जुनेजा की शक्ल वाकई उसे पसंद नहीं थी, लेकिन देव की आवाज, उसका स्वभाव, उसके विचार नैना के रोम रोम में बसे हुए थे। अजीब सी कश्मकश थी। देव के बिना उसे जीना बेमानी सा लग रहा था। वो रात भर सोचती रही और अंततः उसने एक फैसला किया। जी हाँ, नैना ने फैसला किया कि वो देव को फोन करेगी। एक इंसान में उसकी सूरत से ज्यादा सीरत और उसकी इंसानियत मायने रखती है, और जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है प्यार। यही सोचकर नैना फिर से मिलाने लगी। वही रॉन्ग नंबर।

तो ये थी कहानी रॉन्ग नंबर। आपको कैसी लगी? आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो अब कुसुम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक

0: सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं के सामने चुनौती विनियमन और विकास में से किसी एक को चुनने की नहीं है, बल्कि ऐसे नियम विकसित करने की है जो नवाचार, प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ावा देते हुए जोखिमों का प्रबंधन करें। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। हालांकि कल तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे वेस्टइंडीज ने 48 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ 4th स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the fifth Kautilya Economic Conclave in

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मुकेश और आशा जी की आवाज़ के साथ।

आशा जी और मुकेश की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम मोहब्बत इसी को कहते हैं। संगीत था खयाम साहब का और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1965 में और ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसे लिखा और निर्देशित किया था अख्तर मिर्ज़ा साहब ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शशि कपूर, नंदा, रमेश देव, लीला चिटनिस और अनवर हुसैन साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम काली टोपी लाल रुमाल और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। संगीत इस फिल्म को संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था तारा हरीश ने और प्रोड्यूस किया था देवी शर्मा ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:32 और 27 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

फिल्म उजाला से सुना आपने ये गीत, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें अभिनय किया था शम्मी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था नरेश सहगल साहब ने और इस फिल्म ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश अपने दर्शकों तक पहुंचाया और वो संदेश था कि ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम मेरा साया और आवाज़ थी आशा जी की। ये फिल्म आई थी 1966 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था राज खोसला ने, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने और इस फिल्म के जितने भी गीत थे उन्हें शब्दों में पिरोया था राजा मेहदी अली खान साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त और साधना ने। अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 1:50 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म नवरंग से।

चाहे रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुस आए थे। सीमा सुरक्षा बल BSF की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने मुंबई की कंपनी हंजर बायोटेक एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रबंधकों और जमानतियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस धोखाधड़ी से पंजाब नेशनल बैंक PNB को कथित तौर पर 93,44,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को मुंबई में कंपनी के प्रबंधकों से संबंधित कई स्थानों पर तलाशी ली। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी ओट्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25,25,00,000 रुपए भी देगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
4: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as a chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as a chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The 19th edition of the Pravasi Bharatiya Divas PBD convention will be held from 7th to 9th of January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan yesterday. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shilanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold defeating arch-rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishan. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57kg gold after edging out North Korea's world champion Chong Song-hen 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53kg category. Deepak Punia won bronze in the men's 97kg freestyle wrestling event, and archer Neeraj Chahan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to fourth position in the overall medal standings. And that is the end of this news bulletin.

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था तो मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से ही कम हो जाती है। सौदश प्लव एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 47 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ के साथ।

तेरी आनी का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तेरी आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है।

सच कहूं तो इतना सफर करने के बाद, सच कहूं तो इतना सफर करते हुए थकने के बाद, यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुंचना है तो वो केवल तुम हो।

एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले। एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले, और एक हकीकत है कि वो मुझसे दूर बहुत है।

जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, सोच तेरे दीदार से उसका क्या होगा। सौदश प्लव 1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 31 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म कश्मीर की गली से।

तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, चांद कहता रह गया, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ।

दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।

0: ही।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुस आए थे। सीमा सुरक्षा बल BSF की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। एशिया खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी उर्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। जापान में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Harpreet Kaur. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And a current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
2: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as a chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as a chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The 19th edition of the Pravasi Bharatiya Divas PBD convention will be held from 7th to 9th January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan yesterday. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shilanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishan. Wrestler Aman Seherawat clinched the men's 57 kg gold after edging out North Korea's world champion Chong Song-han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53 kg category. Deepak Punia won bronze in the men's 97 kg freestyle wrestling event. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to fourth position in the overall medal standings. And that is the end of this news bulletin.

हमारे सभी सुनने वालों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमराही कार्यक्रम में, जहां मैं हूं इस खूबसूरत से पल में आपके साथ, आपकी अपनी रूपा धवन। और आज हम बात करेंगे उन नगमों की जहां दो आवाजें मिलकर एक नई दास्तान लिखती हैं। दिल के किसी कोने में छिपी मोहब्बत जब अल्फाज बनती है तो युगल गीत का रूप ले लेती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सुरों का सफर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

तो भाई वैसे तो सफ़र की शुरुआत हमेशा किसी की आहट और पहली नज़र से होती है, जब दो अजनबी पहली बार नज़रें मिलाते हैं।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम हमराही में। हमराही में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो जनाब, हम आज बात कर रहे हैं उन नगमों की जहाँ दो आवाज़ें मिलकर एक नई दास्तान लिखती हैं। दिल के किसी कोने में छिपी मोहब्बत जब अल्फाज बनती है तो युगल गीत का रूप ले लेती है। तेरी पहली नज़र का वो नशा आज भी है, तेरी पहली नज़र का वो नशा आज भी है, तेरे साथ बिताया हर लम्हा खास आज भी है। हम राहों में अकेले चले थे मगर, हम राहों में अकेले चले थे मगर, तेरे जुड़ने से इस सफ़र में मिठास आज भी है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां इस वक्त आपके साथ हूं मैं, आप ही की अपनी आप ही की दोस्त रूपा धवन। और रूपा धवन आपके लिए लेकर आई है हमराही कार्यक्रम, जिसमें आप सुन रहे हैं बेहद ही खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता। धीरे धीरे मोहब्बत का दिल पर गहरा असर हो जाता है, और ऐसे में जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब आंखें कुछ इस तरह से बातें करती हैं।

इश्क जब हद से बढ़ा तो इकरार बन गया, इश्क जब हद से बढ़ा तो इकरार बन गया, हर ख्वाब मेरा अब तेरा दीदार बन गया। यूं तो चले थे राह पर अकेले ही हम, यूं तो चले थे राह पर अकेले ही हम, तू मुस्कुराया और सारा जहां मेरा यार बन गया।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

जब दो दिल एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दिल में पूजने भी लगते हैं। जब दो हमराही साथ हों तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मौसम खुशनुमा लगने लगता है। वैसे हमराही का अर्थ सिर्फ हमेशा पास रहना ही नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे को महसूस करना है। फासले कभी दिलों की दूरी नहीं बनते, फासले कभी दिलों की दूरी नहीं बनते, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी मजबूर नहीं बनते। तू दूर सही पर मेरे ख्यालों में शामिल है, तेरे बिना मेरे ये गीत भी पूरे नहीं बनते। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

तो दोस्तों, मोहब्बत का रिश्ता कुछ इतना गहरा हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है कि साथ निभाने के वादे अपने आप बन जाते हैं। हाथों में तेरा हाथ हो, हाथों में तेरा हाथ हो और उम्र भर का साथ हो, हर सुहानी धूप में और हर काली रात में, छू ना पाए गम का कोई साया भी हमको, ए हमराही बस इतनी सी खुदा से फरियाद हो। जी हाँ, दो दिलों की दास्तान, कुछ वादे पूरे हुए, कुछ अधूरे रहे, लेकिन दो दिल हमेशा जुड़े रहे एक दूसरे के साथ, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से। यही तो अधूरे सपनों की पूरी कहानी है। जी हाँ, कई बार दिलों की दास्तान पूरी हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए दिल में बहुत सारा प्यार हमेशा बना रहता है।

0: और इसी तरह कुछ सपनों के साथ झिलमिलाते हुए फिर से अगले पड़ाव पर मिलेंगे। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और थोड़ी देर बाद यानी 4:10 पर अरुणिमा में आपके साथ फिर से रहूंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
1: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। पाकिस्तान से कहा गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 19वां संस्करण अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन विदेश मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार की साझेदारी में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी उड्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mr. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026, and a current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
5: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP

समय हुआ है 4:11 और 20 सेकंड। जी हाँ, आधी रात और आधा दिन। रात की ये खामोशी का पहर अपने साथ बहुत सी बातों को लेकर आता है। जब इस समय यानी 4:11:35 पर ये समय अरुणिमा का जहाँ धीरे धीरे हौसलों की नई उड़ान का ऐलान करती है अरुणिमा, इसी सकारात्मक विचार के साथ आगाज करते हैं आज की अरुणिमा का। साथ हूं मैं आपके, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

साथियों, वैसे हम सबको पता है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण हमें ये याद दिलाती है कि हर अंधेरे का अंत तय है। जी हाँ, हमारी जिंदगी पर का चाहे गम के बादल कितने भी गहरे छाएं, कितना भी ज्यादा घनघोर अंधेरा हो, हमारे दिल को कोई राह ना सूझ रही हो, लेकिन एक तय समय पर वो दुख के बादल जरूर छटते हैं और उन दुख के बादलों में से सुख की उजियाली किरण हमारे जिंदगी में खुशियों का उजाला लेकर आती है।

साथियों, शब्दों में बड़ा जादू होता है। यही शब्द जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। यही शब्द आत्मा को भी दुखी कर सकते हैं। सोचिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने का उत्साह कितना दोगुना हो जाता है जब कोई हमारी सराहना करता है। छोटी सी शाबाशी का लफ्ज कमाल कर जाता है। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके शब्दों का भी कुछ

की बात तो नहीं है। जब आप कुछ अच्छा करें तो खुद की पीठ खुद भी थपथपा लें। जी हाँ, खुद भी थपथपाना अपनी पीठ को उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरे, और यकीन मानिए दूसरों से ज़्यादा अपने आप को दी गई शाबाशी बहुत जादू का काम करती है। दूसरों की तालियों का मोहताज ना बन, दूसरों की तालियों का मोहताज ना बन तो खुद अपनी राहों का नवाब बन। छोटी सी जीत पर भी मुस्कुराना सीख ले तो खुद अपनी कहानी का आफ्ताब सुन। हावड़ा ब्रिज का ये गीत खूबसूरत सी आवाज़ों के साथ, आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ, आप सभी के लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:35 और 28 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में अपने ही दोस्त रूपा के साथ। आइए सुनते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से ये गीत लता जी और महेंद्र साहब की आवाज़ में।

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें भी उतनी होंगी, इसीलिए लक्ष्य से ध्यान ना हटाएं और बाधाओं को पार करते रहें। आगे बढ़ते रहने से हम अपनी मंजिल पर कभी ना कभी तो पहुंच ही जाते हैं, जैसे कि हम आपके साथ हैं इस सफर पर, अरुणिमा का सफर, और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, आपका पसंदीदा चैनल, आपके साथ जुड़े हुए हैं हम और आप। समय हुआ है बहुत ही बेहद खूबसूरत प्यारा सा सफर और बहुत ही प्यारा सा समय, 4:42:37। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ और आइए अब सुनते हैं गीता मेरा नाम फिल्म से ये गीत लता जी की आवाज़ में।

साथियों, अगर गलतियों की बात करें तो गलतियां तो किससे नहीं होती। अगर गलतियां इंसान से नहीं होती तो फिर क्या बात थी। जब हम इंसान हैं तो छोटी मोटी भूल तो हो ही जाती है, लेकिन हाँ, शर्त ये है कि वो गलती जानबूझकर ना की गई हो। हर गलती से सबक लें और जिससे आपको नुकसान हुआ सुधार की कोशिश करना ही जिंदगी की असली परिभाषा कहलाता है। जिस गलती से हम सबक लेते हैं उसी से हमें सुधारना भी सीखना चाहिए कि जो गलती आज हमने की है इससे हमारा ये नुकसान हुआ और अगली बार हम इस गलती को दोहराएंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि इस गलती को ना दोहराकर हम एक नया मुकाम हासिल करें। जो गलतियों से सबक मिलता है ना जनाब, जिंदगी में वो और किसी से नहीं मिलता। गलतियां हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं और हमारी जिंदगी के रास्ते को और भी ज्यादा निखारती हैं। सुनते हैं चरस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

गिरना कोई हार नहीं, उठकर चलना ही कमाल है। हर असफलता के पीछे छुपा सफलता का सवाल है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते जाओ तुम, इसी हौसले में ही तो जिंदगी की ढाल है। जी हाँ, जिंदगी की ढाल अक्सर हमें यही सिखाती है कि जिस तरह से अविरल नदी बहती है, उसी तरह से हमें भी चलते रहना है, क्योंकि जहाँ पर पानी रुक जाता है वहाँ पर सड़ जाता है। हमें भी अपने जीवन को एक अंधकार से बचाना है, तो फिर हमें भी चलते ही रहना पड़ेगा।

और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। इसी तरह से अपना हौसला बनाए रखिए, खुश रहिए, खुशगवार मौसम में जिए और हमारे साथ चलते रहें। इसी के साथ विदा लेती है रूपा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसराइल की प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन मच्छार को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanism and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27. Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday.
5: After the full implementation of the law, our criminal justice system will become the most modern criminal justice system in the world. Within this law, we have incorporated science, online hearings, video conferencing, provisions for FSL and linked many modern scientific advancements. There are arrangements for protection against all these issues, including women's safety, missing children, terrorism and lynching.
4: Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from Upper House. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from 26th of last month. The 19th edition of the Pravasi Bharatiya Divas PBD convention will be held from 7th to 9th of January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. Ministry of External Affairs has summoned the Chargedy Affairs of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephonic conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. And India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan yesterday. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And that is the end of this news bulletin.

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 5:11 और 20 सेकंड। आप है अपनी दोस्त रूपा के साथ। आज रविवार की सुबह और रविवार की सुबह बेहद खूबसूरत, आरामदायक। लेकिन जो सुबह का आगाज करते हैं जल्दी उठकर, वही असली में नवाब होते हैं। जी हाँ, हमें पता है कि आप भी हमारे साथ जगे हुए हैं इस वक्त, और अगर जो नहीं जगे हुए हैं तो जाग जाइए जनाब। चलिए आज की सुबह का आगाज करते हैं उस ईश की वंदना के साथ जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, उस पालनहार का जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। उसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। नमस्कार और सुप्रभात आप सभी को, आपकी अपनी दोस्त रूपा धवन का।

जी हाँ, आज की रविवार की सुबह और आप जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। खुले आसमान में ख्वाबों के परिंदे धीरे धीरे उड़ने लगे हैं। चाहे दफ्तर जाना हो या घर के काम निपटाने हो या दिल में उमंगे हो, और हर काम आसान जब लगता है, कब लगता है? जब आपके मन के अंदर उमंग होती है। आज की उमंग तो कुछ ऐसा कह रही है कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन हमें थोड़ा सा तो आराम करना है। लेकिन हर किसी के घर में एक जल्दी उठने वाला सदस्य तो ज़रूर कोई ना कोई होता ही है, जो सभी को छुट्टी वाले दिन भी थोड़ा सा जल्दी उठने के लिए कह देते हैं। ऐसे ही हम भी आपके साथ जुड़े हैं आपको थोड़ा सा जल्दी जगाने के लिए, क्योंकि ये जो खूबसूरत नज़ारा होता है ना प्रकृति का और सुबह का, इसका आनंद जिससे छूट गया सो छूट गया। तो जनाब, इसी उमंग के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ भोर सुहानी में उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ लेकर भोर सुहानी, रूपा धवन। तो जनाब, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात और प्यार भरा मेरा नमस्कार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल समय दस्तक दे रहा है 5:28 और ये संगीत की भी स्वर लहरियां कह रही हैं कि भोर हो गई है। चिड़ियों की चहचहाहट से रोशन ये सवेरा हो गया, धुंध छटी तो हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। उठो और मुस्कुराकर गले लगाओ इस नई सुबह को, देखो तुम्हारे इंतजार में एक और सुहाना दिन हो गया।